मीडियम वीप 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ान EIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून 2026 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वीप 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़।

पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वर में ये थी अंजुमन बानू की देशभक्तिपूर्ण रचना। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलूटा के स्वर में ये भक्ति पद।

पुरुषोत्तम दास जलूटा और साथियों के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति पद।

हरिओम शरण के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं सुरेंद्र कोहली के स्वर में ये भक्ति पद।

सुरेंद्र कोहली के स्वर में ये भक्ति पद अभी आपने सुना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर और श्रद्धा।

सुरेश वाडकर और श्रद्धा बुंदाटकर के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। रचना दत्ता थीटे की थी। इसके साथ ही अब आज की वंदना संपन्न होती है।

0: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख स्वामी सत्यरूपानंद का है।
1: एक संत कवि कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो कल करना हो उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि किसी भी क्षण प्रलय आ सकती है, तब पुनः कुछ करने का रह नहीं जाएगा। इन दो पंक्तियों की कविता में संत कवि ने संसार के एक महान सत्य का उद्घाटन किया है, जिसमें समय के तत्व और उसकी उपयोगिता की महिमा बताई गई है। मनुष्य प्रायः भूल जाता है कि समय सदैव वर्तमान में ही होता है, भविष्य मानव मन की कल्पना मात्र है, भूतकाल केवल स्मृति है। जैसे सम्राट अशोक हमारे देश के एक महान सम्राट हो गए हैं, उनके कारण इतिहास में हमारे देश का बड़ा नाम हुआ था। थोड़ा विचार करके देखें तो सम्राट अशोक के समय की घटनाएं अब केवल स्मृति मात्र हैं। इतिहास के पन्ने भी हमें उस युग का केवल स्मरण ही तो कराते हैं। भविष्य का समय और उसका ज्ञान केवल हमारी कल्पनाओं में ही होता है, उस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। कुछ वर्ष पूर्व 26 जनवरी को गुजरात में जो प्रलयकारी भूकंप आया था, उसकी कल्पना किसे थी? गुजरात में कच्छ में जो भूकंप आया, वहां भी सुबह देश के अन्य भागों के समान लोग 26 जनवरी का उत्सव मनाने की तैयारी में थे, किंतु क्षण मात्र में ही विनाश के महातांडव ने सब कुछ समाप्त कर दिया। वहां के लोगों की 26 जनवरी के उत्सव की गई कल्पनाएं ध्वस्त हो गई। इन उदाहरणों से ये सत्य स्पष्ट प्रकट होता है कि समय सदैव वर्तमान में ही होता है, अतः समय का सदुपयोग केवल वर्तमान में ही हो सकता है। थोड़ा विचार कर देखें, समय से भिन्न जीवन क्या है? समय के अतिरिक्त जीवन का कहीं कोई अस्तित्व है? ईश्वर के पश्चात यदि हमारे सबसे निकट कुछ है तो वो मृत्यु है। हमारे जन्म के साथ ही हमारे मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन की सर्वाधिक अनिश्चित कोई घटना है तो वो मृत्यु ही है। आने वाला प्रत्येक क्षण अनिश्चित है। हम सभी लोग निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अतः हमें मृत्यु के पूर्व अपने जीवन का अधिकाधिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय यह है कि हम जो भी अच्छा कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, अपनी आत्मोन्नति का जो भी उपाय करना चाहते हैं, उसे कल पर न टालें। कल पर टालने का अर्थ होता है हम उसे पूरे मन से नहीं करना चाहते हैं। अतः आलस्य त्याग कर जीवन में हम जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं उसे आज और अभी प्रारंभ कर दें। इससे धीरे धीरे हमारा जीवन उन्नत और विकसित होता जाएगा। उसी प्रकार हमारे मन में जो भी असत विचार आते हैं, अनुचित अथवा अनैतिक कार्य करने की इच्छा जागृत हो तो उसे कल पर टालते रहें। यदि इस प्रकार हम 5-7 वर्ष भी करते रहें तो हम एक दृढ़ चरित्र और विकसित व्यक्तित्व के व्यक्ति हो जाएंगे। अतः आइए हम सभी समय का महत्व समझकर वर्तमान में समय का सदुपयोग कर अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर लें।
0: ईथा चिंतन आलेख स्वामी सत्यरूपानंद का था। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड नंबर 210 210।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की इस वार्ता में हम एक बहुत ही उपयोगी आधुनिक तकनीक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फॉगर और मिस्ट कूलिंग सिस्टम। पशुओं को गर्मी से राहत देने का एक उपयुक्त साधन। गर्मियों के मौसम में जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पशु हीट स्ट्रेस यानी गर्मी के तनाव का शिकार हो जाते हैं। इनके मुख्य लक्षण हैं, पशु कम चारा खाते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, दूध उत्पादन कम हो जाता है, वजन नहीं बढ़ता एवं प्रजनन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यह कूलिंग सिस्टम किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है क्योंकि यह पशु को ठंडा और आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। फॉगर और मिस्ट सिस्टम का काम बहुत सरल है। इसमें बहुत ही बारीक पानी की बूंदे हवा में छोड़ी जाती है। ये बूंदे तुरंत वाष्प बन जाती है और आसपास की गर्मी को सोख लेती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण द्वारा शीतलन कहा जाता है। इससे शेड का तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। पशुओं को तुरंत ठंडक मिलती है। आइए अब जानते हैं यह सिस्टम कैसे काम करता है। फॉगर सिस्टम के मुख्य भाग हैं हाई प्रेशर पंप, पाइपलाइन, फॉगर नोजल, फिल्टर एवं टाइमर ऑटो सिस्टम। हाई प्रेशर पंप पानी को तेज दबाव से भेजता है, पाइपलाइन पानी को पूरे शेड में फैलाती है, फॉगर नोजल बहुत बारीक बूंदे बनाती है, फिल्टर पानी को साफ करता है, टाइमर ऑटो सिस्टम समय अनुसार चालू बंद होती रहती है। इसके काम करने का तरीका है, यह सिस्टम 5 से 10 मिनट तक चालू रहता है और 10 से 15 मिनट बाद बंद हो जाता है और यही चक्र बार बार चलता रहता है। इससे शेड का तापमान नीचे आ जाता है और पशु को ठंडक मिलती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका उद्देश्य फर्श को गीला करना नहीं है बल्कि हवा को ठंडा करना है। इसलिए सिस्टम को सही तरीके से चलाना जरूरी होता है जिससे पानी जमा ना हो, वातावरण स्वच्छ बना रहे। अगर हम अलग अलग पशुओं के अनुसार इसकी उपयोगिता देखें तो डेयरी पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के लिए सिस्टम बहुत लाभकारी है। गर्मी में ये पशु तनाव के कारण दूध कम देने लगते हैं, लेकिन फॉगर सिस्टम लगाने से आवास ठंडा रहता है, पशु आराम महसूस करते हैं, उनका चारा सेवन बढ़ जाता है और दूध उत्पादन में भी सुधार होता है। भैंसों के मामले में यह और भी जरूरी है क्योंकि वे गर्मी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यदि फॉगर सिस्टम के साथ पंखों का भी उपयोग किया जाए तो इसका असर और भी बेहतर होता है। मुर्गी पालन में भी यह तकनीक बहुत उपयोगी है। गर्मी के कारण मुर्गियों में मृत्यु दर बढ़ जाती है और अंडे का उत्पादन घट जाता है। इस सिस्टम से सेट का तापमान नियंत्रित रहता है जिससे मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं, उनकी वृद्धि अच्छी होती है एवं अंडों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। गाय, बकरी और भेड़ पालन सिस्टम में भी यह काफी मददगार है। गर्मियों में यह पशु कमजोर हो जाते हैं और उनका वजन बढ़ना रुक जाता है। फॉगर सिस्टम से उनका शरीर ठंडा रहता है जिससे वे बेहतर तरीके से चारा खा सकते हैं और उनकी उत्पादकता में भी सुधार होता है। अन्य पालतू पशु जैसे कि खरगोश, सुअर और कुत्ते भी गर्मी में जल्दी प्रभावित होते हैं। इनके लिए भी यह मिस सिस्टम एक अच्छा विकल्प है जिससे उनका तनाव कम होता है और वे स्वस्थ रहते हैं। इस सिस्टम के कई फायदे हैं, जैसे कि यह सिस्टम आसानी से लगाया जा सकता है, इसमें बिजली की कम खर्च होती है, इसका रखरखाव आसान है एवं यह आवास में धूल व बदबू को भी कम करता है। साथ ही इस सिस्टम को इंस्टॉल करना भी आसान है। यह पानी का सही उपयोग करता है और पंखों के साथ मिलकर यह और अधिक प्रभावी बन जाता है, लेकिन इसके उपयोग में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। इन सावधानियां में प्रमुख हैं, आवास में हवा का अच्छा आवागमन होना चाहिए। आपको आवास में उचित वायु संचार की व्यवस्था बनाई रखनी है जिससे कि शीतलन आवास में पर्याप्त मात्रा में होता रहे। साथ ही फर्श गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर गीले आवास में पशुओं को अन्य दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसकी नोजल की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए और टाइमर का सही उपयोग करना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल है कि इस सिस्टम को लगाने में कितना खर्च आएगा। यदि हम इस सिस्टम को 20 गायों के एक आवास में लगाते हैं तो इसमें आने वाली खर्चों का विवरण इस प्रकार है। प्रति गाय इस सिस्टम में लगभग 1,000 से 1,200 रुपए का खर्च आता है। इस प्रकार 20 गायों के लिए लगभग 25,000 से 45,000 तक का खर्च आएगा। इसमें मासिक बिजली खर्च लगभग 500 से 1,200 होगा और पानी का खपत भी बहुत कम होता है। इसके अलावा पंखे भी लगाए जा सकते हैं। इस आवास में 4 से 5 पंखे लगाए जा सकते हैं। इसमें 10,000 तक अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है। इस प्रकार यह सिस्टम 30,000 से 50,000 रुपए तक के खर्च में किसान भाई अपने पशु आवास में आसानी से लगा सकते हैं। अंत में किसान भाइयों और बहनों, यह कहा जा सकता है कि फॉगर और मिस्ट कूलिंग सिस्टम एक सरल, किफायती और प्रभावी उपाय है जिससे आप अपने पशुओं को गर्मी से बचा सकते हैं। यदि इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह पशुओं की सेहत सुधारने के साथ साथ दूध, मांस और अंडे उत्पादन में भी मददगार सिद्ध होता है। आप सभी को धन्यवाद।
1: पशुओं के लिए फॉगर और मिस्ट कूलिंग प्रणाली, हमारा पशुधन, इस कार्यक्रम में जानकारी दी डॉक्टर वंदना भगत ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। हमारा पशुधन, विषय है पशुओं के लिए फागर और मिस्ट कूलिंग प्रणाली। जानकारी देते हुए डॉक्टर वंदना भगत।

0: कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 8:30। गांधी चर्चा सुबह 9:00। इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे जमील अहमद। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुनेगा साबरी ब्रदर्स को और शाम 6:30 पर कलाकार होंगे सीताराम सिंह। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनेगा कुमार पंडित का तबले पर बजाया 3 ताल में पेशकार कायदा और रीला। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर इन्हीं का तबले पर बजाया ताल 3 ताल में कायदा रीला और मध्यलय 3 ताल टुकड़े परण फरमाइश चकरदार लग्गी आदि। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 11:05 पर। भीड़ में गुम होते घर ये रूपक सुनेगा दोपहर 1:30 पर। लेखक सुरेश तिवारी, प्रस्तुति मिर्जा मसूद की। शाम 5:10 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे आजकल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिलाओं का दिवस, इस विषय पर चर्चा, पत्र मिला और योगल गीत। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, आज की बात, इसमें किसान भाई आज सुनेंगे पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठे मिलिस, साफ सुथरा दूध उत्पादन ज्यादा कमाई के साधन, इस विषय पर चर्चा। इसके अलावा आज की सलाह, इसमें विषय होगा बरसात में पशुधन के देखरेख, जानकारी देंगे डॉक्टर आशुतोष दुबे वैज्ञानिक पशुपालन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12:00, हमर हाथी हमर गोड शाम 5:00। चित्रपट संगीत सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे रात 10:00। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेंगे सुबह 8:30। गांधी चर्चा सुबह 9:00। आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। भीड़ में गुम होते घर ये रूपक सुनेगा दोपहर 1:30 पर। लेखक सुरेश तिवारी और प्रस्तुति मिर्जा मसूद की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनेगा कुमार पंडित का तबले पर बजाया 3 ताल में पेशकार कायदा और रेला। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर इन्हीं का तबले पर बजाया ताल 3 ताल में कायदा रीला और मध्यलय और 3 ताल टुकड़े परण फरमाइश चकरदार लग्गी आदि। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो हमारा इस साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा 11:05 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं

0: बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह की 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोता दोस्तों, राजधानी रायपुर के आकाश में हल्का बादल छाया हुआ है, पर उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो तो रही है, कहीं बूंदाबांदी और कहीं छटपुट। एक तरफ इंतजार का मानसून तो वहीं दूसरी ओर उम्मीद का आकाश। श्रोताओं, अंधेरे के सीने को चीर कर सारे प्राणी जगत में नवचेतना का संचार करता सूरज आज फिर आया है हमारे आंगन में, ये संदेश देने कि जीवन का अंतिम सत्य अंधेरा नहीं बल्कि उजाला है और हम उम्मीद में जीते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने की ही होती है। उजाले की आकांक्षा मनुष्य का मौलिक स्वभाव है। ये मौलिक स्वभाव व्यक्ति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाता है। तभी तो कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी उजाले की ओर बढ़ें। उजाले की ओर बढ़ते हमारे कदम हर रोज, हर सुबह, हर पल नए युग की इबारत लिखता है। मौसम चाहे कोई भी हो, सुबह का वातावरण हमेशा खुशनुमा होता है। आज की सुबह सूरज का ये पैगाम और हवा का झोंका, आकाश पथ पर उड़ते पक्षियों का समूह, खेतों की ओर बढ़ते माटी पुत्र किसान और स्कूलों की ओर बढ़ते नवनिहालों के कदम, पेड़ पौधे, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि दिल गा उठता है ये तराना।

श्रोताओं, राजधानी रायपुर की ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाले करीब 135 साल पुराने टाउन हॉल को अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। नगर निगम ने इस हेरिटेज भवन को रिनोवेट कर नया स्वरूप दिया है और अब यहां केवल सरकारी कार्यक्रम ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आयोजन, कॉन्फ्रेंस, कम्युनिटी गैदरिंग, पुस्तक प्रदर्शनी, सम्मान समारोह, सेमिनार और अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टाउन हॉल में पहले मुख्य रूप से सरकारी बैठकों और प्रशासनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, लेकिन अब इसे बहुउद्देशीय हेरिटेज वेन्यू के रूप में विकसित किया गया है। बुकिंग के लिए लोगों को निगम में आवेदन करना होगा और जल्द ही ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हॉल में एसी, साउंड सिस्टम, माइक, पंखे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। विवाह समारोह आदि के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। श्रोताओं, मानसूनी बारिश की हम सभी को प्रतीक्षा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत जल्द मानसून के आगमन के संकेत हैं। खरीफ सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। बरसात के दिनों में कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावितों को राहत देने सरकार ने कई योजनाएं बनाई है। हम आपको बता दें कि आंधी, तूफान, बाढ़, अत्यधिक या कम वर्षा से फसलों को नुकसान होने की आशंका रहती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने और जहरीले जीव जंतुओं के काटने से इंसानों और मवेशियों की मौत के मामले भी सामने आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा दिलाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रावधान किए हैं। दोस्तों, सरकारी मदद पर आगे प्रकाश डालेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, प्राकृतिक आपदा में आहत को राहत देने सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से यदि फसल खराब हो तो बीमा क्लेम का अधिकार, आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित होने पर मुआवजा, तो बाढ़, आंधी या भूकंप से कच्चा या पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित व्यक्ति को SDRF या NDRF मानकों के अनुसार राहत राशि प्रदान की जाती है। प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त होती है। यदि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कोई व्यक्ति काल कवलित हो जाता है तो राज्य सरकार की ओर से ये राशि परिजनों को प्रदान की जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR अनिवार्य नहीं है, बस सरपंच या पटवारी से पंचनामा तैयार करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी तहसील में जमा करना होता है। 30 दिन में राशि न मिले तो मुख्यमंत्री राहत कोष में आवेदन किया जा सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारी बारिश, ओलावृष्टि या बाढ़ से फसल खराब होने पर किसान को बीमा क्लेम करने का अधिकार है। पीड़ित किसान 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, कृषि विभाग या टोल फ्री नंबर 1-4447-1-4447 पर सूचना दे सकते हैं। उचित कारण होने पर विलंब से दी गई सूचना के आधार पर भी क्लेम

श्रोताओं, सूचनाओं की कड़ी में हम आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म DAF भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब यूपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने विवरण अपडेट या सत्यापित कर 29 जून को शाम 6 बजे तक फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद ही ई एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से प्रारंभ होगी। भर्ती से संबंधित एक और सूचना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत OT टेक्नीशियन पदों की भर्ती की जाएगी। इसके आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन शास्त्र विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से OT या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग अब केवल मिलावटी खाद्य पदार्थों और अमानक उत्पादों पर कार्यवाही नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चला रहा है। विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि बायोडीजल निर्माण के लिए एकत्र किए जाने वाले इस्तेमाल हो चुके तेल का दोबारा खाने पीने की चीजें में उपयोग न करें। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट

रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों को भी खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निर्देशों के तहत बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग अभिभावकों को सचेत कर रहा है कि मोबाइल और स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने, शारीरिक गतिविधि कम होने और असंतुलित खानपान की वजह से बच्चों का वजन तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए अभिभावकों को बच्चों की जीवन शैली और खानपान में सुधार करने की सलाह दी जा रही है। विभाग 3 थीम पर अभियान चला रहा है। पुराने और जले हुए तेल का दोबारा उपयोग न करें, मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों से सावधान रहें तथा बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और खेलकूद के करीब लाएं। मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करने और सूचना देने हेल्पलाइन नंबर 9340597097 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, सूचनाओं की कड़ी में हम आपको बता दें कि छोटे और मध्यम व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान MSME लोन यानी ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये लोन व्यवसाय शुरू करने, उसका विस्तार करने, नई मशीनरी, कच्चा माल जुटाने या कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है। सरकार MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण के लिए सहायता करती है। इस योजना के तहत बैंक या वित्तीय संस्था में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। दस्तावेजों और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। सभी शर्तें पूरी होने पर ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, उद्यम पंजीकरण, GST यदि लागू हो तो, बैंक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न, वित्तीय विवरण और पासपोर्ट आकार की फोटो आमतौर पर आवश्यक होते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि लोन छोटे व मध्यम व्यवसायों के लिए एक प्रभावशाली साधन है। सही योजना और दस्तावेजों और वित्तीय अनुशासन के साथ इसका लाभ लेकर उद्यमी अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो उठाएं योजनाओं का लाभ और सुने ये खूबसूरत गीत।

घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में व्यापार करने वाले दुकानदारों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हम आपको बता दें कि राज्य के श्रम विभाग ने छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना नियम 2021 में संशोधन कर एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके माध्यम से दुकान मालिकों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से दुकानदारों को अपनी दुकान की श्रम पहचान संख्या लेबर रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए श्रम पहचान संख्या के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म 2 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों और ई चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के महज 24 घंटे के भीतर वेब पोर्टल के जरिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र स्वघोषणा पर आधारित और पूरी तरह से सिस्टम जनरेटेड होगा, जिसमें किसी भी अधिकारी के फिजिकल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। तो श्रोताओं, योजना का उठाएं लाभ

श्रोताओ, नशा न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को तोड़ देता है। नशे की वजह से कई घर परिवार उजड़ जाते हैं। बेहतर समाज बनाने सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग 17 जून से 26 जून तक प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान, इस थीम के अंतर्गत सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। नशे के विरुद्ध जनभागीदारी को बढ़ावा देने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की गई है। इस सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोधक दिवस पर विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। तो दोस्तों, किसी भी दुर्व्यसन से बचें और सुने ये खूबसूरत गीत।

नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से।

0: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ

0: एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं, और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की

0: शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100 परसेंटाइल वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और प्रवीणा का
0: नमस्कार। प्रवीणा जी, आज है माह का अंतिम बुधवार
1: जी,
0: और माह के अंतिम बुधवार का हमारे श्रोताओं को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि इस बार हमारे इस माह के श्रोता कौन हैं। तो इंतजार की घड़ियां बस चंद मिनटों की और हैं, और हमारे साथ साथ आप भी जान जाएंगे कि इस माह के हमारे श्रोता कौन हैं। बहरहाल

0: प्रवीणा जी, आपके हाथ में ये बहुत सारे पत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप बेताब लग रही हैं ये पहले पोस्टकार्ड को पढ़ने के लिए, तो बताइए ये किसका है?
1: जी दीपक जी, ये पहला पोस्टकार्ड है खैरागढ़ से देवेंद्र महोबे का। लिखते हैं, 27 मई का चिंतन श्रीमती रोहिणी चिमोटे का सुना, आपको और वाचक दीपक भाई को बधाई। चिंतन का सार ये है कि हम किसी की प्रतिभा का गला घोटकर आगे नहीं बढ़ सकते, सत्य अटल होता है।
0: देखिए, सत्य अटल होता है और चिंतन में कहे गए विचार भी हमारे जीवन में अटल स्मृति छोड़ जाते हैं प्रवीणा जी।
1: बिल्कुल।
0: और यही विचार हमें जीवन में सतत रूप से आगे बढ़ने की और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: अमरपुर पेंड्रा से रेखा देवी और श्वेता देवी श्रीवास्तव लिखते हैं, 2 जून को प्रसारित मोर भुइयां कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आया। इसमें डॉक्टर सियाराम साहू जी के वार्ता में हमारे छत्तीसगढ़ के 12 महीनों के त्योहारों का वर्णन किया गया। डॉक्टर दीपशिखा पटेल से कहानी फुलवा सुनी जो शिक्षा प्रद लगी, और डॉक्टर मीता अग्रवाल का कविता पाठ भी हमने सुना जो हमें बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई।
0: हमारे अंचल के साहित्यकारों को मोर भुइयां के माध्यम से अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा मंच मिलता है, और इस मंच की सभी प्रस्तुतियां हमारे श्रोताओं को अच्छी लग रही है, ये जानकर हमें खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दत्रेंगी से विश्राम यदु और पार्वती यदु लिखते हैं, दीपक जी, जब भी आपके पत्र कार्यक्रम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है।
0: भाई, आपकी खुशी के साथ साथ हमारी भी खुशी बढ़ जाती है जब आपके पत्र हम तक पहुंचते हैं, और इन्हीं सभी पत्रों के साथ ये सिलसिला वर्षों से चला रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा लिखते हैं, 8 जून को शंकर प्रसाद श्रीवास्तव जी का चिंतन सुना, अहिंसा के अर्थ को परिभाषित करता जो प्रेरणादायी लगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अहिंसा मानवता का दूसरा रूप, सत्य का पूरक और व्यवहार का सत्य है। अहिंसा मन वचन और कर्म से तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरों के अधिकारों और स्वाभिमान को चोट पहुंचाना भी हिंसा है। जहां अहिंसा का मान नहीं, वहां मानवता नहीं। अहिंसा मानवता का पर्याय है। मनुष्य को उस ज्ञान को लेने का कोई अधिकार नहीं जिसको वो दूसरों को दे नहीं सकता।
0: प्रवीणा जी, देखिए, इन्होंने अपने पत्र में कितने अच्छे विचारों का सार लिखा हुआ है, और हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाला ये चिंतन हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह हमारे प्रसारण की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। बेमित्रा से योगिता और हेमलता सारथी लिखते हैं, दीपक जी, 12 जून को अंकुर शुक्ल द्वारा नमस्कार रायपुर में बेहतरीन अंदाज के साथ अनेक प्रेरणादायक ज्ञान से परिपूर्ण बातों के साथ रेडियो सुना, मन को शांति मिली, हमारी दिनचर्या को सुगम बना देता है ये कार्यक्रम। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस पर वर्णिका शर्मा जी से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। 1089 हेल्प नंबर द्वारा जानकारी और उचित मार्गदर्शन के विषय पर हमें बताया गया। वाहन परिवहन के मालिकों को मोबाइल द्वारा भुगतान हेतु सीएल देवांगन जी से बेहतरीन जानकारी सुनने को मिली, और सरकार की 12 वर्षों की महत्वपूर्ण योजनाओं पर वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता से जानकारी मिली। सभी जानकारियों के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रवीणा जी, एक नमस्कार रायपुर को तैयार करने के लिए हमारे प्रस्तुतकर्ता कितनी मेहनत करते हैं
1: जी,
0: और विविध विषयों की जानकारी इसमें होती है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे श्रोताओं की सुबह की शुरुआत बड़ी ही जानकारियों से परिपूर्ण होती है, उनका ज्ञान बढ़ता है और मधुर संगीत से उनका घर आंगन गुंजायमान होता है। सुबह सुबह खुशियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके घर आंगन में बिखरती हैं, तो खुशियों के ये फूल नमस्कार रायपुर में हर रोज़ यूं ही खिलते रहेंगे, जिनकी खुशबू से आपका घर आंगन यूं ही महकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर लिखते हैं, धर्म जोड़ने का कार्य करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। धर्म धारण करें, सुरक्षा के दायरे में रहें, और धर्म ग्रंथों से पाठ के अंतर्गत बौद्ध धर्म धम्म पद से हमने पाठ सुना। इससे ये भी हमें भान हुआ कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। लाजवाब प्रसारण हेतु आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई।
0: हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही उच्च विचार निहित है प्रवीणा जी
1: जी,
0: और यही उच्च विचार हमारे महापुरुषों की जीवनी और उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों से हम तक

0: धर्म ग्रंथों से पाठ के माध्यम से पहुंच रहे हैं और यही विचार हमें सदैव सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए आपको।
1: 7 जून को आप मन के गीत प्रस्तुत किया अनुभा अग्रवाल ने, 14 जून को आप मन के गीत लेकर आई प्रवीणा त्रिपाठी। इन दोनों ही प्रस्तुतियों की तारीफ में ये पत्र है सिर्री गातापार से लावण्या साहू और उपासना साहू का, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद और गुलशन कुमार वर्मा का, भाटापारा से चोवाराम हरीश वर्मा, भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम, और कोरदा से कलीराम यादव का।
0: हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों के प्रति आपका ये लगाव सतत रूप से जारी है आपके पत्रों के माध्यम से। हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं को आपका जो स्नेह मिल रहा है वो हमारी बहुत ही बहुमूल्य पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद इन पत्रों के लिए आपको। और प्रवीणा जी, अब आपके हाथ में मुझे ईमेल नजर आ रहा है
1: जी, दीपक
0: तो बताएं जी पहला ईमेल किसका है?
1: जी दीपक जी, पोस्ट कार्ड के बाद अब ये ढेर सारी ईमेल पढ़ने जा रही हूँ
0: जी।
1: और पहला ईमेल हमें भेजा है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह ने। लिखते हैं, 14 जून को खेल संसार में साप्ताहिक खेल समीक्षा सुनी, खेल तैराकी विषय पर जो रोचक, शिक्षाप्रद और जानकारी से भरी रही। इस कार्यक्रम को सुनना बड़ा अच्छा लगा और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: खेल संसार कार्यक्रम हर रविवार को सुबह प्रसारित होता है जिसके माध्यम से अंचल की खेल प्रतिभाओं से बातचीत की जाती है और हमारे श्रोता इस बात से भी अवगत होते हैं कि हमारे अपने प्रदेश में खेलों की कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। पत्र के लिए धन्यवाद
1: जी। दीपक जी, जो अगला मेल है, इस मेल में हमारे किसी श्रोता ने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन इस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। 16 जून को आपके केंद्र से प्रसारित छत्तीसगढ़ी साहित्यिक समन्वित पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां में हमर संस्कृति हमर साहित्यकार के तहत बेहद ज्ञानवर्धक और उपयोगी भेंटवार्ता सुनने को मिली, जिसमें जाने माने कवि और साहित्यकार सुरजीत नवदीप से समीर शुक्ल जी की रोचक और सार्थक बातचीत सुनी। इस वार्ता के माध्यम से हमें नवदीप जी की शिक्षा दीक्षा के साथ ही उनकी पारिवारिक और साहित्यिक जीवन की पृष्ठभूमि और उनके अनुभव के बारे में काफी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिली, जो हमारे लिए प्रेरणादायी और अनुकरणीय रही। अपनी रचना और साहित्य सृजन से जन जन में जागरूकता लाने के साथ ही समाज और राष्ट्र में उन्नति, विकास और सांस्कृतिक उत्थान में उनकी सराहनीय भूमिका रही है। उनकी रचनाओं से भ्रातृत्व भाव, सामंजस्य और समरसता की धवल धारा सदैव प्रवाहित होती रहे। एक सार्थक और महत्वपूर्ण भेंटवार्ता के लिए सुरजीत सिंह नवदीप जी और समीर शुक्ल जी सहित आकाशवाणी रायपुर को हमारी कोटिशह बधाई। और इसी मोरभुइयां की तारीफ में ये मेल है धमतरी से रामचंद माखीजा और सविता माखीजा, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार और सुजाता साहू, और गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर और कचरीबाई देवांगन का।
0: हमारे अंचल के प्रतिष्ठित प्रसिद्ध कवि सुरजीत नवदीप जी से ली गई ये भेंटवार्ता हमारे श्रोताओं ने पुनः सुनी और इस भेंटवार्ता के माध्यम से सुरजीत जी ने अपनी लेखन यात्रा का जो जिक्र किया था और उसके अलावा अपने सृजन के बारे में जो बताया था, यकीनन उसे सुनकर हमारे नवोदित रचनाकारों को भी कविता से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी प्रवीणा जी।,
1: जी
0: और ऐसे ही कवियों से की गई बातचीत के माध्यम से सृजन की ये धारा अविरल प्रवाहित होती रहेगी। पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फुलझर घटारानी से योगेश्वर साहू और डोमेश्वरी साहू लिखते हैं, 17 जुलाई को कार्यक्रम आपके पत्र लेकर आए दीपक हटवार और हरजीत कौर। कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रशंसा, बधाई, सुझावी, शिकायती सभी तरह के पोस्ट कार्ड और ईमेल पत्रों को बराबर शामिल किया गया। श्रोताओं के विचारों से कार्यक्रम में निखार आता है। जब दीपक हटवार श्रोताओं के पत्रों का जवाब देते हैं तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। श्रोताओं के पत्रों को सरल शब्दों में पढ़कर सुनाया हरजीत कौर ने, कार्यक्रम बेहद अच्छा लगा। आपके पत्र कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई।
0: आपके पत्र कार्यक्रम हमारे श्रोताओं का अपना कार्यक्रम है प्रवीणा जी
1: जी,
0: और देखिए उन्हें अपने पत्रों का उत्तर सुनने का जितना इंतजार होता है, हमें भी आपके ईमेल्स और पोस्टकार्ड का इंतजार रहता है। और अभी वर्तमान में ईमेल्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता अब अपने स्मार्टफोन के माध्यम से हमें ईमेल करना भी सीखे हैं। अब कुछ ही श्रोता शेष रह गए हैं प्रवीणा जी जो हमें पोस्टकार्ड भेजते हैं, लेकिन उनकी भी भावनाओं की कद्र करते हुए हम पोस्टकार्ड भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कामना करते हैं कि वे भी अब ईमेल करना सीख जाएंगे तो उन्हें भी

0: ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कन्यावाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी और लक्ष्मीना सोनवानी लिखते हैं, 19 जून को कार्यक्रम इनसे मिलिए में निर्माता निर्देशक और लेखक श्री मनु नायक जी से दीपक हटवार जी की भेंट वार्ता कि एक पल क्षण के लिए हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी हस्तियों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मा एक ऐसा कलाकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत की नींव रखी, छत्तीसगढ़ रायपुर के कूरा गांव में जन्मे मनु नायक जी की इनके बचपन और बचपन से ही इन्हें छत्तीसगढ़ी कला साहित्य में इनकी रुचि और अच्छे संसाधन न होने के बावजूद इनकी कड़ी मेहनत और छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में पहली फिल्म बनाने की कहानी कही देवे संदेश जो इन्होंने फिल्म बनाई थी ये सब हमने सुना। साथ ही इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के प्रदर्शन के लिए है और इनकी पॉजिटिव स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी कार्य को दृढ़ संकल्प होकर करें तो वो एक दिन जरूर पूरा होता है। और इनसे मिलिए के इस कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है नांदघाट कातल बोर्ड से भाग

0: फिल्म बनाई थी, ये सब हमने सुना। साथ ही इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के प्रदर्शन के लिए है और इनकी पॉजिटिव स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी कार्य को दृढ़ संकल्प होकर करें तो वो एक दिन जरूर पूरा होता है। और इनसे मिलिए कि इस कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल हैं, नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह और भाग्यश्री राजपूत, खमतराई रायपुर से हीरा साहू, बठेना पाटन से बलकरण नीरा वर्मा, तेंदुभाटा मगरलोड से उमेंद कुमार महेश्वरी निषाद, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद और चंद्रकांत वर्मा, कनेरी से सनत कुमार यादव और रायपुर से वैभव और चिराग जैन के।
1: मनु नायक जी हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के पहले लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं प्रवीणा जी, और मनु नायक जी से की गई इस विस्तार से बातचीत के लिए हमारे श्रोताओं के सुझावी पत्र भी आते रहे हैं, फरमाइशी पत्र भी आते रहे हैं कि उनसे ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण भी किया जाए। तो देखिए, इस भेंटवार्ता के प्रसारण से हमारे कितने सारे श्रोताओं को उनकी सृजन यात्रा के बारे में जानने को मिला, और मनु नायक जी जैसे छत्तीसगढ़ी सिनेमा के शिल्पी के अनुभवों को सुनकर आज की पीढ़ी के सिनेमा से जुड़े हमारे अंचल के कलाकारों को भी अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कार्य करने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: करही बदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर और शारदा निर्मलकर लिखते हैं, 19 जून को कार्यक्रम नवाबिहान में महिला बाल विकास के उपसंचालक ममता भगत जी से वीरभान साहू जी की भेंटवार्ता हमें अति प्रशंसनीय लगी। भगत जी व साहू जी को दिल से धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के अधिकारों, अस्तित्व सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। इसे जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार करना और उन्हें शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। नवाबिहान की ही तारीफ में ये मेल है, धरसीवा से छेदूलाल और सीता यादव का, रायपुर से रतन और कोकिला जैन का।
1: नवाबिहान कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं प्रवीणा जी, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उससे वंचित न रहे। पत्रों के लिए धन्यवाद।
0: सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल और मानवी पटेल लिखते हैं, बीमारी चाहे महिलाओं में हो या पुरुषों में, बीमारी का असर तो होगा ही, लेकिन अगर बात करें महिलाओं में होने वाली PCOS की, तो ये बहुत अधिक प्रभाव डालती है। इसके लिए संतुलित आहार, नियमित जांच, तनाव से दूर, पर्याप्त नींद और एक विशेष और लाभप्रद बात जिसे जीवन में अनिवार्य रूप से शामिल करना है, और वो है योग और व्यायाम। तब कहीं जाकर के हम अपने जीवन को संतुलित जीवन मान सकते हैं। 20 जून को सुबह 8:30 पर डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में डॉक्टर आंचल अग्रवाल से ली गई भेंटवार्ता से ये सारी जानकारियां हमें सुनने को मिली, जो बेहद ही रोचक और लाभप्रद रही। सफल प्रसारण के लिए प्रतिभागी साथियों के साथ आकाशवाणी रायपुर को सहृदय बधाई।
1: डॉक्टर की सलाह के हर अंक के माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक स्वास्थ्य वर्धक संदेश पहुंचा रहे हैं, ताकि वे सभी स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव जागरूक रहें। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: भारती राठौड़ और वरुण राठौड़ रायपुर से लिखते हैं, कार्यक्रम बातों बातों में 20 जून को विषय था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस विषय पर पहुना अमित शर्मा, वरिष्ठ और अनुभवी योग विशेषज्ञ से बातचीत की विकल्प शुक्ल ने। अमित जी ने कहा कि योगाभ्यास जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भारती क्रियाएं करने से आपकी मानसिक व्याधि समाप्त हो जाएगी, मन प्रसन्न चित्त और स्वस्थ रहेगा। एक उपयोगी और लाभदायक भेंटवार्ता के लिए आकाशवाणी परिवार को साधुवाद।
1: योग भगाए रोग, और जो योग को अपनाते हैं वे विभिन्न रोगों से मुक्त रहते हैं, यही संदेश इस भेंटवार्ता के माध्यम से दिया गया। हमारे ज्यादा से ज्यादा श्रोता अपने जीवन में योग अपनाएं, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल और मोरस जंघेल लिखते हैं, 20 तारीख के कार्यक्रम गाथा झरोके से भाग 4 मां नगेश्वर कैना के गाथा सुने बर मिलिस हवे, नगेश्वर कैना के कहानी के संग दीवार गीत मां गाथा सुने बर मिलिस हवे। कार्यक्रम मां वाचन स्वर दीपक हटवार और शीतला शुक्ला, लेखक PC लाल यादव और प्रस्तुति मोहन सी रामानी जी के रही सवे। कार्यक्रम बहुते बढ़िया लगिस, बने बने प्रस्तुति बर कार्यक्रम के जम्मो पात्र मल्ला बहुते अकन ले बधाई। और इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है, लिवई से गुलाब दास और राजा दास मानिकपुरी का।
1: हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है गाथा गायन, और इसकी विस्तृत जानकारी इस श्रृंखला के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है।

0: पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल और शकुन जंघेल लिखते हैं, 20 तारीख को दोपहर में चित्रपट संगीत में सभी गीत अभिनेता अमिताभ बच्चन से जुड़े फिल्मी गाने हमें सुनने को मिले और सारे गीत हमें बड़े अच्छे लगे। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई।
0: सुबह से लेकर शाम तक चित्रपट संगीत के माध्यम से हमारे श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन हो रहा है, पत्र के लिए धन्यवाद।
1: खैरागढ़ राजलालपुर से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे लिखते हैं, हम आपके केंद्र के पुराने और नियमित श्रोता हैं। यहाँ से प्रसारित होने वाले लगभग सभी कार्यक्रमों को हम ध्यान से सुनते हैं, साथ ही कार्यक्रम को सुनकर पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं भी प्रेषित करते हैं, लेकिन हमें बेहद अफसोस होता है जब हमारा कोई भी पत्र और ईमेल किसी भी फरमाइशी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता। विशेष रूप से ईमेल करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो और ईमेल करें फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में शामिल नहीं होता, लेकिन हम कार्यक्रम को सुनना नहीं भूल सकते। कृपया इस पत्र के माध्यम से हमारे मन में उत्पन्न होने वाली शंका का समाधान कीजिएगा, कहीं हमसे पत्र लेखन में या पत्र प्रेषित करने में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई।
0: भाई देखिए, आपका पत्र हमें तो मिल गया है ना प्रवीणा जी।
1: बिल्कुल,
0: रही बात फरमाइशी कार्यक्रमों की, तो आपका पत्र बस हमारे उद्घोषकों के हाथों तक पहुंच जाए तो आपका नाम भी जरूर शामिल होगा, बस आप इंतजार करें जी।
1: बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और योगेश्वर साहू लिखते हैं, 20 जून शनिवार को नमस्कार रायपुर सुना प्रस्तुति अनुभा अग्रवाल की थी। रेडियो रिपोर्ट में प्रदेश के मीडिया कर्मी के बारे में सुना, जिसके लिए रमाशंकर जी दीपक हटवार जी के साथ आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में कुछ कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट भी जाती है प्रवीणा जी, और ऐसे कार्यक्रम जो हमारे अंचल में आयोजित किए जाते हैं तो उनकी भी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, पत्र के लिए धन्यवाद।
1: मेघापारा चिल्फी से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल लिखते हैं, 22 जून को हमने चिंतन सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, आलेख श्री दामोदर प्रसाद तिवारी जी का था, कोटि कोटि बधाई।
0: वही चिंतन हर रोज प्रसारित होता है और हर रोज आप चिंतन से यूं ही जुड़े रहें, पत्र के लिए धन्यवाद।
1: तेंदुभाटा मगरलोड से पोषण कुमार निषाद और शिवा निषाद लिखते हैं, आप मन के गीत कार्यक्रम 14 जून को प्रवीणा त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया, बड़ मन भावन लगिस ए दिन के कार्यक्रम हा, रोचक प्रस्तुति पर प्रवीणा दीदी ला हार्दिक धन्यवाद। गांव तेंदुभाटा से भूपेश कुमार निषाद और दिव्यांश निषाद लिखते हैं, 15 जून को फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम को हमारी प्यारी दीदी प्रवीणा त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया, कार्यक्रम में श्रोता साथियों के साथ बहुत अच्छी बातें करी और उनके पसंद के गीत सुनवाए, इस दिन का कार्यक्रम हमें बड़ा मनमोहक लगा, रोचक प्रस्तुति के लिए प्रवीणा त्रिपाठी को दिल से धन्यवाद। चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और अजय कुमार साहू लिखते हैं, 16 मई को आप मन के गीत सुना जिसे लेकर आई थी शुभ्रा ठाकुर, अपनी मधुर आवाज से हम श्रोताओं का मेल और पत्रों को सुंदर सजोकर बहुत सुंदर गीत सुनवाए जो मनमोहक थे, सफल प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता और आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई। अगला पत्र है लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी का, लिखा है 17 जून के ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम में हमार मयारू दीदी तारकेश्वरी जी श्रोता संगवारी मनला भेजे गए ईमेल और नाव शामिल कर बहुत सुघर सुघर गीत सुनाई जेखर मनमोहक प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला हमार मयाले भरे बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र है गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास और मिलव दास मानिकपुरी का, ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया सौम्या रिजवी ने, श्रोताओं के ईमेल अधिक से अधिक शामिल किए आपने और हमें इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत अच्छा लगा, सफल प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। और ये मेल भेजा है टेका पार बालोद से चिंताराम यादव और रवि प्रकाश यादव ने। अगला ईमेल भेजा है समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता दीपक गुप्ता ने, लिखते हैं 20 जून को प्रसारित कार्यक्रम आपके मीत ये गीत सुना बेहतरीन पेशकश के लिए अनुभा अग्रवाल जी को साधुवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में देवरी भाटापारा से गनुला रजक के आर साहू और मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार और योगेश साहू का भी ईमेल हमें मिला है। ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता लिखते हैं 21 जून दिन रविवार को हमला आप मन के गीत सुने बर मिलिस जिला प्रस्तुत करत रहीस हवे तारकेश्वरी आसुदानी जी मनला जेमा श्रोता संगी मन के ईमेल और चिट्ठी ला जल्दी जल्दी स्पष्ट शब्दों में शुद्ध उच्चारण और सही नाम पता के संग अधिक से अधिक संख्या में ईमेल और पत्र ला शामिल करिस और श्रोता संगी मन के पसंद के गीत सुनवाइस जेला सुनके हमरो मन गदगद होगे सुघर प्रस्तुति पर बहुत बहुत बधाई। और इसी कार्यक्रम की तारीफ में कुई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम और जामुनबाई धुर्वे का भी ईमेल आया है। और भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी और राजकुमारी मरावी लिखते हैं 22 जून के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम में हमर मयारू दीदी तारकेश्वरी जी श्रोता संगवारी मनले फोन में गोट बात करके हमर पसंद के

0: बहुत सुग्घर सुग्घर गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति बर आकाशवाणी परिवार ला कोरी कोरी बधाई। और इसी कार्यक्रम की तारीफ में पत्र मिला है हसदा नंबर दो से कमलेश और जितेंद्र साहू का।
1: तो वही हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों में फरमाइश भेजने वाले, उन कार्यक्रमों को सुनने वाले इतने सारे श्रोताओं ने अपनी प्रतिक्रियाओं से अपनी भावनाएं व्यक्त की। इन सभी पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रवीणा जी, बारी है हमारे इस माह के श्रोता की
0: जी।
1: तो आइए जानें हमारे इस माह के श्रोता कौन हैं।

0: हमारे आज के श्रोता हैं ग्राम सिसदेवरी पलारी जिला बलौदा बाजार के रविशंकर चंद्राकर। रविशंकर जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दीपक हटवार सहित तमाम श्रोताओं को मेरा नई भरा अभिवादन।
0: ये बताएं रविशंकर जी, आप आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण कब से सुन रहे हैं?
1: जी, जब मैं कक्षा 5वीं 6वीं पढ़ रहा था तब मेरे ताऊ जी जो हैं चौपाल कार्यक्रम सुना करते थे, तो उसे वो कार्यक्रम मैं बहुत ही ध्यान से सुना करता था। और उस चौपाल कार्यक्रम में बरसाती भैया जी आते थे, तो बरसाती भैया जी के कार्यक्रम को सुनकर ही हमारी रात्रि का भोजन होता था। तभी से मैं आकाशवाणी रायपुर जो है लगातार सुन रहा हूँ। जी, आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम को सुनते सुनते मुझे 44 साल हो गया। जब मेरी उम्र 12 साल थी तब से कार्यक्रम सुन रहा हूँ और आज मेरी उम्र जो है 56 साल है।
0: तो ये बताएं, आप केवल आकाशवाणी रायपुर में ही पत्र भेजते हैं या अन्य आकाशवाणी केंद्रों में भी?
1: जी, आकाशवाणी रायपुर में ही पत्र भेजता हूँ, लेकिन फोन इन कार्यक्रम में बहुत सारे आकाशवाणी केंद्रों में भी सुनता हूँ और फोन लगाता हूँ, और पत्र केवल आकाशवाणी रायपुर और दिल्ली और विविध भारती में भेजता हूँ।
0: तो आप फोन इन के कार्यक्रमों में अन्य आकाशवाणी केंद्रों से भी जुड़े हुए हैं, कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र हैं?
1: जी, आकाशवाणी अंबिकापुर, आकाशवाणी बिलासपुर, आकाशवाणी रायगढ़, आकाशवाणी बैतूल, विविध भारती, आकाशवाणी जगदलपुर और बालाघाट।
0: ये बताइए कि इतने सारे आकाशवाणी केंद्रों को आप सुन कैसे पाते हैं?
1: जी, अलग अलग, वैसे आकाशवाणी रायपुर तो सुनते ही रहते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों का रिकॉर्डिंग होता है, तो उसके अनुसार से वो कार्यक्रम जो है हम सुन लेते हैं।
0: अब अगर हम आकाशवाणी रायपुर की बात करें तो आकाशवाणी रायपुर के कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं?
1: आकाशवाणी रायपुर के मुख्य कार्यक्रम हैं जो मेरे को बहुत ही प्रभावित करते हैं, चिंतन है, नमस्कार रायपुर है, युवानी कार्यक्रम है, चौपाल है और मोर भूया है। ये कार्यक्रम से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ और कार्यक्रमों की कभी कभी समीक्षा भी लिखता हूँ।
0: वैसे रविशंकर जी, आप करते क्या हैं?
1: जी, मैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलौदा बाजार में अंग्रेजी का व्याख्याता हूँ, साथ ही साथ खेती किसानी में भी रुचि लेकर कार्य करता हूँ।
0: आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो के आकाशवाणी के बहुत पुराने श्रोता हैं, और आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता भी हैं, तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं क्या वे भी जानते हैं कि आप आकाशवाणी के बड़े ही पुराने शौकीन श्रोता हैं?
1: जी, वे लोग बताते हैं कि सर आपका कार्यक्रम हम लोग सुनते रहते हैं, और मेरे माध्यम से बहुत सारे बच्चे भी आकाशवाणी के कार्यक्रम से जुड़ते हैं और वो भी सुनते हैं, और वो जो ज्ञान आकाशवाणी के कार्यक्रमों से वे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।
0: अभी जो स्थिति है हमारे श्रोताओं की, जो लोग आकाशवाणी रायपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के भी श्रोता हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के भी श्रोता हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: श्रोता जो हैं बहुत ही मिलनसार हैं और प्यार मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाते हैं। हर एक कार्यक्रम, हर एक श्रोता जो है जब उनसे बात करते हैं तो बहुत ही मन से बात करते हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं और बहुत ही दिल से चाहते हैं रेडियो के श्रोता जो है।
0: रविशंकर जी, आपका अपना कोई ऐसा सपना होगा जिसको आप साकार करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से भी आपको कुछ सीख मिली होगी, ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में?
1: जी, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था तो कॉलेज में मैं युवानी कार्यक्रम में अक्सर भाग लेता था और प्रश्न मंच में जाया करता था, जिसके माध्यम से मुझे अपनी करियर को चुनने में और करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद किया। प्रश्न मंच कार्यक्रम है, सवालों के आईने हैं, सवाल जवाब है, इन कार्यक्रम में लगातार मैं भाग लिया करता था, जिसके कारण मेरी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आए।
0: इस माह आपने आकाशवाणी रायपुर के विभिन्न कार्यक्रम सुने होंगे, कोई ऐसा कार्यक्रम जो

0: आपको बहुत अच्छा लगा।
1: जी, इस माह की मैं दो कार्यक्रम का जिक्र करना चाहूंगा। पहला 19 जून 2026 को इनसे मिलिए कार्यक्रम में, जिसमें छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कई देवे संदेश के निर्माता पटकथा लेखक मनु नायक से दीपक हटवार जी का भेंट वार्ता सुना, ये मुझे बहुत प्रभावित किया। और दूसरा कार्यक्रम जो है साहित्यिक पत्रिका पल्लवी, जिसमें डॉक्टर उमाकांत मिश्रा से वार्ता था, जन जागरण में नाटकों की भूमिका, कवि सुशील यादव की गजल था और आशा झा की कहानी थी जिसमें वट वृक्ष के बारे में बताया गया। ये दो कार्यक्रम जो है मुझे बहुत ही प्रभावित किया इस माह।
0: तो रविशंकर चंद्राकर जी, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं हर हफ्ते भेजते रहें। हमसे बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे इस माह के श्रोता सिस देवरी पलारी के रविशंकर चंद्राकर। और अब प्रवीणा जी, चलने से पहले हम ईमेल आईडी बता दें, raiapkepatra1@gmail.com। पोस्टकार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। तो अगले हफ्ते आपके पत्रों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए दीपक
2: और प्रवीणा को। नमस्कार।

आपके पत्र। अभी आप सुन रहे थे श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, महात्मा गांधी की कृति मेरे समकालीन गांधी दर्शन की एक अनमोल धरोहर है। इसमें गांधी जी ने अपने दौर के कई व्यक्तित्वों को याद किया है। इसी क्रम में आज से हम आरंभ कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। तो लीजिए सुनिए इस विचार श्रृंखला का पहला भाग।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अब संसार में नहीं है, ये विश्वास करना कठिन मालूम होता है कि वह संसार से उठ गए। हम लोगों के समय में ऐसा दूसरा कोई नहीं जिसका जनता पर लोकमान्य के जैसा प्रभाव हो। हजारों देशवासियों की उन पर जो भक्ति और श्रद्धा थी वह अभूतपूर्व थी। ये अक्षरशः सत्य है कि वह जनता के आराध्य देव थे, प्रतिमा थे। उनके वचन हजारों आदमियों के लिए नियम और कानून से थे। पुरुषों में पुरुष सिंह संसार से उठ गया, केसरी की घोर गर्जना विलीन हो गई।

देशवासियों पर उनका इतना प्रभाव होने का क्या कारण था? मैं समझता हूं इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सहज है। उनकी स्वदेश भक्ति ही उनकी इंद्रिय वृत्ति थी। वह स्वदेश प्रेम के सिवा दूसरा धर्म नहीं जानते थे। जन्म से ही वह प्रजासत्तावादी थे। बहुमत की आज्ञा पर इतना अधिक विश्वास करते थे कि मुझे उससे भयभीत होना पड़ता था। पर यही वह बात है जिससे जनता पर उनका इतना अधिक प्रभाव था। स्वदेश के लिए वह जिस इच्छा शक्ति से काम लेते थे वह बड़ी ही प्रबल थी। उनका जीवन वह ग्रंथ है जिसे खोलने की भी जरूरत नहीं, वह खुला हुआ ग्रंथ है। उनका खाना पीना और पहनावा बिल्कुल साधारण था। उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही निर्मल और बेदाग है। उन्होंने अपनी आश्चर्यजनक बुद्धि शक्ति को स्वदेश को अर्पण कर दिया था।

जितनी स्थिरता और दृढ़ता के साथ लोकमान्य ने स्वराज्य की शुभ वार्ता का उपदेश किया, उतना और किसी ने नहीं किया। इसी कारण स्वदेशवासी उन पर अटूट विश्वास रखते थे। साहस ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी आशावादिता अदम्य थी। उनको आशा थी कि जीवन काल में मैं ही संपूर्ण रूप से स्वराज्य स्थापित हुआ देख सकूंगा। यदि वह इसे नहीं देख सके तो उनका दोष नहीं। उन्होंने निसंदेह

स्वराज्य प्राप्ति की अवधि बहुत कम कर दी है। ये अब हम लोगों के लिए है कि जो अभी तक जी रहे हैं कि अपने द्विगुणित उद्योग से उसको जहां तक हो शीघ्र सत्य कर दिखाएं। मैं अंग्रेजों को ऐसी धारणा बनाने से मना करता हूं कि लोकमान्य अंग्रेजों के शत्रु थे या अधिकारी वर्ग या अंग्रेजी भाषा से घृणा करते थे। कलकत्ता कांग्रेस के समय हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के संबंध में उन्होंने जो कहा था उसे सुनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। वे कांग्रेस पंडाल से तुरंत ही लौटे थे। हिंदी के संबंध में उन्होंने अपने शांत भाषण में जो कहा उससे बड़ी तृप्ति हुई। भाषण में आपने देशी भाषाओं का ख्याल रखने के कारण अंग्रेजों की बड़ी प्रशंसा की थी। विलायत जाने पर यद्यपि उन्हें अंग्रेज जुरूरों के विषय में बुरा ही अनुभव हुआ, तथापि उनका ब्रिटिश प्रजासत्ता में बड़ा ही दृढ़ विश्वास हो गया। उन्होंने यहां तक कहा था कि पंजाब के अत्याचारों का चित्र सिनेमेटोग्राफ यंत्र द्वारा ब्रिटिश प्रजासत्तावादियों को दिखाना चाहिए।

श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। ये विचार श्रृंखला आगामी अंकों में भी जारी रहेगी।

गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरी समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह की 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार को, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है छैला बाबू।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये था आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म छैला बाबू के लिए स्वर दिया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम

0: या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए प्यार का तो फलाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादे,
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म फकीरा में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाश

0: वाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की, बोल आनंद बख्शी के, संगीत जतिन ललित का।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इसी सभा में 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद पुनः ले सकेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं जमील अहमद। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम सुनते हैं जुबैर रिजवी का ये कलाम।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायवाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं जमील अहमद।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए प्यार का तो फलाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जमील अहमद। आइए अब सुनते हैं इरफान लखनवी की ये नात।

0: رقصاں مدینے۔
1: سگم سنگیت اس کارکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے جمیل احمد کو۔ میڈیم ویو اور ایف ایم بینڈ پر آکاشوانی کا یہ رائے پور اور سرائے پالی کیندر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ ہمارا اگلا کارکرم سنیں گے۔ میڈیم ویو پر آکاشوانی کا یہ رائے پور کیندر ہے۔ 9:55 ہوئے ہیں، لیجیے سنیے پرادیشک سماچار۔
2: یہ آکاشوانی رائے پور ہے، پرادیشک سماچار بلٹن کے ساتھ میں راہل سنہا۔ और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर की डॉक्टर बुधरी ताती भी शामिल थीं। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती है। वर्ष 1986 में इन्होंने बस्तर जिले में महिला जागरूकता और सशक्तिकरण के एक केंद्र के रूप में बारसूर को स्थापित किया। इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। अलनीनो के प्रभाव से इस बार देश में मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री नेताम ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन तिलहन पर जोर देने के साथ ही बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि कृषि विभाग ने कम अवधि वाली धान की किस्मों को बढ़ावा देने के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहनी और तिलहनी फसलों के

0: गुणवत्तापूर्ण बीजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नवरायपुर के ग्राम पलोद में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को समर्थन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर वातावरण और आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित की जा रही है। इन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण 1 अप्रैल को ही किया जाएगा। बैठक में स्कूलों की साफ सफाई, मरम्मत कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को 31 जुलाई तक दोबारा स्कूलों में प्रवेश दिलाने और शिक्षण गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और 1 चार पहिया वाहन बरामद किया जिस पर नीली बत्ती और पुलिस लिखा हुआ था। और कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य विकास किसान समृद्धि सह योजना PMKSSY के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों तथा कर्मचारियों से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ की बुद्री ताती को पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रदेश के 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर नया रायपुर के ग्राम पलोद में 2036 पौधों का रोपण कर भारत के 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प को दिया गया समर्थन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कुमार पंडित का तबले पर बजाया ताल 3 ताल में पेशकार कायदा रेला आदि। सारंगी पर लहरा दे रहे हैं शफीक हुसैन।

उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब का कायदा है, बहुत प्रसिद्ध कायदा है, तेन त्रिक तेन तेन ता ता किकित टिकट धिन त्रिक धिन धिन धातिरिकट तकतिरिकट धातिक धिगिन धातिगिन नाति धातिक धिगिन तातिरिकट तकतिरिकट तातिक तिकिन धातिगिन धातिक धिग धातिरिकट तकतिरिकट धातिक धिगिन धातिगिन नाति धाति। डेढ़ी का कायदा है ऐसे, इसको अजराला अजराला भी कह सकते हैं, अजराला घराने का कायदा है।

बिना तत्तक का दिन धात्र का देखते गीतक। ये जो रचना है कायदे की, इसका हर पूछ बोल बड़ा आधा आधा अधूरा सा है। धात्र का धीना, धीना गीना तू ना कीना, ऐसा नहीं है। धात्र का धीना तत्तक का धीना, धात्र का देखते गीतक का घेना ती धीना नाना ती धीना, धात्र का देखते गीतक तीना तात्र का तीना कतक तीना तात्रिक तिकट केत्र कतिन। हर बोल अधूरा सा छूटा छूटा सा है।

उस्ताद आमिर सिंह खान साहब का बहुत अच्छा और बहुत फेमस कायदा है, धा ते रिकेट धा दीन, धा धा दीन, धा ते धा धा दीन, धा रिकेट धा दीन, धा ते धा धा दीन, धा धा दीन, धा ते धा धा, धा रिकेट धा दीन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुमार पंडित का तबले पर बजाया ताल तीन ताल में पेशकार कायदा रेला आदि। सारंगी पर लहरा दे रहे थे शफीक हुसैन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

सपने साजन की। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था अलका याज्ञिक और मुकुल अग्रवाल ने, शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी नद्यम श्रवण ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण को बोल आनंद बख्शी के, संगीत जतिन ललित का, और फिल्म का नाम है मोहब्बतें।

मोहब्बतें इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का। फिल्म का नाम है मरते दम तक।

मरते दम तक इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह को, बोल सावन कुमार के, संगीत उषा खन्ना का, और फिल्म का नाम है लैला।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में ये था सावन कुमार का लिखा गीत। फिल्म लैला के लिए स्वर दिया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास को बोल मजरू के, संगीत आनंद मिलिंद का और फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास ने। शब्द रचना मजरूह की थी और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान

0: अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक प्रसारण। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।

संगवारी हो कार्यक्रम में सबले पहली हम सुनथन परशराम यदु और संगवारी मन के स्वर में गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठवा है भैनापाल लाटा बोर्डली देवनारायण साहू योगिता गीतिका चंचल रानी और उमाबाई साहू कन्नेवाड़ाली संतोष सूरी रेवती लक्ष्मण सूरी देवेन लक्ष्मण तखतपुरले मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा गंडई पंडरियाली दरियानमल अनीता मोटवानी राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी दिलदाले हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला निजामाबाद आंध्र प्रदेशली वासुदेव सावलानी अशोक कुमार सावलानी धरसीमाली छेदूलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव इहेले और संगवारी हैं रानू खुशी प्रवीण कुमार साहू इकबाल कुरैशी सिंगले सविता प्रदीप जैन रमेश यादव औ लवकुश सेन इंद्रप्रस्थ सदन रुद्रीले चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम शिखा शेफाली साहू। तो आवाओ आप जम्मो जन के फरमाइश में सुनथन परशराम यदु और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

0: परसराम यदु और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वीव और FM बैंड पे आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आओ अब सुनथन राजकुमार अग्रवाल अमचरी बाई के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीतला सुने खातिर बर हमला ईमेल पठो हैं भाटापारा ले दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, खलारी भीमखोज ले जीएल साहू, सरोज साहू, छोटी पिंकी, ग्राम पहारा ले पोषण बंछोर, चंद्रकिरण बंछोर, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति और यशस्वी यादव, लुरमी ले संतोष पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल, गर्रापार बांधा बाजार ले मानवेन्द्र साहू, राकेश साहू, सुलोचना साहू और गंगाराम साहू, पथेरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश सिंगरोल, नेहा और वान्या सिंगरोल, बन वघेरा ले योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा, रोशनी सारवा, बम्बूडी ले चंद्रकांत महिलांग, रमाकांत महिलांग, निगेश महिलांग, पदमपुर भिलाई ले दिनेश देवांगन, भाग्यश्री देवांगन, पुष्कर देवांगन और वंशिका देवांगन, छिरा ले हमर संगवारी हैं दिलीप जायसवाल, दिलेश्वर जायसवाल, दीपक, विभू, चित्रांश और देवांश जायसवाल, अम्बागढ़ चौकी ले रिजवान खान, घटारानी अंचल फुलझर ले योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू, हर्षिता साहू। तो आवाओ आप जम्मू झन के फरमाइश में सुनथन राजकुमार अग्रवाल और अमचिरी बाई के स्वर में ये गीत।

0: राजकुमार अग्रवाल के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने। ईमेल भेजाओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वेव और FM बैंड में आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: ईमेल भेजाओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वेव और FM बैंड पे आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ली। कार्यक्रम के अगला गीत रमेश कुमार मरकाम और सुनीता विश्वकर्मा के स्वर में। ये गीतला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठोए हैं लक्षण पुरले, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, अरण पिथौरले, कौतुक पटेल, गौरी पटेल, पायल पटेल, काजल पटेल। यहीं ले हमारे उस संगवारी हैं अमर सिंह पटेल, जयराम पटेल, पिथौरले FNN, अड़ार नानघाट ले माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, दहान बांधा बाजार से हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू साहू, सरस्वती साहू, प्यारे राम साहू, परमानंद साहू। इन्हें ले हमर संगवारी हैं कुमारी देवी साहू, पार्वती देवी साहू, ज्योति रानी साहू,

सीताका शाह उमर वाहिली, कुबेर सिंह साहु, सरस्वती साहु, शेर सिंह साहु, उर्मिला साहु, ढोढरी घोटियाली, महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल नैतिक, स्वप्निल कुमार, पुष्पांजलि निषाद, ग्राम नेताम टोला मोहलाली, नंद कुमार साहू, ठाकुर राम साहू, टेक राम, दुर्गा राम साहू, खुमेन लुमेन टोमिन साहू, भानपुरी मुसराली, आत्माराम यादव, विदेशी तुलसी यादव, परसा टोलाली हमर संगवारी हैं, ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, खुमेन तुसारनी मसिया, चांदोली छन्नूलाल साहू, मधु साहू, प्रेमबाई साहू, सुरसुरी ले हमर संगवारी हैं कैलाश यादव, योगेश कुमार और डिगेंद्र यादव, जुनवानी ले सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, नीलकंठ साहू, किशन साहू, लमानिन भाठा ले हमर संगवारी हैं बसंत कुमार विश्वकर्मा, लीला देवी विश्वकर्मा, तरुण कुमार, इंद्रजीत विश्वकर्मा, कांडे मानपुर ले रूप सिंह साहू, शैलेन्द्र साहू, रामदयाल साहू, गेंदा टोला बाजार चौक ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता और राजेंद्र गुप्ता, भीमखोज ले हमर संगवारी हैं संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, शीतल, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता, आंवरा डबरी ले श्यामलाल साहू, मोंगरा, संगीता, केसरी, चिंकी साहू और भदरसी ले पन्ना लाल सेन, तारा सेन और खुशबू सेन। आओ आप जम्मो जन के फरमाइश में सुनथन रमेश कुमार मरकाम और सुनीता विश्वकर्मा के स्वर में ये गीत।

रमेश कुमार मरकाम और सुनीता विश्वकर्मा के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुनियो। संगी हो आवाओ अब सुनथन भगवती साहू और संगवारी मन के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीतला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठोए हैं रोहासी ले मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, जानकी साहू, धमनी राजीम ले दुष्यंत कुमार बंजारे, आशीष कुमार बंजारे, शचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, रसेड़ा ले मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, डिगेश कुमार, पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, दीपा गुप्ता, शर डोंगरी ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, जय किशन साहू, योगेश साहू, वासु साहू, हेमा साहू, राधिका साहू, धमतरी ले रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, किरत राय वाधवानी, दीपक घनशानी, प्रदीप कुमार साहू, माही, पूजा छुटकी और शरद कुमार, मिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता टिम्पल देवांगन, खीकराम देवांगन, धर्मेंद्र देवांगन, मलाजखंड डोंगरिया ली मुन्ना लाल पटले, माधुरी पटले, याचना पटले, दीपांशु पटले, अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जय मंत्री केवट, अंजलि केवट, रुदानी केवट, कृष्णा केवट, मिलाई ले हमर संगवारी हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज सिद्दीकी, पुत्री कला ले राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सोमांशु पांडे, भाग्यलक्ष्मी पांडे, गुनगुन पांडे, महासोन ले हमर संगवारी हैं विषम दास मानिकपुरी, नर्मदा हिरमानी, दीपक दास मानिकपुरी, सालेभाटा महासोन ले जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण, दिव्यांशी, खेमू ध्रुव, हिच्छा महासोन ले अदालत दास वैष्णव, मानस दास वैष्णव, सतीश ऋचा गायत्री वैष्णव और खट्टी महासोन ले सुभाष शर्मा और छाया शर्मा। आवाओ आप जम्मो झन के फरमाइश मसुनथन भगवती साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

0: भगवती साहू के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वी वाओ FM बैंड पे आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए पर पढ़ते फिर पढ़ के भुला जाते।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
0: एक संग युवाणी।

संगी हो कार्यक्रम का अग्र गीत ला स्वर दे हैं धुरवा राम मरकाम और दुखिया बाई हा। ये गीत ला सुने खातिर बर हमला ईमेल पठोए हैं हटोद बाजार ले कमलनाथ पटेल, राकेश समीर, राजकुमारी पटेल, आरंग भिलाई ले वासुदेव साहू, रेणुका साहू, हिमांशु साहू, झिलमिल साहू, ग्राम कुटेना ले झामेश्वरी, टीकम, भूषण, धुरवा, कुसुम, वासु और मोक्ष, भाटापारा ले चंपा साहू, करण, राहुल साहू, हिमकेश्वर साहू, भाटापारा ले हमर और संगवारी हैं बचकमल, डॉक्टर बसंत बिगू, मोतीलाल, विनय ठाकुर, पुनियाबाई, नारायण यदु, दुलारीबाई, चुवाराम वर्मा, गंडई पंडरिया ले शिवा यादव, राज यादव, चिंटू तरुण यादव, चुवाराम यादव, कुमार यादव, धुर्रा बांधा ले प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, रानी गांव ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल, रिंगनी ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेमेतरा ले भरत लाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, लक्की सिन्हा, गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन, कचरी देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन,

ऋषभ ऋचा देवांगन, दामापुर बाजारली भूज कुमार बंजारे, लक्ष्मी बंजारे, दीपक और दीपिका बंजारे, सहा मालगीली आकाश चंद्रवंशी, सुखनंदन चंद्रवंशी, लुहारीडीह कवर्धाली अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत और निशान साहू, महादेवघाट अमलेश्वरली डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश ठाकुर, दतरेंगीले हमर संगवारी हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद कुमार वर्मा। तो आवो आप जम्मू झन की फरमाइश में सुनथन ध्रुवाराम मरकाम और दुखिया बाई के स्वर में ये गीत।

ध्रुवाराम मरकाम और दुखिया बाई के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवाओ अब सुनथन रामाधार वर्मा और सुशीला ठाकुर के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीतला सुने खातिर बर हमला ईमेल पठुए हैं नारायणपुर ले दिनेश्वरी बंजारे, मनीष कुमार बंजारे, पिपलोड सरगांव ले दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांशु वर्मा, पालचुआ ले उत्तर दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, पेडारा कांपा मुगेली ले खिलेश्वरी साहू, सत्यम साहू, राम कुमार, रामकिशन साहू, ग्राम बठेना

ये गीतला सुने खातिर बर हमला ईमेल पठवे हैं नारायणपुर ले दिनेश्वरी बंजारे मनीष कुमार बंजारे पीपलोड सरगांव ले दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और सीमांश वर्मा पालचुआ ले उत्तर दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर पेडारा कांपा मुगेली ले खिलेश्वरी साहू सत्यम साहू राम कुमार रामकिशन साहू ग्राम बठेना पाटन ले परमेश्वर साहू पूर्वी और हेजल साहू करही भदल ले गीतिका गुड़िया शारदा निर्मल कर लोचन विद्यार्थी कुस्मिता पुरुषोत्तम लल्ली गिन्नी ब्रिज द्रौपदी सूर्या अवखिलेश आमा खोड़ा ले देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह नेताम दक्ष प्रिया गीत सरगम मदनपुर कवर्धा ले राहुल श्रवण योगेश साहू चिरमिरी ले इंद्र भान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर ग्राम भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन चंपा देवांगन राजू देवांगन नेहा और जगदीश देवांगन तो आवो आप जम्मो जन की फरमाइश में सुनथन रामाधार वर्मा और सुशीला ठाकुर के स्वर में ये गीत।

लखवानी, राकेश डिंगवानी, कमल लखानी, रवीना लखानी, मोहन लाल देवांगन, प्रभा देवांगन, तुषार और भूपेश देवांगन, कुगदा कुम्हारी ली परसराम साहू, ग्राम नरगोड़ा ली कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, दुर्गली आर सी कामड़े, वेपुल मीना करुणा अश्वनी, यही ले हमारे संगवारी हैं भगवान चंद्राकर, शिव चंद्राकर, राकेश वर्मा, वाणी वर्मा, सचिन वर्मा, वड़िंगखेड़ा पंजाब ली मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आवा आप जम्मू झन के फरमाइश में सुनथन राजेंद्र राठौर के स्वर में ये गीत।

रामाधार वर्मा और सुशीला ठाकुर के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवाव अब सुनथन राजेंद्र कुमार राठौर के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठो हैं रायपुर ले छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, प्राची, प्रियल, अनुराग, अभिषेक और कान्हा यादव। रायपुर ले हमारे संगवारी हैं हीरा साहू, विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर, विविधा मंडलकर, मनोहर डे।

राजेंद्र राठौर के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। ये गीत के संग ये कार्यक्रम इहे सिरावत है। अब अपन जहुरिया संगारी शशांक हरेले दो आ गया। जय जोहार।

0: गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये है कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow,

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर

0: शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है,

0: लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूँ।
0: तो फादर मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
0: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भ

0: संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं साबरी ब्रदर्स। इनकी आवाज़

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, इसमें आज कलाकार थे साबरी ब्रदर्स। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाजों में। शब्द रचना गौहर कानपुरी की, संगीत राजकमल का है और फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

0: आँखियों के झरोखों से। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, हेमलता और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रवि

0: रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आ पाए बाहर आई, आइए सुने इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। भीड़ में गुम होते घर, ये रूपक सुनिएगा आपसे कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 1:30 पर। रूपक के लेखक हैं सुरेश तिवारी और प्रस्तुति होगी मिर्जा मसूद की।

हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे और 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिलाओं का दिवस। साथ ही होंगे क्रमपत्र मिला और युगल गीत। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे सीताराम सिंह और रात 8:15 पर इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे जमील अहमद को। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में होगा पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस, साथ ही चर्चा होगी साफ सुथरा दूध उत्पादन ज्यादा कमाई के साधन इस विषय पर। और किसानवाणी में शाम 7:30 पर आज की सलाह में बरसात माँ पशुधन के देख रेख इस विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर आशुतोष दुबे, वैज्ञानिक पशुपालन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर तबला वादन सुनिएगा कुमार पंडित से। ताल होगा 3 ताल में कायदा, रेला और मध्य लय। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात 10:00। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:00, 2:30 पर शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवावाणी में शाम 5:10 पर आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिलाओं का दिवस। साथ ही होंगे क्रम पत्र मिला और युगल गीत। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। भीड़ में गुम होते घर, लीजिए सुनिए ये रूपक। लेखक हैं सुरेश तिवारी और प्रस्तुति है मिर्जा मसूद की।

हम कौन हैं, हम कहां से चले थे, आज हम कहां आ गए हैं। हम आप और सभी सिर्फ समय के बीतते चले जाने को ही अपने जहन में दर्ज करते चले आ रहे हैं, पर हमारे बीच कुछ रीतता चला आ रहा है जिसे हम फौरन दर्ज नहीं कर पाते। समय के साथ उभरती हैं बहुत सी यादें और समय बार बार सच झूठ और अपने पराये से रूबरू कराता रहता है। याद करें तो बहुत सी बातें याद आती हैं। याद ये भी आता है कि अपने घर से दूर ये शहर जो कभी अपना नहीं लगता था, आज अपना सा होता जा रहा है। घर याद तो आता है पर बिल्कुल भी पास नजर नहीं आता। अपने सबकी नजरों के सामने दिखते हैं पर हम चाहकर भी उनके सामने नहीं पहुंच पाते। अपने आप को जानने, पहचानने और दुनिया से जूझने की जरूरत ने हमें बदल कर रख दिया है। कभी और बल्कि कहीं दूर से हम अपने आप को देखें तो लगता नहीं कि हम वाकई नहीं हैं। हम अपने आप को ठीक से पहचान नहीं पाते। हमारे भीतर का परिवर्तन जिंदगी की कठिन लड़ाइयों का परिवर्तन तो नहीं है। कई बार लगता है कि हम भीड़ के दबाव और प्रभाव से जितना नहीं बदले उससे ज्यादा हमारा मन बदल गया और एक ही रक्त संबंध से जुड़े लोग आज एक ही शहर में रहते हुए न केवल अजनबी से बन गए हैं बल्कि गलियों सड़कों की दूरी ने त्योहारों पर एकत्र होने की परंपरा को भी खत्म कर दिया है। रिश्ते अब औपचारिक की बजाय मशीनी हो गए हैं। मिलने की बात करने की वजह भी अब बहाना लगती है हमें। भीड़ हमारे चारों तरफ बढ़ रही है। भीड़ के बीच जीने के आदि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। खास तौर से शहरों की भीड़ और उसमें शामिल हमारे जीवन की भागदौड़ दोनों ने मिलकर हमारे जीवन का वास्तविक मजा छीन लिया है। अगर हम अपने बचपन पर नजर डालें, थोड़ा पीछे चलें, कुछ सालों पीछे चलें, याद करें तो याद आएंगे बीते पल, ऐसे पल जो सिर्फ बीते नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी हैं मीठी मीठी स्मृतियाँ, सुनहरी और खट्टी मीठी बातें, रूठना मनाना, भागना और छुप जाना और दादी नानी की कहानियाँ, कहानी लोरी से जुड़ा बचपन का समय, भरा पूरा घर और भरी पूरी लगने वाली जिंदगी। पर जैसे समय का पहिया घूमता है, घूमता चला जाता है, बचपन फिर नए नए रूप बदलता चला जाता है, नई नई जिम्मेदारियां सामने आने लगती हैं, जिम्मेदारियों से जुड़ा दबाव सामने आ

0: लगता है। फिर यही जिम्मेदारी एक बड़े घर को छोटे छोटे घरों में बदल देती है। परिवार का दायरा टूटता है तो हम सब भी आपस में टूटते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर टूटना या अलग हो जाना अब शहरों की जिंदगी का साफ सा हिस्सा हो गया है। अपनों से अलग होकर फिर जीने और जीते चले जाने की एक स्वाभाविक शैली स्वतः विकसित हुई है शहरों में। अपनों के बीच अकेले होकर जीने को विवश हम, अपने आप से लड़ते हम और अपने तर्कों से जूझते हारते हम, आखिर में ये तय नहीं कर पाते कि भीड़ में हम गुम होते जा रहे हैं या फिर भीड़ में कहीं हमारा अपना घर गुम हो गया है, हमारा बचपन गुम हो गया है, हमारी माँ और हमारे पिता गुम हो गए हैं, हमारे बचपन का वो दोस्त अब नहीं है, या फिर मामा चाचा का घर इतना दूर हो गया है कि पांव वहां तक जाते ही नहीं। डॉक्टर एलिना सेन।
1: भारत जैसे देश में एक हिसाब से परिवार ने ही व्यक्ति को और पूरे समूह को, पूरे समाज को वो सुरक्षा प्रदान किया जो कि कहीं कहीं कानूनी तौर पे सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है। उदाहरण के लिए बूढ़ों की देखभाल, हमारे यहाँ कुछ साल पहले तक हम सोच नहीं सकते थे कि बूढ़ों को हमें किसी वृद्धाश्रम में या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, संस्था में रखा जाए, तो उनकी भी एक भूमिका होती थी बच्चों के लालन पालन में, बच्चों को उनसे प्यार मिलता था। इसी प्रकार से बच्चे भी परिवार के केवल माता पिता नहीं, पूरे परिवार से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, एक प्यार मिलता था, एक माहौल मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में ये सारी ढांचा जो है ये टूटन पे है, क्योंकि व्यक्ति और परिवार भी उपभोक्तावादी होते जा रहे हैं और इसके तहत व्यक्तिगत तरक्की भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और कंज्यूमर कल्चर में कौन ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स किसके पास हो, किस व्यक्ति के पास हो, या एकल परिवार में अगर दो भाई हैं तो किस भाई के पास ज़्यादा है, इस प्रकार की भावना जो है वो आते गई है।
0: भीड़ भीड़ भीड़, बस एक भीड़ ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ मकान ही मकान, मशीनी रफ्तार से बढ़ती भीड़, सिर ही सिर है हमारे चारों तरफ। पर कहीं जो चीज़ नहीं है और दिखती भी नहीं है वो चीज़ है प्यार। संयुक्त से एकल परिवार में बदल गई हमारी जिंदगी की बाकी क्रियाएं। श्रीमती विमल व्यास।
2: संयुक्त परिवार से ही शादी होकर आई थी। लगातार साथ रहने से, जैसा कि थ्योरिटिकल कहा जाता है कि आपसी प्रेम बढ़ता है, पर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखा जाए तो आज के ज़माने में बच्चों की लड़ाई पल में बड़ों के झगड़ों में बदल जाती है और धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेती है, तब संयुक्त परिवार की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। हालांकि हम लोग व्यास जी की नौकरी के कारण घर से दूर आए हैं, पर अभी भी हमारे सभी रिश्तेदार से हमारा संपर्क बना रहता है और वे सभी हमारे लिए समय निकालते हैं। गर्मियों में बच्चों की बुआ, बच्चों के चाचा सभी हमारे यहाँ आते जाते हैं। बचपन के पुराने दिन हम लोग याद करते हैं और हम लोग भी उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं। अचानक सब लोगों के आने से कंजस्टेड जरूर हो जाता है, पर फिर भी हम लोग एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सभी परिवारजन यदि एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर रखते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, तो फिर उनके साथ रहने और अलग रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
0: समाज अपने आप को समय के साथ साथ बदलता रहता है। समाज के भीतर समय से जुड़े अनेकानेक बदलाव दर्ज हैं। अभी समाज का जो स्वरूप हमारे सामने है वो भी आने वाले कुछ समय में फिर बदल जाएगा। अभी समाज में किसी खास चीज को मान्यता प्राप्त है तो कोई अन्य बात या चीज हम और आप और हम समाज को सिर्फ समझने के प्रयास में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लगा देते हैं। पर क्या सिर्फ समझने का प्रयास करने से ही सारी चीजें समझ में आ सकती हैं? आदमी तो आज इतना समझदार हो गया है कि वो दुनिया भर की सारी चीजों को समझने का दावा करने लगा है, पर वो अपने

0: मन की बेचैनी या फिर भी तर की परेशानी को ठीक से समझ पा रहा है। बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े घरों में आदमी का मन ज्यादा ही बेचैन है। भीड़ के कारण आदमी बेचैन है या फिर अपने अकेलेपन से? डॉक्टर प्रभावती शुक्ला,
1: ये जैसे ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन ही है, नीड मोटिवेशन जैसे कहा जाता है, वो भी एक मोटिवेशन है। इसमें क्या है, जब मैस्लो की थ्योरी के बेस पे ये देखा गया है कि पांच प्रकार के मोटिवेशंस होते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन है, नीड फॉर फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे बोलते हैं वही, और सेकंड है सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, एस्टीम नीड्स और एक्चुअलाइजेशन नीड। तो पर्सन के या व्यक्ति के जीवन में क्या है, ये हर एक नीड जो है फुलफ़िल होती जाती है। जैसे एक नीड फुलफ़िल होती है तो वो क्या है, सेकेंड नीड की उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड है जो है, उसमें क्या है, पर्सन को क्या है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो उसमें मिलता है। ये क्या है? ये ज़्यादा करके जो पेयर ग्रुप्स हैं, जो अपने फैमिलीज में मदर, पेरेंट्स, फादर और सिस्टर, ब्रदर, ये सबसे क्या है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है ये मिलता है। तो उसके बाद जो है, जो एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट का है, तो आजकल जो पर्संस जो है वो क्या है, एडजस्टमेंट उनके में बिल्कुल ही नहीं है, टॉलरेंस नहीं करवा, और इसी कारण जो ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, सुसाइड केसेस, डिप्रेशन के केसेस, फ्रस्ट्रेशन के केसेस जो हो रहे हैं, वो क्या है, उनकी जस्ट जो एडजस्टमेंट, ही कैनॉट एडजस्ट विथ द सिचुएशन एज वेल एज विथ हिज फैमिली और एज वेल एज विथ हिज फ्रेंड।
0: वो परिवार इन दिनों ज्यादा ही बेचैन है जहां अपना कहने को सिर्फ पति पत्नी और दो बच्चे हैं। बच्चे छोटे हैं और घर में दिन भर फैला होता है कामों का ढेर। जिधर नजर फेरी उधर दिखता है बस काम ही काम। ऐसे में याद आती है माता पिता की और दादा दादी की। लगता ये भी है कि अगर नाना नानी होते तो कुछ दिन वहीं चले जाते, पर ज्यादातर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका यहां से वहां तक, बल्कि साफ तौर पर कहें तो दूर दूर तक अपना कोई नहीं है। रिश्ते वैसे भी शहरों के भीतर कागज पर लिखी किसी इबारत से ज्यादा नहीं रह गए हैं। डॉक्टर श्रीमती शैल शर्मा,
2: भारतीय संस्कृति जो संयुक्त परिवार की रही है वह आज टुकड़ों में बिखर रही। इसका मूल कारण एक दूसरे के प्रति प्रेम के भावना में कमी आना या एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना में कमी होना और एक दूसरे के प्रति जो त्याग और सहने की जो भावना होती थी उनमें आज कमी आ रही है। और इसी कमी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास भी करना चाहता है, जिसके कारण वो परिवार का सहयोग न होने से अलग रहने के लिए विवश हो रहा है। मैं संयुक्त परिवार में आई हूँ और संयुक्त परिवार में रहने से वहाँ कम से कम एक दूसरे के प्रति विश्वास, सहयोग और त्याग को ही रखकर, कायम रखकर ही परिवार को सुदृढ़ और संपन्न बनाया जा सकता है। जिसके लिए बहुत अच्छा है कि किसी एक कवि ने कहा है कि प्रेम को उस दीपक की तरह कहा जाएगा जिसमें जब तक स्नेह रूपी तेल दीपक में भरा होगा तब तक दीपक जलता रहेगा। उसी तरह यदि परिवार में आपसी प्रेम, स्नेह और विश्वास कायम रहेगा तो परिवार और घर भी खुशहाल रहेगा।
0: मकान की समस्या हो तो आदमी हल कर सकता है उसे, पर घर की समस्या और उसके भीतर के दर्द वही जान सकता है जिसने इसे महसूस किया है। बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया है शहर और घटते घटते इतने घटे रिश्ते कि आज बड़े शहर का आदमी सिर्फ गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल यानी अपने और बस अपने घर के चारों तरफ। ये तस्वीर उस समय और विकट हो जाती है जब पति पत्नी दोनों कामकाजी हों, उनका अपना छोटा सा परिवार हो, यानी पति पत्नी और दो बच्चे। बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और दफ्तर के काम की जिम्मेदारी। डॉक्टर सुमी गुहा,
3: किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के बारे में सुन सके या बच्चे की बातों को ध्यान दे सके, परंतु सबसे बड़ा काम जो हमें करना चाहिए वो है कि हमें अपने बच्चों के दोस्त बन जाना चाहिए। उसके लिए थोड़ा समय नौकरी करते हैं, मानते हैं कि आज लेडीज़ भी जॉब कर रही हैं तो उनको समय नहीं मिलता कि बच्चों के समय पूरा समय व्यतीत कर सकें, पर वो समय निकालें, बच्चों के साथ उनकी बातें सुनें।

0: उनके पहले क्या प्रॉब्लम सुने सुने ये बताएं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और फिर डिसीजन उन्हें लेने दें कि ये बता दें कि ये अच्छा बुरा है, पर अपने डिसीजन ना थोपते हुए उनके डिसीजन पे ध्यान दें कि वो क्या चाहते हैं इस चीज़ में, तभी शायद वो कुछ अच्छा कर पाएगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से उनको बोलते हैं ये करो वो करो, और ये उसको अदरवाइज ले लेते हैं बच्चे, और फिर कुछ गलत काम कर लेते हैं। तो इट विल बी बेटर कि हम उनको डिसीजंस खुद लेने दें और अच्छा बुरा का ज्ञान ज़रूर दे दें। एक अच्छा दोस्त बन जाएंगे तो वो अपने प्रॉब्लम ज़रूर हमें बता पाएगा।
1: पहले भी गाँव थे, शहर थे, महानगर थे, राज्य था, राजधानी थी, जीवन था, और आज के सरीखे के तमाम लोग थे, पर पहले जो था शायद आज नहीं है, या फिर आज जो है शायद वो पहले नहीं था। राज, राजा और सरकारें समय के साथ बदलती रहती हैं, पर भावनात्मक पहलू उतनी तेजी से नहीं बदलते। रिश्तों की गर्माहट भले खत्म हो जाए, पर सच्चे मायनों में रिश्ते ताउम्र नहीं बदलते। श्रीमती निर्मला सिंघवी,
2: मैं एक संयुक्त परिवार से आई हुई हूँ और संयुक्त परिवार में ही मेरी शादी हुई। मेरे भी 6 भाई और 4 बहन, और यहाँ मेरे ससुराल में भी 6 भाई 4 बहन का ही परिवार था। संयुक्त परिवार रहा, वहाँ भी संयुक्त परिवार था। विचारों में आजकल इसलिए बहुत परिवर्तन आ रहा है क्योंकि सहनशीलता कम हो रही है। आधुनिक विचारों को लेके जो लड़कियां जीना चाह रही हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उसके बाद भी संयुक्त परिवार में जाने के बाद में भी वो चाहती हैं कि हम अलग रहें, हमारा अलग घर रहे, हमारा पति हमारे हम डोमिनेट उसको करें। पहले के जो संयुक्त परिवार में था ये बात नहीं थी कि हमारे पति को हम डोमिनेट करें, डोमिनेट नहीं, उसमें सहयोग की भावना से परिवार चलता था। जैसे कि आपको मैं अपने पिताजी के यहाँ के बारे में बताती हूँ, बहुत बड़ा परिवार है और 4 पीढ़ियाँ एक साथ एक छत्र के नीचे रह रही हैं। अब ये आश्चर्यजनक बात रहती है कि बहुत से विदेशियों ने आके भी वहाँ हमारे यहाँ इंटरव्यू लिया है, टीवी में भी बहुत बार आ चुका है, पर उसका कारण ये है कि मेरे पिताजी का मान सम्मान इतना ज़्यादा आदर है कि समाज के लोग तो खैर मानते ही हैं। मेरे भाई अगर एक शब्द मेरे पिताजी बोल दें तो उसको ना नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें समर्पण की भावना है। वो चाहते हैं कि हमारे जो पिताजी का महत्व है आज तक बना रहा है उनको हम माने, और उन्हीं का अनुसरण करके मेरे भाइयों का अनुसरण कर उनके बेटे कर रहे हैं, उनके बेटे से उनके बेटे कर रहे हैं।
1: खुशी और दुख सबके अपने अपने होते हैं, पर अनुभवों को जरूर आपस में बांटा जा सकता है। कई बार एक व्यक्ति का अनुभव बहुत सारे व्यक्तियों का भी अनुभव बन जाता है। आप माने या न माने, आज शहर और गांव दोनों ही जगहों का आदमी अपने अपने कारणों से परेशान है। जमीन और शान से जुड़े झगड़ों ने हम सभी को बांट कर रख दिया है। भीड़ में जब तक आदमी है तब तक तो ठीक है, पर ज्यों ही आदमी अकेला होता है वो मन में उठते विचारों के सैलाब से घबरा जाता है। कंप्यूटर, इंटरनेट ने आज आदमी को न केवल एकांत प्रिय बनाया है बल्कि उसे चिड़चिड़ा और स्वार्थी भी बना दिया है। तलाक के किस्से लगातार बढ़ रहे हैं, टीवी सीरियलों से मति भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी है, लोगों की निर्णय शक्ति कल की तुलना में आज कमजोर हुई है, लगातार चारों तरफ भय का वातावरण बढ़ा है, भौतिक आकांक्षाएं बढ़ी हैं, मन कहीं तो आज आदमी कहीं है, किस्तों में वस्तुएं खरीदने के नए प्रचलन से भी काफी घर टूट रहे हैं। SN अवस्थी।
3: एकल परिवार आज के समय में एक मजबूरी आदमी के सामने आ जाती है। मजबूरी इस तरह से हुई कि नौकरियां बड़ी दूर दूर हो गईं। पहले कृषि थी तो सब एक जगह रहा करते थे और नौकरी भी नज़दीक में कहीं यहाँ वहाँ करते थे तो लौटाया करते थे घर में, और सब एक ही जगह रहा करते थे। लेकिन अब ये क्षेत्र इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना विस्तृत हो गया कि स्थानीय नौकरियाँ रही नहीं। नौकरियों के लिहाज से आदमी को बाहर जाना पड़ता है, और जब वो बाहर जाता है तो कुछ समय तक हम

0: देखा हमारे बड़े भाई थे, उनकी पत्नी लगभग 20 वर्षों तक वो होशंगाबाद में रहीं और वो सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे। और 20-22 वर्षों के बाद वो फिर उनके साथ सागर में जाके रहीं। फिर सिलसिला चला कि उनके जब बच्चे हुए, उन बच्चों की परवरिश माँ बाप के पास हो या काफ़ी दूर हो गए, तो फिर उस मजबूरी से लोग अलग रहना शुरू हो गए। एकल परिवार में आज की आवश्यकता को देखते हुए ये थोड़े समय का एक उम्र का जुनून जब आदमी अपने जीवन में प्रवेश करता है, और आजकल ये नाना प्रकार के माध्यमों में जो देखता है टीवी में या दूसरे माध्यमों से, तो थोड़े समय के लिए उसे ऐसा लगता है कि अगर हम अकेले रहें तो उस आयु का जीवन सुखी होगा, हमें स्वतंत्रता उसे मिलेगी, थोड़ी आज़ादी के साथ हम रहेंगे। बड़े परिवार में रहने से कुछ बंधन, सामयिक बंधन आदमी महसूस करता है, लेकिन अगर व्यापक तौर पे अधिकांश लोगों को हम देखें और उनसे मिलें, तो आज के माहौल में संयुक्त परिवार में वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है।
1: तेजी से बदलते समय और भौतिकतावादी युग में आज शिक्षित, अशिक्षित और अर्ध बेरोजगारी तीनों ही दशा से जुड़ा युवा वर्ग अन्य लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही परेशान है। भविष्य के सपने और मौजूदा कठिनाइयों से जूझता हुआ उसका मन तय नहीं कर पाता कि अभी तक माता पिता के घर का सहारा आगे भी बना रहेगा या नहीं। उम्र बढ़ने के साथ सपने बदलते हैं और सपनों के साए में बदलता है संसार। पथरीली जमीन पर सुनहरे सपनों के बीच चलना आसान है, पर सच्चाई ही असल में सारा कुछ है, जिससे सभी को जूझना है। अनुसुईया पाटिए।
2: परिवार से हमें बहुत सारी आशाएं होती हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारी सफलता में वो हमारा साथ दें। हम अपनी सफलताओं का श्रेय भी अपने परिवार को ही दे देते हैं, क्योंकि हर काम में हमारे परिवार वाले हमारा हर वर्क में सपोर्ट करते हैं। हमें कभी असफलता हाथ लगती है तो हमें वो सांत्वना देते हैं और हमें निराशा के अंधकार से उबरने के लिए प्रेरित भी करते हैं, ताकि हम अपने भविष्य को नए सिरे से और नए संघर्ष हेतु तैयार कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है परिवार वाले हमारे विचारों से सहमत नहीं होते, क्योंकि ये हो सकता है उम्र के अंतर के कारण होता हो। हमारे विचारों में हमारी भावनाओं में अंतर होना स्वाभाविक है। हमें घर के लोगों के घर के सदस्यों के विचारों को भी समझना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। हमें परिवार वालों से हर समय सपोर्ट मिलता है। यदि हम किसी समस्या में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तो परिवार वाले ही होते हैं जो हमें अपने अनुभवों से इन समस्याओं से उबारते हैं।
1: भीड़ और घर, घर और भीड़, भीड़ से घर लौटते हुए हम और घर से निकलकर भीड़ में गुम होते हुए हम, ऐसे चक्र के बीच नौकरी की जद्दोजहद में अपना घर छोड़कर बेगाने शहर में नौकरी के चक्कर में आने वाले लोगों की अपनी पीड़ा है, अपना दर्द है। सब कुछ अपने पास है और देखें तो कुछ भी पास नहीं है। पास सारा कुछ हो, पास बिल्कुल भी न लगे, है ना कितनी विचित्र बात। डॉक्टर नीरजा कुन्हप्पन।
3: परिवार में या पारिवारिक मूल्यों में जो बदलियां आ रही हैं पुराने समय में या जब हम बचपन में थे और अब जो हमारे बच्चे हैं, हम जब बचपन में थे तब जो परिवार की जो गति है वो बहुत धीमी हुआ करती थी। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। माँ बाप को बच्चों के लिए पूरा समय रहता था। शाम को पिताजी घर में हुआ करते थे, माताएं पूरे समय घर में रहती थी बच्चों का ख्याल करने के लिए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के लिए, उन्हें टाइम पे भोजन उपलब्ध कराने के लिए, और पिताजी उन्हें रहते थे कि उन्हें शाम को पढ़ा सकें या कहीं घूमने जा सकें। पूरा एक समय एक परिवार बंधा हुआ रहता था। लेकिन आज जब हम अपने

0: परिवार में या मैं अपने परिवार में देखूं तो हम गुम चुके हैं, समय में गुम चुके हैं। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। एक तो बड़ों के लिए आदर की भावना, और सबसे बड़ी चीज़ है प्यार, जो आज माँ बाप को भी बच्चों के लिए है, पति को भी पत्नी के लिए है, लेकिन वो एक दूसरे को बता नहीं पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं है। आज ज़रूरी है कि हर परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के लिए कम से कम कुछ समय निकाले ताकि वो साथ में रह सकें।
1: सफर, हाँ सफर तो सफर ही है, चलना तो चलना ही है, पर किसी जगह से चलकर लौटना या किसी सफर से अपने घर लौटना कितना सुखद लगता है। सुबह जैसे भोर का एहसास दिलाकर आसमान की ऊंचाइयां नापने को निकले पंछी, जब शाम ढले अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उनकी कतारबद्ध पंक्तियां अथवा झुंड यह एहसास जरूर कराते हैं कि कहीं तो अपना घर या घोंसला है जहां लौटना है। भीड़ में अपना घर भले सीधा दिखाई न पड़े, घर घर सभी को बुलाता है, हमको, उनको और सभी को।

भीड़ में गुम होते घर, ये रूपा कभी आप सुन रहे थे। लेखक थे सुरेश तिवारी, वाचन दीपक हटवार का था, संगीत संयोजन था विश्वास केलकर का, और संगीत पक्ष के कलाकार थे सतीश पंड्या और विजय कुर्म। इस रूपक की प्रस्तुति थी मिर्जा मसूद की। मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत एस एच बिहारी का था और संगीत था ओ पी नैयर का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म है तीसरी मंजिल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है

0: चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत के अंत में सुनिए सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर का लिखा गीत। संगीत खयाम का है और फिल्म है शगुन।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार

0: विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशक

0: ने मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान।

0: अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जल स्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: இசை மேரி
1: तेरी मेरी कहानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत प्रसून जोशी का था और संगीत था साजिद वाजिद का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विशाल डडलानी का गाया हुआ। अन्विता दत्त गुप्ता के लिखे इस गीत के लिए संगीत विशाल शेखर का है और फिल्म है दोस्ताना।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: नौटंकी फिल्म में अभी आपने सुना फलक शबीर का गाया गीत, जिसे लिखा था कौसर मुनीर ने और सुरों से सजाया था मिकी मैक्लेरे ने। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: लीजिए अब सुनिए आनंदराज आनंद का लिखा और स्वरबद्ध किया गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है आर्यन।

श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में अभी आपने सुना स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, संगीत अजय अतुल का था और फिल्म सिंघम के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे इसी मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया। मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है। ईरान में तेहरान स्थित भारतीय

दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए सिरे से बातचीत के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के बारे में जानकारी देंगे। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले में जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुरुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाकर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनगिरी सिरी जिले के में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के यजाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की भूमिका निभाएंगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो, राम राम, नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और क्या हाल है आपका, पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है जी। इस गर्मी में तो ऐसा ही होता है। तो फिर आप वो ORS के घोल ले रहे हैं ना, जो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार में होता है, सरकार कहती है लिया करें। मुझे लगता है किसी भी कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा अच्छा है ना। एक बोतल लो, उसमें एक पैकेट डालो और सारा दिन अपने साथ रखो, और अपनी शख्सियत भी कुछ ऐसी बनाओ। कैसी? ORS जैसी नहीं, मतलब नमक जैसी। देखो, नमक जब खाने में होता है ना, कोई उसका कदर नहीं करता, पता नहीं। लेकिन नमक एक दिन खाने में ना हो तो उसकी कमी खलती है ना। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं मन भावन, रूमी मलिक के साथ स्वागत है।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर मनभावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आपके ढेर सारे ईमेल्स आ गए हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। हाँ जी, सतीश अनेजा जी लिख रहे हैं, रूमी बहना जी प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है, एफएम गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया। बोधराज खोरवाल जी, किशन वंजानी, कौन कौन है हमारे साथ, देखो अटेंडेंस शुरू हो गई है ना, मेहर अरोड़ा, विजय सुरालकर, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, आप इतनी लंबी ईमेल्स बार बार फॉरवर्ड करते हैं, उसमें एंड में लिखते हैं कोई भी गाना चला दीजिए, फिर मैं आगे से आपका नाम नहीं लूँगी, यू हैव टू वर्क हार्ड है ना, आपको गाने का नाम देना पड़ेगा। सोहेल शेख क्या लिखते हैं, सलाम नमस्ते वेलकम, रूमी दीदी आपके बोलने का अंदाज लाजवाब है, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, क्या बोला मैंने। भारत भूषण, गुड आफ्टरनून रूमी मालिक जी, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल आई लिसन टू योर मेलोडियस वॉइस, बिलीव मी व्हेन यू इंक्लूड माई मेल इन द प्रोग्राम आई एम ऑन क्लाउड 9 as if I have received Padmashri award. Oh, this is so brilliant. I think I should take a picture of this email and keep it, है ना? जब मैं 80 साल की हो जाऊंगी ना, तो मैं ऐसी ऐसी email ना पढ़ा करूंगी और बड़ा खुश हुआ करूंगी, देखो ऐसे दीवाने होते थे मेरे। भारत भूषण जी, आई वॉज अवे, यस मैं हिमालय गई थी, मैं उत्तरकाशी गंगोत्री में थी, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा समय लगा है ना, वहां पर हमने पढ़ाई भी करी, हाँ हाँ भाई हमने वेदांत पढ़ा था। अकरम हुसैन प्रिंस, विजय सुरालकर हो गए ना, तुलसी मस्किन जी, अच्छा अगले पेज पे चले, गोविंद वैष्णव, राजकुमार दूधी जी, गुरमीत सिंह जी, राधेश्याम देवानगन, अच्छा इसके बाद आप एक जना इतनी इतनी ईमेल्स भेजता है, इट रियली डिस्ट्रॉयज द फ्लो, रियली है ना, बच्चे थोड़ी हैं आप, एक ही मेल भेजिए ना। दीपेश जी, अनिल कुमार गवहनकर, विट्ठल यादव, मैंने एक बड़ा कमाल का अभी मैसेज पढ़ा कि ये हाल तो तब है जब हमें ये पता है कि सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, मतलब अगर भूल से आपके कोई नाम ना लिया गया तो देखिए कितना हो हल्ला मचेगा। अनिल कुमार गवहनकर, राम नरेश चिक, शमशुल कमर राही जी है ना, अच्छा अब इसके बाद में आगे देखें किसने, अहमद फूलवाले जी और जगन्नाथ पटेल, टेक बाय विदित, अच्छा रजक मोहम्मद, उदय भानपाल है ना, आई वॉन्ट टू टेक न्यू नेम, सुधाकर यादव, सरफुदीर अंसारी, धर्मेंद्र चीपा, कमलकांत गुप्ता, नीतू मल्होत्रा जी, नितेश देवांगन, तनुजा देवांगन, अच्छा उसके बाद में एक और मैसेज हमने देखा था अभी, बबलू ठेकेदार, अच्छा और सुधाकर यादव, इसके बाद में रास क्रिएशंस ने हमें एक मैसेज भेजा कि आप हमें गीत सुनाइए, कौन सा गीत सुनाइए, सुनील पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बबलेश पंवर जी भी, इन्होंने कहा कि हमें आप ये गीत सुनाइए, हमने कुछ निकाल के रखा था, हमने नहीं निकाल के रखा था, देखते हैं एक सेकेंड, लेट मी सी, सतीश अनेजा जी ने हमें बोला कि सौतन फिल्म का गाना सुना दीजिए, कौन सा वाला, शायद मेरी शादी का ख्याल, एक मिनट रुको जी, एक मिनट, पहले तो गाना निकाल लिया जाए है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस, एक मिनट, चाय चाय, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, कलयुग का अमृत, हम छोटे होते थे ना तो वो आते थे, क्विज आती थी छोटी छोटी, तो कलयुग का अमृत लिखा होता था चाय, तो हम अपनी मम्मी के पास दौड़ के जाते थे, मम्मी मम्मी देखो आपको चाय इतनी पसंद है ना, इसे कलयुग का अमृत कहा गया है। नहीं चाय बहुत काम आती है सचमुच में, हम तो हिमालय में भी चाय पी रहे थे। चलो जी ये अच्छा सा गाना सुनते हैं, हैप्पी सतीश जी, विमला जी,

सचमुच में अंगा छत्रपति शांभाजी संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश कहते हैं कि इनको अब्दुल्ला फिल्म का गीत सुनना है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है हसी। अच्छा, सांबाजी नगर से याद आया, आपको पता है मैं हमेशा ये सोचती थी कि सांबार है ना, सांबार उसको सही प्रोनंसिएशन यही है जो दक्षिण भारतीय करते हैं, कि दक्षिण भारत में ईजाद हुआ होगा। पर आपको पता है शिवाजी के पुत्र सांभाजी को इस तरह का ऐसा तरल जो है ये पसंद था जिसे सांबार, उनके नाम पर सांबार बना है। मुझे नहीं पता था ये वाली बात अंटिल आई रेड इट। इसीलिए मैं कह रही हूँ रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ फ़ोन न देखा करें, रेडियो सुना करें और रीडिंग किया करें और रूमी को सुना करें। आर आर आर

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनल।

पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

एफएम गोल्ड और मिली मुझे एक मैसेज फिर मिली से गीत सुनना चाहते हैं, आए तुम याद मुझे। अनिल मोहन जी, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। तो हम ये गीत सुने।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।

0: प्रोग्राम खान पान और खरीदारी का साथ
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: गर्मियों में मीठा रस खाना चाहिए, कई बार मैंने आपको बताया, इसीलिए आम रस, आम पन्ना, आम खाइए और बनिए खास। ये अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश है किशन वंजानी जी की। इनके प्रिय मित्र हैं सुमन महाजन जी, इनको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये गीत कौन सा? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। अच्छा जी, ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग होता है किशन जी, हैं ये क्या तरीका है? चलो खैर, अच्छा लगता, हो सकता है इनकी मित्र को गीत पसंद हो ना, ऐसा भी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे सुमन जी, हमारे भी बर्थडे वाला मंथ आने ही वाला है, जुलाई आने ही वाला है। बिट्टू भाटिया जी, ताज मोहम्मद जी, मोहम्मद सैयद अवासी जी, सुरेश राठौड़, ताज मोहम्मद, फग्गू राम यादव जी, प्रकाश वर्मा जी, उदयभान पाल जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम सिंह जंगेल जी, उमेश कुमार जी, मेहर अरोड़ा जी, विजय सुरलकर जी, दिग्दर्शन कौर जी, हाउ कुड आई फॉरगेट दिग्दर्शन कौर जी, मैं ये सोच ही रही थी। इन्होंने बोला कल निर्जला एकादशी है, ये लिख रही है, आप भी व्रत रखेंगे, हम भी व्रत रखेंगे। और कोई गीत ये सुनना चाहती है, हरि भक्ति का गीत? सब कुछ में मैं तो हर एक में हरि देखती हूँ दिग्दर्शन कौर जी, और क्या, सब कुछ, ये सारे गाने क्या हैं, ये मेरे हरि के ही तो हैं, विष्णु भगवान की माया से तो चल रहा है। माया का जो उपाधि है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए रिजर्व्ड है, मायापति। है ना, तो आइए ना सुनते हैं ये गीत, अजीब दास्तां है ये।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।

0: खरीदारी का साथ।
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: आप सुन रहे हैं मन भावन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। हमारे साथ हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस। और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गीत सुनेंगे जो मन भावन की आखिरी पेशकश होगी। पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसके बाद भी हम आपको गीत सुनाएंगे, 5-10 से गाते गुनगुनाते भी होगा। तो रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते की जानकारी देंगे। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस

0: जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दुरून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में ग्रुप के में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। In West Bengal, rescue operations have started after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata today. 3 persons were killed in the accident. 5 injured persons are being treated in the SSKM hospital. State Minister for Urban Development and Municipal Affairs, Agnimitra Paul, has reached the accident spot. The NDRF, police, fire and emergency services and locals have joined the rescue work. Personnel of the Disaster Management Group of Kolkata Police have also joined the rescue efforts. A control room has been opened at the site at the State Secretariat in Nabana. The helpline numbers are 1070 86979810070. Another number 033-221-43526 and 033-225-35185. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behoves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
3: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।

0: Repeat, it is www.nits.ac.in. Pawan Hans Limited, India's largest helicopter company under the Ministry of Civil Aviation, has announced recruitment for various positions on regular and contractual basis. The organization plays a crucial role in offshore operations, aerial services, disaster management, tourism and connectivity to remote regions across the country. Vacancies include Assistant, HR and Administration, Junior Technical Assistant, Quality, Junior Engineer Civil, CAMO Assistant, Station in Charge and Trainee Technician. The recruitment offers excellent opportunities for professionals aspiring to build careers in the aviation and aerospace support sectors. Interested candidates can apply online through the careers section of the company's website by 10th July 2026. And the website is www.pawanhans.co.in. I repeat, it is www.pawanhans.co.in. Yantra India Limited, YIL, a defence public sector undertaking under the Ministry of Defence, Government of India, has invited applications for one post of Assistant Executive, Finance and Accounts, and two posts of Secretarial Assistant on a fixed-term contractual basis at its corporate headquarters, Nagpur. The Assistant Executive Finance and Accounts post is reserved for OBC candidates and carries a remuneration of 45,000 to 55,000 rupees per month. The Secretarial Assistant post is open to retired central government employees from the secretarial cadre or with remuneration based on the last pay drawn as per government norms. The last date for submission of applications is 15 days from the publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions and application procedures available on the official website. Kindly do refer to www.ddpdoo.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सीनियर फ्लाइट इंजीनियर इंस्पेक्टर रिक्तियां दो हैं, सीनियर फ्लाइट गनर इंस्पेक्टर रिक्तियां चार, जूनियर फ्लाइट इंजीनियर सब इंस्पेक्टर रिक्तियां दो, जूनियर फ्लाइट गनर सब इंस्पेक्टर रिक्तियां आठ, सहायक एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्तियां आठ और सहायक रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्तियां तीन, सीटी मेंटेनेंस रिक्ति है एक। कुल 28 रिक्तियों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र, पात्रता शर्तों, भर्ती के तरीके और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय की वेबसाइट www.bsf.gov.in। असम विश्वविद्यालय सिलचर, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा मुख्यालय में प्रोफेसर क वर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विषयों, विभागों, नियम, शर्तों, आयु, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पर www.aus.ac.in। इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी आपको ये जानकारियां मिलेंगी curec.samarth.ac.in। ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं और ये सभी जानकारियां विस्तार से यदि आप देखना चाहें तो 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड सहायक प्रबंधक टेलीकॉम के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योग्यता प्राप्ति के बाद उम्मीदवार को 5 वर्ष का अनुभव अवश्य हासिल होना चाहिए।

0: पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर अनुभाग में रिक्ति सूचना संख्या 23/2026 को देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग मेघालय प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। जिन विभागों में रिक्तियां उपलब्ध हैं उनके नाम हैं एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, CTVS, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, पेन पैलिएटिव, फार्माकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, TB और रेस्पिरेटरी डिजीज, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड सेंटर तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं इस ईमेल पर arstti@neigrihms.gov.in। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट edu.easbuzz.in। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आप चाहें तो फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 0364, इसके बाद डायल कीजिए 253-8020 या 253-2915। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ आज मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हसबी दस्तूर लाए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें और मुकेश ने बता ही दिया है क्या कुछ होगा। ऑफकोर्स लाइक एवरी अदर डे वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट फ्रॉम द कंट्री एंड ऑफकोर्स एज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है देश के कोनों कोनों में जाएंगे, देखेंगे व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair.
1: ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी।
2: IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh.
1: हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की।
2: एंड इन फीफा वर्ल्ड कप कोलंबिया क्वालिफाइज फॉर राउंड ऑफ 32 आफ्टर बीटिंग DR कॉन्गो 1-0 इन मेक्सिको टुडे। And now, as always, that we start our show with our special segment, Dateline India, where we talk about some important topics that take place at the national or global level. And today, we will talk about a very, very important

0: इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली अगर देखा जाए मुकेश आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में ये बहुत जरूरी है टू रिमाइंड अस दैट दिस इज द सेल्फ केयर मंथ. लोग जो है अपनी ही फिक्र नहीं करते, दूसरों की इतनी फिक्र रहती
1: है, फिक्र में ही अपना सारा खर्च कर देते हैं.
0: राइट, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ हो, चाहे यू नो मेंटल हेल्थ हो, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक विद इन एंड please focus on your own self and take care of yourself. It's a reminder that taking care of ourselves, it's not a luxury. It's a daily commitment to our emotional, mental and physical well-being.
1: जी हाँ, 24 जून से सेल्फ केयर मंथ यानी स्व देखभाल का महीना शुरुआत हो रही है जो 24 जुलाई तक चलेगा, और सेल्फ केयर डे जो 24 जुलाई को मनाया जाता है तब तक चलेगा.

0: Absolutely. हम हैं नए अंदाज, क्यों हो पुराना? एंड खासतौर से अपनी केयर करने का तो अंदाज हमेशा और हर दिन हर वक्त नया ही होना चाहिए. That's an interesting reason behind that date. Well, numbers 24 and 7 symbolize the idea that self-care can and should be practiced 24 hours a day, 7 days a week. And this year's theme is Self-care puts your health in your hands. Test, track and thrive. Test, which means that when you need a baseline to help maintain and improve your health and well-being, you need a clear picture of where you are now. So it's very important, especially in our Indian society. बहुत अजीब सी चीज देखते हैं हम लोग मुकेश, कि हम लोग को जब तक कोई मर्ज होता नहीं है, हम लोग अपना कोई,
1: हम ये समझते हैं हम सही हैं
0: और कोई टेस्ट नहीं करवाते,
1: कतई नहीं करना जी.
0: Yes, so it's very important that you know you get yourself tested regularly of all the you know vital things that are happening in our own body, and of course then track up, you know, once you get the results, then you need to track ki aapki kahan deficiency ho rahi hai, especially Delhi mein ya big metros where people are living in apartments.
1: Jee.
0: They don't have much exposure to sunlight. So 90% people have deficiency of vitamin D. To ye to bahut zaruri hai ki aap track kariye. Vitamin D ka to maine sirf ek example diya, be it blood sugar, be it blood pressure, anything, but you need to first test, then track, and of course then take the adequate steps so that you can thrive, that is you can live with confidence and watch your health bloom.
1: बिल्कुल, सेल्फ केयर मंथ यानी स्व देखभाल का महीना स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सेहतमंद अपना आदतों को अपनाने और हर किसी को अपनी भलाई की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक वैश्विक अवसर है. हम अक्सर सेल्फ केयर शब्द सुनते तो हैं, लेकिन असल में इसका क्या मतलब होता है वो आपको बताएंगे.
0: Well, सबसे पहले तो लाइक इन लेमैन्स लैंग्वेज आई वुड से दैट आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो यू नो सम हाउ इन आवर सोसाइटी अगेन आई वुड से दैट स्पेशली वंस यू बिकम पेरेंट्स, बी इट फादर और मदर, उनको ऐसा पेडेस्टल पे हम लोग रख देते हैं कि मतलब बस वो सिर्फ सैक्रिफाइस की मूर्त बन जाए. बट ऑब्वियसली
1: अपने लिए ना तो समय निकाल पाते हैं और ना ही ध्यान दे पाते,
0: विच इज वेरी bad. And you won't believe Mukesh that you after like you know having two children myself, I could not go on a vacation for many you know for Jee. These 5 years. And then when I actually got a chance when I was on a professional assignment, then after the professional assignment I told that you know I'm going to stay there for 2 extra days.
1: Bilkul.
0: You know to wo do din sirf hum akele ek beach cottage book kiya and I lived there, and people might think that oh what kind of a mother she is, she has left her two kids behind, but that's I was doing exactly for them. Because आप देखिए जो औरतें सो कॉल 24 घंटा सिर्फ केयर में दूसरों की लगी रहती हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो
1: बिल्कुल.
0: कितनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं.
1: वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप केयर कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप ही सही नहीं होंगे, आप ही स्वस्थ नहीं होंगे, तो आप दूसरों की देखभाल कैसे कर पाएंगे?
0: Exactly.
1: इसलिए पहले अपनी देखभाल जरूरी है, उसके बाद दूसरों की.
0: Absolutely. And sometimes, you know, we feel that

0: नो, अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तभी
1: जी
0: केयर करो. नो, बिकॉज इफ यू डू थिंग्स दैट एक्चुअली यू नो नरिश योर सोल, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक, एनी थिंग दैट यू लाइक, वो फिर आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है. देन यू आर हैप्पी ऑलवेज, एंड यू नो ऑरा ऑफ हैप्पीनेस अदर ऑटोमेटिकली यू नो अदर्स ऑल्सो गेट हैप्पी वेन दे सी यू. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ सेल्फ केयर. एंड जैसा कि गाना हमारी एडिटर साहिबा ने सिलेक्ट किया था, जमाने खुद आप ठोकर पे रखिए, आप मत सोचिए, डोंट कैरी एनी बडीज ओपिनियन टू योर हेड दैट यू नो वॉट पीपल विल थिंक इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. लेट दे थिंक, बट वॉट यू नीड इज टू एक्चुअली फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड अगर आपने इसका जो मायने पूछे थे सेल्फ केयर के, आखिर मायने क्या है, तो हमने तो लेमैन्स लैंग्वेज में बताया, बट अकॉर्डिंग टू WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ केयर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज एंड कोप विद इलनेस और डिसेबिलिटी विद और विदाउट द सपोर्ट ऑफ अ हेल्थ केयर वर्कर.
1: जी हाँ, क्या खुद का ख्याल रखने का मतलब केवल स्पा डे और छुट्टियां बिताना ही होता है?
0: नॉट एट ऑल. वाइल रिलैक्सेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो इट्स यस इंडीड इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्पा डे एंड हैव वेकेशंस, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट. सेल्फ केयर ऑल्सो इंक्लूड्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव, गेटिंग इनफ स्लीप, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड. इन एन इंक्रीजिंगली हेक्टिक वर्ल्ड, द कॉन्सेप्ट हैज इमर्ज्ड एज अ क्रूशियल एलिमेंट इन मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग. डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग वन्स ओन हेल्थ, सेल्फ केयर एनकंपसेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट नर्चर बोथ द बॉडी एंड द माइंड.
1: जी हाँ, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक से लेकर फिजिकल फिटनेस और हेल्दी खानपान की आदतें, स्वदेखभाल को प्राथमिकता देने वाले कई और बड़े फायदे भी इससे मिलते हैं. जरा अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में सोचिए, अपनी देखभाल के लिए आप कौन सी एक चीज करते हैं? क्या ये टहलना है, किताब पढ़ना है या कॉफी पीना है? मैंने सेल्फ केयर इंटरवेंशन शब्द भी सुना है, आखिर ये क्या होते हैं?
0: That's right. But ये भी ज़रूरी है कि you know जो आप समय निकाल रहे हैं खुद का ख्याल रखने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है. और वो क्यों ज़रूरी है?
1: जी हाँ, तो अब बात करते हैं कि आज के समय में स्वदेखभाल इतनी ज़रूरी क्यों है. असलियत यह है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली की बड़ी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं. अरबों लोगों के पास अब भी ज़रूरी स्वास्थ्य सेवा तक नहीं पहुंच पाती है और कई देशों में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत भारी कमी है.
0: That's right. And if you add to that so many humanitarian crises, climate-related emergencies, conflicts and health emergencies like COVID that happened, and that puts a lot of pressure on healthcare systems. And of course, that becomes even greater in such times.
1: बिल्कुल, और यहीं पर स्वदेखभाल अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है. लोगों को अपनी सेहत के बारे में सही फैसले लेने और समस्याओं के गंभीर होने से पहले ही उनसे बचाव के उपाय करने में सक्षम बनाती है.
0: So Mukesh, as we celebrate the self-care month from today, let's remember that good health starts with small daily choices. Whether it's getting enough rest, exercising, managing stress or learning more about your own health, every step counts.
1: बिल्कुल, और इस महीने एक नई स्वस्थ आदत अपनाने का कार्य करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें. साथ मिलकर हम ज्यादा स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं.
0: एंड मुकेश, ये तो हम लोग ने बात कर ली सेल्फ केयर मंथ की. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इज दैट इट्स पासपोर्ट सेवा दिवस. यस, वी आर ऑब्जर्विंग पासपोर्ट सेवा दिवस टुडे, अ डे दैट सेलिब्रेट्स द जर्नी ऑफ मेकिंग पासपोर्ट सर्विसेज मोर एक्सेसिबल, इफिशियंट and citizen-friendly, while commemorating the enactment of the Passports Act on 24th of June 1967.
1: जी हाँ, पासपोर्ट केवल यात्रा के एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अवसरों, संपर्कों और अनुभवों का एक जरिया है. आज पासपोर्ट सेवा दिवस पर हम उन सभी प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं जो इस जरिए को ये हर नागरिक के लिए सुलभ बनाते हैं.
0: From bustling cities to remote corners of the country, passport services are reaching citizens like never before. Today on Passport Seva Divas, we recognize the strides made in delivering faster, smarter and more accessible services to all.
1: और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस अवसर पर कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरे चरण की शुरुआत चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट लाना, नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना तथा रिकॉर्ड संख्या में पासपोर्ट जारी करने से यात्रा करना आसान हो रहा है और लोगों की वैश्विक पहुंच भी बढ़ रही है और नागरिक सशक्त हो रहे हैं.

0: right. And Dr. Jaishankar also reaffirmed the government's commitment to keep making passport services delivery faster, more transparent and accessible, guided by the vision of Surakshit Passport, Sugam Seva, Sashakt Nagrik.
1: और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा के साथ। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले कहाँ चलें?
0: मेरी फेवरेट जगह गोवा चलिए मुकेश
1: जी। गोवा चलते हैं। तो गोवा में आज साओ जुआओ पर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले इस पारंपरिक कैथोलिक पर्व में लोग धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और अपनी अनोखी परंपराओं के जरिए खुशी मना रहे हैं। तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: साओ जुआओ गोवा के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक त्योहारों में से एक है। हर साल 24 जून को मनाया जाने वाला यह पर्व संत जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है। राज्य के कई गांवों और कस्बों में आज सुबह से ही उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर लोग फूलों और हरी बेलों से बने रंग बिरंगे मुकुट, जिन्हें कोपिल कहा जाता है, पहनकर जुलूसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पारंपरिक गीतों और संगीत के बीच युवा कुओं, तालाबों और अन्य जलाशयों में छलांग लगाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यह संत जॉन से जुड़ी एक धार्मिक मान्यता का प्रतीक मानी जाती है। बारदेश के सियोलिम गांव में आज पारंपरिक नामों की झांकियां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। वहीं सालीगांव और अन्य गांवों में सामूहिक भोज, संगीत और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। साओ जुआओ पर्व मानसून के स्वागत और अच्छी बारिश की कामना से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक आस्था, लोक परंपरा और मानसून की उमंग का यह अनोखा संगम गोवा की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है और हर साल बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: और समुद्र की लहरों से अब चलते हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों पर।
0: राइट, लेकिन मिजाज नहीं बदलेगा बिकॉज अभी पहाड़ों के भी फेस्टिवल की बात करने वाले हैं। इन लद्दाख द एनुअल मोनेस्टिक फेस्टिवल ऑफ हेमेस मॉनेस्ट्री इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे। द मोनेस्टिक फेस्टिवल इज स्पिरिचुअल, इट्स अ स्पिरिचुअल इवेंट एंड मार्क्ड विद प्रेयर्स एंड सेक्रेड मास्क डांसेस बाय द बुद्धिस्ट मंक्स ऑफ द मोनेस्ट्री। Hemis Monastery has been observing the monastic festival every year in honor of Guru Padmasambhav, who is famous as the Indian mystic and tantric master from Nalanda University and introduced Vajrayana Buddhism in Tibet and Greater Himalayas. Our lay correspondent has filed this report.
3: Hemis Theshu is a spiritual festival celebrated in honor of birth anniversary of Guru Padmasambhava, the great Buddhist master of 8th century. Every monastery in Ladakh celebrated a spiritual event to promote harmony, dedicated to deities and perform rituals to ward off negative energies and sacred mask dances. This year, Hemis Theshu festival will be recorded as a special as well as historic monastic festival in Ladakh, as for the first time in 350 years of history of Hemis Monastery, the famous Kung Fu nuns of Drukpa Order of Tibetan Buddhism will perform at the sacred courtyard of the Hemis Monastery. With their performance during the Hemis Theshu festival, nuns have joined the heart of the centuries-old sacred stage of monastic festival and is a part of promotion for empowerment for nuns. Hemis Theshu festival is one of the major attractions for tourists in Ladakh. Yangchen Rolma for Parikrama from Leh.
1: और सारा लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आते हैं और चलते हैं जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में। बताते हैं श्रोताओं को, श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू यात्रा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और मेडिकल लॉजिस्टिक्स से जुड़ी व्यापक योजना तैयार की है। यह यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
4: A robust multi-layer security grid has been activated along both Pahalgam and Balthal routes. Key measures include large-scale deployment of central armed police forces, quick response teams at strategic locations, extensive CCTV surveillance, drone monitoring, RFID-based tracking for pilgrims and vehicles, and daily anti-sabotage checks. The Union Ministry of Home Affairs has approved the deployment of

0: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित श्रद्धाराम शर्मा को। उनको श्रद्धाराम फिलौरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें एक ज्योतिष के रूप में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जो उनके द्वारा लिखी गई अमर आरती ओम जय जगदीश हरे के कारण मिली। संपूर्ण भारत में पंडित श्रद्धाराम शर्मा द्वारा लिखित ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई जाती है। श्रद्धाराम शर्मा जी ने इस आरती की रचना 1870 में की थी। पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे।
1: And well, today is the birthday of Leo or Lionel Messi and Mukesh. FIFA तो already चल रहा है।
0: बिल्कुल, उन्होंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड भी बनाया है, विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।
1: Yes, absolutely. So all the more reason to celebrate his birthday with a lot of fervor. Why not pay him a tribute with the FIFA's theme song?

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार, नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर्स यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, सिंघरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 43 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर

0: पुर खलीबा पड़ौली जमीरा मसगा डांडपारा चाउरपानी बांसाझाल आमापानी कुड़केल घोघरा मानपुर दांतीढाब गढ़गांव बैगहवा चोरकी पानी कंडराजा घोड़ाघाट नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो जामटोली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 138 है। ये कुड़ेकेला पुरुंगा छाल बोजिया औरानारा बेहरामार लोटान रुपुंगा कोयलार सागरपुर ढोढ़ा गांव केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वनमंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गडरा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर आमाटिकरा नवापारा मड़ई कोदवारी कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये गुरसिया जुनवानी जोबी नोंदरहा पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़ फुरफुंदी तालदादर तेंदुचुआ पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमारे हाथी हमारे गोट।

हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिलाओं का दिवस। सुनिएगा पत्र मिला और युगल गीत। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे सीताराम सिंह। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे जमील अहमद। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा साफ सुथरा दूध उत्पादन ज्यादा कमाई के साधन। सुनिएगा चिट्ठी मिलीस। आज की सलाह में बरसात में पशुधन के देखरेख के बारे में डॉक्टर आशुतोष दुबे वैज्ञानिक पशुपालन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर देंगे जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे कुमार पंडित का तबला वादन। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर और रात 10:00। ये थी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

और आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम कल शाम 4 बजे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा कल शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 बजे से 7:30 तक, रात 8 बजे से रात 8:45 तक, रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर, बाल वाटिका। इस कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर बेरा की बात का विषय होगा नशा नाश के कारण आए ये कले दूर रहो। फुलवारी में सुनिएगा बाल कलाकार कुमारी अरुणिमा शर्मा ले शीतला शुक्ला के

से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर बाल वाटिका। इस कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर बेरा की बात का विषय होगा नशा नाश के कारण आए ये कर ले दूर रहो। फुलवारी में सुनिएगा बाल कलाकार कुमारी अरुणिमा शर्मा ले शीतला शुक्ला की गोठ बात। रोचक जानकारी दुनिया के अंतर्गत बल्ब के आविष्कार और आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में होगी जानकारी। प्रगति की सोपान कल सुबह 9:00 नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन दीदी शांति विश्वकर्मा से प्रकाश उदय की बातचीत आप सुनेंगे। लोक संगीत कल सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे फिरित पटेल और साथी। सरधारा कार्यक्रम सुबह 10:00 कलाकार होंगे कैलाश खेर और ईला अरुण। ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 11:05 पर। लोकसुधा कार्यक्रम कल दोपहर 12:30 पर सुनिएगा गोंडी गीत कलाकार होंगे मेहर सिंह और साथी और आप सुनेंगे हल्बी गीत कलाकार होंगे दिलीप सिंह और साथी। कल दोपहर 1:30 पर बिंदिया कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नशा नाश का मूल है और योग रखें निरोग। साथ ही सुनिएगा शीर्षक गीत और होंगे टिप्स। युवानी कल शाम 5:10 पर सुनिएगा हेलो मितान और अंतस के आरोप। कल शाम 7:30 पर किसान वाणी में आज की सलाह में वर्षा के पहली पशु के आवास चारा के प्रबंधन रोग राई और टीकाकरण के बारे में डॉक्टर भूपेंद्र सिन्हा विकास खंड पशु चिकित्सा अधिकारी कुरुत देंगे जानकारी। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: उम्मीदों की उड़ान लेकर नए ख्वाबों का कारवां आया है।
1: जोश, जुनून और नई सोच के साथ युवाड़ी फिर आपके बीच आया है।
0: उम्मीदों और आपके विश्वास के साथ हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल साहू।
1: और मैं हूं सूर्या तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आज बातें होंगी युवाओं के सपनों की, हुनर की, करियर की, संगीत की और समाज से जुड़े हर उस मुद्दे की जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है। सूर्या, आज सुबह सुबह तुम्हारा फोन लगातार बिजी आ रहा था। मैं सोचा कोई बड़ी बात हो गई, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना?
1: अरे क्या बताऊं काजल, घर पर दोनों छोटे भाई ऐसे बहस कर रहे थे जैसे संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग चल रही हो, और लगातार मुझे फोन किए जा रहे थे।
0: अच्छा, फिर घर में शांति वार्ता तो करवानी ही पड़ी होगी ना?
1: हाँ हाँ, माँ घर पर आज थी नहीं, वो ही समझौता करवाती है, मुझसे तो संभाले नहीं जाते दोनों। तभी सोच रहा था कि घर हो या दुनिया, रिश्ते बातचीत और समझदारी से ही संभलते हैं। देशों के स्तर पर इसे ही कूटनीति कहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सूर्या। और साथियों, शायद यही वजह है कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीति इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
1: और आज का दिन भी इसी सोच से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने 24 जून 2022 से अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, ताकि उन महिलाओं के योगदान को सम्मान दिया जा सके जिन्होंने संवाद और समझदारी से दुनिया को जोड़ने का काम किया।
0: बिल्कुल सच है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि कूटनीति सिर्फ बड़े बड़े मंचों और औपचारिक बैठकों तक ही सीमित रहती है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हमारे व्यवहार से ही होती है।
1: बिल्कुल काजल, कई बार एक शांत बातचीत भी बड़ा तनाव कम कर देती है, और यही काम बड़े स्तर पर राजदूत और कूटनीतिज्ञ करते हैं।
0: वैसे सूर्या, जब पहले तुम राजदूत शब्द सुनते थे तो क्या सोचते थे?
1: सच कहूँ तो पहले लगता था कि उनका काम बस विदेश जाकर लोगों के साथ हाथ मिलाना और

0: कैमरे के सामने मुस्कुराना होता है।
1: अच्छा, और लगता है ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मों का असर है।
0: लेकिन अब समझ आता है कि उनका असली काम देशों के बीच भरोसा बनाए रखना और मुश्किल परिस्थितियों में संवाद जारी रखना होता है।
1: बिल्कुल साथियों, ये काम आसान नहीं होता। कई बार बातचीत ही देशों के रिश्ते बदल देती है।
0: अच्छा काजल, क्या तुम्हें पता है दुनिया की पहली महिला राजदूत कौन थी?
1: हाँ सूर्या, सोवियत रूस की अलेक्जेंड्रा दुनिया की पहली महिला राजदूत थी। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को खुलकर बोलने का अधिकार भी सीमित ना था, तब वे देशों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण काम कर रही थी।
0: अच्छा, यानी उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया बल्कि लोगों की सोच भी बदली।
1: बिल्कुल, उन्होंने साबित किया कि समझदारी, नेतृत्व और संवाद किसी एक लिंक तक सीमित नहीं होते।
0: और साथियों, अगर भारत की बात करें तो एक नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, विजयलक्ष्मी पंडित जी का।
1: बिल्कुल दोस्तों, वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान एक प्रभावशाली के रूप में बनाई। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। जब भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था और दुनिया हमें ध्यान से देख रही थी,
0: ऐसे समय में विजयलक्ष्मी पंडित जी ने बहुत आत्मविश्वास और गरिमा के साथ दुनिया के सामने भारत की आवाज रखी।
1: उन्होंने ये भी दिखाया कि प्रभाव डालने के लिए हमेशा ऊंची आवाज जरूरी नहीं होती, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार भी बहुत मायने रखते हैं।
0: सोचिए, अगर दुनिया में हर देश सिर्फ गुस्से में फैसले लेने लगे तो शायद छोटी छोटी बातें भी बड़ी संघर्ष में बदल जाएगी।
1: बिल्कुल, इसलिए दोस्तों देशों के बीच संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और यही काम कूटनीतिज्ञ करते हैं। तनाव कम करना, भरोसा बनाना और बातचीत जारी रखना।
0: काजल, मैंने एक जगह पढ़ा था कि शांति वार्ताओं में महिलाओं की भागीदारी समझौतों को अधिक टिकाऊ बना सकती है,
1: क्योंकि बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहना ही नहीं, सामने वाले को समझना भी जरूरी होता है। सूर्या,
0: आज के समय में ये और भी जरूरी है काजल। सोशल मीडिया के दौर में लोग कई बार बहुत जल्दी बहुत बहस और नाराजगी तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल, और दोस्तों ऐसे में संवाद, धैर्य और संवेदनशीलता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।
0: और यही कारण है कि आज दुनिया महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को नए नजरिए से देख रही है। आज कई महिलाएं विदेश मंत्री, राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण पदों का काम कर रही हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, वो सिर्फ अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि शांति, सहयोग और समानता की भी आवाज बनती हैं।
0: साथियों, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन बातचीत बंद हो जाना सबसे बड़ी समस्या बन जाती है।
1: बिल्कुल साथियों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस हमें ये याद दिलाता है कि संवाद, धैर्य और समझदारी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।
0: तो आइए साथियों, आज हम यह संकल्प ले कि मतभेद चाहे कितने भी हो, हम बातचीत और समझदारी का रास्ता ही चुनेंगे।
1: बिल्कुल, और अपने आसपास उन महिलाओं का सम्मान करेंगे जो लोगों को जोड़ने और माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं।

0: काजल, अब समय है हमारे पसंदीदा क्रम पत्र मिला का। काजल, आज तो तुम्हें तुम्हारे नाम ढेरों ढेरों पत्र आए हैं।
1: अरे वाह, सच में सूर्या, इतने सारे पत्र, ये देखकर ना मेरे मन तो एकदम खुश हो गया। लगता है आज तो पूरा युवाणी मेरे ही नाम हो गया है।
0: श्रोताओं ने तुम्हें खूब सराहा है और बड़े प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं।
1: अच्छा जी, तो फिर जल्दी से पढ़ो ना, मैं भी तो सुनूं कि लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, कहीं ज्यादा तारीफ करके मुझे उड़ा तो नहीं रहे।
0: अरे नहीं नहीं, सब दिल से लिखा है।
1: अच्छा, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के ढेर सारे पत्रों की दुनिया का सफर।
0: तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होता है पत्र मिला का खास और दिलचस्प सिलसिला।

0: 29 मई का कार्यक्रम आगे बढ़ाया सुयश साहू और प्रगति ने। इस दिन एक मुलाकात कड़ी में रंगमंच कलाकार अमितेश तिवारी से धर्मदीप डोंगरे द्वारा ली गई भेंट वार्ता सुनने का अवसर मिला। अमितेश तिवारी ने अपनी कला यात्रा के बारे में प्रेरणाप्रद बातें बताई। इस रोचक भेंट वार्ता के लिए अमितेश तिवारी और धर्मदीप डोंगरे को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों, इतना सुंदर पत्र समीक्षा लिखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी ने छोटे छोटे काम से प्रारंभ होकर बड़े कार्यों को हाथ में लेने से सफलता मिलती है, इस बात को समझा और लिखकर हमें भेजा, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और 29 मई के कार्यक्रम के लिए आपने ये पत्र लिखा था, जिसमें आपने सुयश और प्रगति टांडी दोनों की सराहना की। हम माइक्रोफोन के जरिए उन दोनों तक आपकी सराहना प्रेषित करते हैं। साथ ही अमितेश तिवारी और धर्मदीप डोंगरे को भी इस माइक्रोफोन के जरिए आपके अभिनंदन प्रेषित करते हैं। पत्र लिखने के लिए बहुत धन्यवाद। साथियों, इस दिन के लिए हमें और भी पत्र आया है दुर्ग से डबल कुमार ढीवर और संजय ढीवर का।
0: इतनी अच्छी बातें की कही तुमने काजल, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं ईमेल की ओर।
1: बिल्कुल, तो बताओ ये पहला ईमेल हमें कहाँ से आया है सूर्या?
0: ये ईमेल हमें आया है परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया का। ये लिखते हैं कि 17 मई की सुहानी संध्या बेला में युववाणी अपने चिर परिचित और दिलकश अंदाज में हमारे बीच प्रस्तुत हुआ, जिसकी शानदार प्रस्तुति काजल और रोशनी ने की। इस दिन के सभी कार्यक्रम बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहे। क्रम आजकल में विश्व मरुस्थलीकरण दिवस पर दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। इस चर्चा के माध्यम से मरुस्थलीकरण के कारणों और उससे बचाव के उपायों की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। क्रम पत्र मिला में पत्रों और ईमेल का सुंदर वाचन किया तथा काजल ने सटीक और प्रभावशाली उत्तर देकर कार्यक्रम को और आकर्षक बना दिया। वहीं क्रम यादें में सुनाए गए सदाबहार फिल्मी नगमों ने मन को भाव विभोर कर दिया। आज की शानदार प्रस्तुति के लिए काजल, रोशनी और संपूर्ण युवाणी अनुभाग को हमारी ओर से हार्दिक बधाई।
1: आपके स्नेह भरे पत्र और सुंदर शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि युवाणी की प्रस्तुति और हमारे सभी कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आए। आजकल में विश्व मरुस्थलीकरण दिवस पर दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी, ये हमारे लिए सचमुच खुशी की बात है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश आप तक हम पहुंचा पाए, ये हमारे प्रयास की सार्थकता है। क्रम पत्र मिला में कि आपने सराहना की, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। इसके साथ ही यादें में प्रस्तुत सदाबहार गीतों ने आपके मन को आनंदित किया, ये जानकर बहुत खुशी हुई। आपके ऐसे ही प्यार, स्नेह और प्रोत्साहन से हम आगे भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह युवाणी से जुड़े रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद
0: काजल। इस दिन के लिए हमें और भी पत्र आए हैं, मेघापारा चिल्फी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर, शारदा निर्मलकर, ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरियाबंद से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन।
1: सूर्या, ये अगला ईमेल हमें भेजा है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल का। और ये लिखते हैं कि 21 तारीख के कार्यक्रम युववाणी को हमारे युवा साथी राजलक्ष्मी और रोशनी पांडे ने शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया। क्रम आजकल में विश्व योग दिवस पर दी गई जानकारी और विचार बेहद प्रेरणादायक लगे। वही क्रम आज मेरी बारी है में रक्षा जायसवाल के विचारों और उनकी पसंद के गीतों को सुनना बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही क्रम नए तराने में सुनाए गए मधुर गीतों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सभी गीत बेहद कर्णप्रिय और मनमोहक रहे। उस दिन की इस शानदार प्रस्तुति के लिए राजलक्ष्मी और रोशनी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
0: साथियों, आपके स्नेह भरे ईमेल और प्यार भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि 21 तारीख का युवाणी कार्यक्रम आपको पसंद आया। आजकल में विश्व योग दिवस पर दी गई जानकारी और आज मेरी बारी है मैं रक्षा जायसवाल जी के विचारों व गीतों को आपने सराहा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। साथ ही

पहला पत्र हमें भेजा है मगरलोड जिला धमतरी से पूनूराम साहू तेजस्वरी साहू ने। लिखते हैं, आप लोगों के साथ सभी श्रोता मित्रों को सप्रेम नमस्कार। छोटे छोटे काम से प्रारंभ करके ही बड़े कार्यों को हाथ में लेने से सफलता मिल सकती है। इन्हीं बिंदु पर चर्चा करते हुए दिनांक

0: तराने के गीत आपको मधुर और मनमोहक लगे, यह जानकर हमारा उत्साह और बढ़ गया। आपका यही प्यार और प्रोत्साहन हमें आगे भी बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता रहेगा। इसी तरह युवाणी से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों, इस दिन के लिए हमें और भी ईमेल्स आए हैं। ग्राम गेंदा टोला जिला राजनांदगांव से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक का।
0: काजल, ये अगला ईमेल भी तुम्हारे लिए ही आया है।
1: अच्छा, जरा बताना सूर्या कि ये कहाँ से आया है और क्या लिखा है इस ईमेल में।
0: काजल, ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, और इन्होंने लिखा है, 22 जून के युवाणी कार्यक्रम को हमारे दो कंपियर साथी काजल साहू और सृष्टि तिवारी ने बेहद शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया। क्रम आजकल में विश्व वर्षा वन दिवस के बारे में दी गई जानकारी और बातचीत बहुत ज्ञानवर्धक लगी। वही क्रम हेलो युवाणी में काजल साहू जी ने श्रोताओं से आत्मीय बातचीत की और उनकी पसंद के गीत सुनकर कार्यक्रम को और भी मनोरंजक बना दिया। इसके साथ ही क्रम दृष्टिकोण में श्रोताओं के पत्रों और ईमेल को शामिल किया गया, जो हमें बहुत अच्छा लगा, और हेलो युवाणी के संचालन कर रहे काजल और प्रस्तुतकर्ता दीपक हटवार को भी, साथ ही सृष्टि तिवारी को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
1: साथियों, आपके स्नेह भरे संदेश और 22 जून की युवाणी कार्यक्रम की सराहना के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये जानकर हमें अत्यंत खुशी हुई कि आपको हमारा पूरा प्रसारण पसंद आया। आजकल में विषय था विश्व वर्षा वन दिवस पर, जो जानकारी हमने दी वो आपको अच्छी लगी। क्रम हेलो युवाणी में श्रोताओं से बातचीत आपको पसंद आए और आपके गीत भी आपने बहुत पसंद किए। साथियों, हेलो युवाणी एक ऐसा क्रम है जिसमें हम आपसे सीधे बात करते हैं, तो इस क्रम को भी आपने बहुत सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्रम दृष्टिकोण में शामिल पत्रों और ईमेल सभी को आपने पसंद किया, ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। मैं काजल साहू आपके इस प्यार और प्रोत्साहन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी साथी सृष्टि तिवारी को आपकी बधाई माइक्रोफोन के जरिए प्रेषित करती हूँ। आपके जैसे श्रोता का साथ ही हमें आगे बेहतर करने के लिए ऊर्जा देता है। इसी तरह युवाणी से जुड़े रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद।
0: इस दिन के लिए और भी पत्र हमें आए हैं। धरसीवा बस स्टैंड से छोटू लाल यादव, सीता यादव, संतोषी नगर रायपुर से छन्नू लाल यादव, पुष्पलता यादव, नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री राजपूत, सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल, किशन पटेल।
1: साथियों, आपके प्यार भरे पत्र और खूबसूरत संदेश पढ़कर मन सच में खुश हो गया।
0: बिल्कुल काजल, आपके पत्र ही इस क्रम की असली पहचान है, इसलिए अपने विचार, सुझाव और ढेर सारा प्यार हमें इसी तरह भेजते रहिए।
1: और साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, युववाणी अनुभाग। और साथियों, इसी के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है AIRYOUTH9@gmail.com। साथियों, ईमेल भेजते समय आप सब्जेक्ट बॉक्स में क्रमपत्र मिला का सब्जेक्ट कोड Y1 लिखना ना भूले। क्रमपत्र मिला, यहीं तक।

0: कभी ऐसा लगा है कि किसी के आने के बाद जिंदगी की रफ्तार वही रहती है, लेकिन एहसास पूरी तरह से बदल जाते हैं। हर छोटी छोटी चीजें थोड़ी खास लगने लगती है और बिना वजह चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
1: आज की ये शाम भी कुछ ऐसे ही जज्बातों के नाम है, तो बस आराम से बैठिए और महसूस कीजिए इस सफर को।
0: और आइए सुनते हैं क्रम युगल गीत का ये पहली प्रस्तुति।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव का ये खूबसूरत तराना। स्वर से सजाया था अलका याग्निक, सोनू निगम ने गीत लिखे थे समीर ने।

0: और संगीत दिया था अदनान सामी ने।
1: साथियों पसंद करता थे देवरी भाटापारा से युवान रजक, हाव्या रजक, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति ठाकुर, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, राहुल सविता बेबी स्वाति माखीजा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, कुल्हाड़ी कोट पांडुका से नरोत्तम नीतू मोहनीश और अनुराग कश्यप।
0: कुछ लोग हमारी कहानी में धीरे से शामिल होते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी हर अधूरी बात को पूरा कर देती है। फिर दिल बार बार यही सोचता है कि आखिर इतनी खूबसूरत मोहब्बत हमारी जिंदगी में आई कैसे।
1: जब कोई इंसान दुआ जैसा महसूस होने लगे तो हर पल थोड़ा खास बन जाता है। साथियों इन्हीं सुंदर बातों के साथ आइए अब सुनते एक ऐसा नगमा जो उसी एहसास को बेहद खूबसूरती से बयां करता है।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गजनी का ये खूबसूरत तराना। स्वर से सजाया था बेनी दयाल और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था AR रहमान ने।
1: और पसंदकर्ता थे राजनांदगांव से झग्गर राम साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, लल्ला दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा साहू, साले खुर्द धमधा से तोरण साहू, याचना शिवानी, जयदेव साहू, रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम, सेजल साहू, भानपरी मुसरा से आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमू मनेश्वर यादव।
0: हर रिश्ता बड़ी बातों से नहीं बनता, कभी कभी किसी का साथ ही काफी होता है। रास्ते चाहे कितने भी लंबे हो, अगर साथ सही हो तो सफर थकाता नहीं, सुकून देता है।
1: क्या बात है सूर्या, कितनी सही बात कही तुमने। कुछ लोग ना जिंदगी में मंजिल बनकर नहीं बल्कि पूरे सफर को खूबसूरत बनाने के लिए ही आते हैं। तो साथियों, इसी बात पर आइए बढ़ते हमारे क्रम के अगले गीत की ओर।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आई का ये खूबसूरत तराना। स्वर से सजाया था श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, गीत लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था एआर रहमान ने।
1: और पसंद करता थे ग्राम तेंदुभाठा मगरलोड धमतरी से उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका पोषण नूतन निषाद, सारंगपुरी नगरी से दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई उमाशंकर, ठामेश्वरी रागिनी साहू, फुलझर घटारानी से मुस्कान कोकिला यामिनी साहू, साल्हे तिलदा नेवरा से गजेंद्र सेन, गणेश सोनी, वीरेंद्र यदु, बलराम यादव, शनि निषाद, चडोंगरी पिपरिया कबरधा से दुर्गा राम, अजय जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू।
0: कुछ एहसास बिना दस्तक के दिल में जगह बना लेते हैं। शुरुआत सिर्फ बातों से होती है, फिर वही इंसान आदत बन जाता है।
1: धीरे धीरे हर सोच, हर दुआ और हर मुस्कान में वही शामिल होने लगते हैं।
0: और एक दिन महसूस होता है कि दिल तो कब का उसके नाम हो चुका है। अब सुनते हैं मोहब्बत की उसी प्यारी सी शरारत को।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दबंग का ये खूबसूरत तराना। स्वर से सजाया था श्रेया घोषाल, सोनू निगम ने, और गीत लिखे थे जलीश शर्वानी ने, संगीत दिया था साजिद वाजिद ने,
1: और पसंदकर्ता थे इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, प्रियंका, गौरव बंछोर, कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, फूलजी यादव, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, ग्राम बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण, अंजनी, ज्योति, यश, प्रयांश, पार्थ, कश्यप, कौशल, अरविंद वर्मा, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी और वान्या सिंगरौल। साथियों, धरती केवल मिट्टी नहीं होती, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, वर्तमान की पहचान है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी।
0: भारत की आत्मा गांवों से बसती है और गांवों की आत्मा है खेत, लेकिन आज यही खेत संकट में है। कहीं बढ़ता शहरीकरण कृषि भूमि को निगल रहा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कहीं रासायनिक प्रदूषण मिट्टी की उर्वरकता को खत्म कर रहे हैं तो कहीं पानी की कमी खेती को असंभव बना रही है। ऐसे में एक आवाज उठ रही है, खेत बचाओ अभियान,
0: एक ऐसा अभियान जो केवल जमीन बचाने का नहीं बल्कि जीवन, पर्यावरण और भविष्य बचाने का संकल्प है।
1: बिल्कुल साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है और हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। पर्यावरण हमारे लिए सब कुछ है, पर्यावरण हमें सब कुछ देती है, चाहे हवा हो, पानी हो, खाने की चीज़ें, हर चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से मिलती है। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। वैसे सूर्या, देखो ना, आज हमने इतनी सुंदर सुंदर पत्र पढ़े, इतने सुंदर सुंदर गीत सुने और इतनी प्यारी प्यारी बातें भी कर ली, और देखो समय का पता ही नहीं चला, मन ही नहीं करता ना यहाँ स्टूडियो से जाने का और श्रोताओं से बात ही करते रहने का मन करता है, क्यों? सही कहा ना?
0: सही कहा काजल तुमने।
1: और जैसे कि टाइम तो हो चुका है लेकिन फिर भी गुंजाइश रहती है कि हम श्रोताओं से थोड़ा बात कर ले, तो श्रोताओं आप हमें अपने विचार लिखने के लिए लिखकर भेज सकते हैं क्रम पत्र मिला में, और हमारा ईमेल एड्रेस आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारा ईमेल एड्रेस है AIRYOUTH9@gmail.com। साथियों, इसी तरह आप अपना प्यार युववाणी कार्यक्रम पर बरसाते रहिए और

0: वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले साथियों जान लेते हैं कल के कार्यक्रम। कल की युवाणी में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रोग्राम, और इसमें आप सुनेंगे क्रम हेलो मितान और अंतस के आरो। साथियों, रिश्ता ना अचानक गहरा नहीं होता, कुछ रिश्ते वक्त के साथ दिल के बेहद करीब आ जाते हैं और फिर साथ जो है पसंद बन जाता है और ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल हमारा और आपका साथ इसी रिश्ते की तरह है, आपका और हमारा रिश्ता अटूट है और अचूक है। इसी तरह आप अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए।
1: जब किसी की मौजूदगी से ही दुनिया खूबसूरत लगने लगे तो शायद वही असली मोहब्बत होती है
0: साथियों। और आपकी जो मोहब्बत है वो हमें पत्रों के ज़रिए बहुत अच्छी तरह से मिलती रही है, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमें हर क्रम के लिए इसी तरह पत्र भेजते रहिए। साथियों, इसी के साथ मुझे यानी काजल साहू को दीजिए इजाज़त,
1: और मैं सूर्या तिवारी, स्वीकार करिए हमारा
0: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र हैं। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़

0: रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है। अब

0: मैं क्या करूं?
1: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेति सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल ले बर देहे सलाह। और महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा विषय खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई ले लागू हो जाही। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार खातिर ग्राम सभा चौपाल पोस्टर बैनर मुनादी रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करे जाते। उन्हें सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह के माइलोगिन जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन घलो लोगन मल्ला योजना के जानकारी देमा जुट गए हैं। उन्हें ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर प्रशिक्षण बैठक और ग्राम सभा लगाए जाते जेमा गांव के लोगन मल्ला योजना के जानकारी और फायदा के संबंध में बताए जावत थे। यही कड़ी में बेमेतरा जिला के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में गांव के लोगन मल्ला मानव श्रृंखला बना के और स्लोगन ले लोगन मल्ला ये योजना ले जुड़े खातिर प्रेरित करीन। ये दौरान गांव के मनखे मन हा पात्र परिवार ला योजना के फायदा दिवाए और ज्यादा ले ज्यादा लोगन तक एकर जानकारी अमराय के संकल्प लीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि 1 जुलाई ले लागू होवैया वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका रोजगार और आत्मनिर्भर गांव के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होही। उमन बतैन की राज्य मंत्री परिषद हा ये योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप ला मंजूरी दे दे है। एसो अलनीनो के प्रभाव के सेति सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मल्ला मौसम के मुताबिक फसल ले के सलाह दे है। विभाग धान के जगह में दलहन तिलहन फसल के खेती ला बढ़ावा देबर कहे है। कृषि विभाग के मुताबिक कमती वर्षा के संभावित स्थिति में अरहर मूंग उरीद कुल्थी मूंगफली तिल रामतिल कोदो कुटकी और रागी जैसन फसल ले जा सकत है। कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक दलहन और तिलहन फसल कमती लागत में बने उत्पादन दे के संग भूइया के उर्वरा शक्ति ला सुधारे में महत्ता के भूमिका निभाते। प्रदेश के सरकारी स्कूल मन में अवैया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होही। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बतैन कि 1 अप्रैल ले सत्र शुरू होय ले लैका मन पहलीच ले मानसिक रूप ले तैयार होही। उमन बतैन कि लैका मन ला 1 अप्रैल ले ही किताब स्कूल ड्रेस और साइकिल बांटे जाही। उमन यहू कहिन कि सत्र ला जल्दी शुरू करे के उद्देश्य पाठ्यक्रम ला बेरा रहत पूरा करना और पढ़ैया लैका मन के परीक्षा के नतीजा में सुधार लाना है। स्कूल शिक्षा मंत्री है बतैन कि 1 जुलाई ले सबो शिक्षक और कर्मचारी मन बर VSK ऐप मा पंजीयन और उपस्थिति जरूरी होही। जुलाई महीना के वेतन ऐप मा दर्ज उपस्थिति के आधार मा दे जाही।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल ने देश भर में वंदे मातरम कैंप लगाही। एकर उद्देश्य युवा मल्ला भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा के संबंध में समझ बढ़ाए के मौका देना ही। एमा चुने गए जिला में 20 शिविर लगाए जाही। हर एक शिविर में 15 ले 29 बच्चर आयु वर्ग के 150 युवा भाग लिही। हर एक शिविर में पूर्वोत्तर समेत 6 राज्य के युवा संघरी। मंत्रालय है यहू बताए है कि कम से कम 50% प्रतिभागी में महिला और सामाजिक रूप ले पिछड़े वर्ग के लोगन हो ही। पहली शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काली ले लगाए जाही। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारी मन के बैठका हुई। बैठका में संगठन और सरकार ले जुड़े आने आने मुद्दा में गोट बात हुई से। ये दौरान जिला में चला संगठनात्मक काम और अभियान में लेके पदाधिकारी मल्ला दिशा निर्देश देगी। ये बैठका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय समेत भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहीन। उन्हें आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के बैठका घलो हुई। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन पर लुगरा के केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था ला खत्म कर दे है। अब लुगरा बिसाए बर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता मा भेजे जाही। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े है विभाग ला निर्देश दिन है कि लुगरा के डिजाइन पहली जैसन रखे जाए जेखर ले प्रदेश भर मा एक रूपता बने रही। उन्हें लुगरा ला पसंद खुद कार्यकर्ता और सहायिका मन कर सकी। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्चर पूरा होए के मौका में छत्तीसगढ़ में 29 जून ले 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाही। ये आयोजन के तैयारी ला लेके सहकारिता मंत्री केदार कश्यप है मंत्रालय में विभागीय अधिकारी और आने सहकारी संस्था महासंघ के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके जरूरी निर्देश दीन। श्री कश्यप बतायन की हफ्ता भर तक चलैया ये कार्यक्रम में जागरूकता सहभागिता और नवाचार ला प्राथमिकता दे जाही। संगे संग लोगन ला सहकारी योजना और उपलब्धि के संबंध में बताए जाही। उमन अधिकारी मन ने कहिन कि सहकारिता सप्ताह के बेरा किसान महिला स्व सहायता समूह दुग्ध उत्पादक मत्स्य पालक वनोपज संग्राहक और हस्तशिल्पी मन के भागीदारी तय करे जाए। आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में प्रदेश भर में कतकुन कार्यक्रम होवत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है रायपुर में उनकर फोटो में फूल माला चढ़ा के उमल्ला सुरता करीन। ये बीरमा मुख्यमंत्री है किहिन की रानी दुर्गावती के वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास के अमूल्य धरोहर है। श्री साय है किहिन की रानी दुर्गावती के आदर्श ले प्रेरणा लेके हमल्ला विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प ला और ज्यादा दृढ़ता के संग आगू बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय पर 36वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह काली नई दिल्ली में रखे जाही। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये समारोह के अगुवाई करही। श्री मेघवाल जितैया विद्यार्थी और स्कूल ला इनाम दिही। क्षेत्रीय स्तर में प्रतियोगिता में अव्वल अवैया 20 केंद्रीय विद्यालय मन में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय घलो शामिल है। रायपुर के तिलकनगर शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के छात्रा महिमा राजपूत के चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति शैट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुई है। महिमा 23 अगस्त ले नई दिल्ली में होवैया 8 दिवसीय शक्ति शैट कार्यशाला में भाग ली। ये मिशन में आने आने देश के 108 चुने गए छात्रा मन भाग लेवे थे। एमा सबो छात्रा मन के मिल के शक्ति शैट उपग्रह बनाही। एमा ले एक सैटेलाइट ला चंद्रमा के क्षमा स्थापित करे जाही। उन्हें दूसर चंद्रमा के सतह में उतरे के उद्देश्य ले बनाए जाही। ये सैटेलाइट के प्रक्षेपण इसरो कोती ले अक्टूबर मा श्री हरिकोटा ले करे जाही। महिमा के ये उपलब्धि मा रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह उमल्ला शुभकामना दिन है। अंबिकापुर जिला के बिसुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह ले पाछू संजा 11 जिन अपचारी बालक फरार हो गए। एकर उम्र 14 ले 17 बच्चर के बीच बताए जाते। घटना के जानकारी मिलते गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उखर तलाश में जुट गए हैं। बताए जाते कि फरार अपचारी बालक सरगुजा सूरजपुर और कोरिया जिला के रहवैया रहे।

0: एमा ले कुछ एक के खिलाफ हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसन मामला दर्ज है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के मरवाही थाना क्षेत्र में पाछू 20 जून के होए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामला में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 झन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन हा व्यवसाय ला छोड़े के बदला 20 लाख रुपया के फिरौती मांगे रहीन। आरोपी मन तीर ले पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक चौपहिया गाड़ी बरामद करे है। पुलिस ने आने फरार आरोपी मन के तलाश करत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में 1 जुलाई ले हो ही लागू। योजना के प्रचार प्रसार खातिर डिजिटल माध्यम के करे जाते उपयोग। अलनीनो के प्रभाव के सेती सामान्य ले कमती वर्षा के संभावना ला देखत कृषि विभाग प्रदेश के किसान मन ला मौसम के मुताबिक फसल ले बर देहे सलाह। और महिला और बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन बर लुगरा विषय खातिर तय राशि सोझे कर्मचारी मन के बैंक खाता में भेजी। एकरी संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य एकस्मिन् मंचे पाकिस्तान देशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढ़तया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मंचस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोपि कृतः। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधित सुरक्षा परामर्शः निर्गतः, यत्र हि अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् उपादिष्टम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणां अकरोत्। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डीआर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन संयुक्त राष्ट्र संघस्य एकस्मिन् मंचे पाकिस्तान देशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढ़तया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मंचस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोपि कृतः। अपि च सः अध्यक्षत्वेन स्वस्थानस्य दुरुपयोगाय अपि भारतेन कट्वालोचिता। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीशेन पाकिस्तानस्य स्थायी प्रतिनिधि द्वारा असीम इफ्तिखार अहमद इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रतिक्रिया रूपेण एषा टिप्पणी कृता।
3: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
2: पाकिस्तानात् हस्तक्षेपस्य प्रतिक्रिया रूपेण श्रीहरीशः सह अध्यक्षस्य आचरणस्य निन्दाम् अकरोत्। जम्मू कश्मीर विषये भारतस्य दीर्घकालस्य स्थितिं पुनरुद्घाटयत् च। भारतीयः राजदूतः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अशीति संरचनायाः अन्तर्गतस्य संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आदेशानां वर्तमान समीक्षायाः विषये अपि अवदत्, यस्योद्देश्यं सम्पूर्ण संस्थायां कार्यक्षमतां वर्धयितुमस्ति। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधितः सुरक्षा परामर्शः निर्गतः। देशस्य सकारात्मक परिवर्तनानि सामान्य स्थितिं च अवलोक्य दूतावासेन नागरिकाः ईरान प्रवास विषये विचारं कर्तुं सूचिताः, किन्तु साकमेव अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् अपि

0: उपादिष्टम्। परामर्शानुसारं ये भारतीयाः सम्प्रति ईरान निवसन्ति अथवा केनापि अनिवार्य कारणेन तत्र गच्छन्तः सन्ति तेभ्यः उच्चस्तरीय अवधानतायाः वर्तितुं सतर्कं भवितुं तथा च परिस्थिति अनुकूल जागरूकतां धारयितुं निर्देशः प्रदत्तः। दूतावासेन सर्वे भारतीय नागरिकाः शीघ्रातिशीघ्रं दूतावासे स्वविवरणं पञ्जीकर्तुम् अपि निर्दिष्टाः। आपत्काले साहाय्यार्थं दूतावासेन एताः दूरभाष संख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891210115 9891210119। नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। सियोलद् नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायाम् आरम्भिकभाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रियस्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेशमन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसम्पर्कमित्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीयमञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्यमन्त्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मन्त्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामी दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं मेघालये, आन्तरिककर्णाटके, ओडिशायां, तेलङ्गानायां, पश्चिमबङ्गप्रदेशे, सिक्किमराज्ये च प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मूकश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झञ्झावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, बिहारे, गुजराते

0: झारखंडे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्यप्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तरप्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तम् एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं चतुर्विंशति सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य पञ्चदिनाङ्कादारभ्य चतुर्दशदिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु सप्त द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामी कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमाचानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम एकम शून्यम इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशम 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सीताराम सिंह। पहले सुनिए कबीर की ये रचना।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: सफर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: सुगम संगीत अभी आप सुन रही थी, कलाकार थी सीता राम सिंह। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में, यह आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही VBG रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अल निनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच

0: कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों की को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांव की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने इस योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप को मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि बच्चों को 1 अप्रैल से ही पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण किया जाएगा।
1: 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप से तैयार होगा। जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज है, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे। तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा। 16 जून को जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा। तो कल ही हमने बैठक में कहा है कि सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, जनवरी में रिवीजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है। कल हमने बैठक में कहा है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें।
0: स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देशभर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस पहल के तहत चुने गए जिलों में 20 शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 15 से 29 आयु वर्ग के 150 युवा हिस्सा लेंगे। प्रत्येक शिविर में पूर्वोत्तर सहित 6 राज्यों के युवा शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कम से कम 50% भागियों में महिलाएं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग होंगे। पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का PM केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि साड़ी का डिजाइन पहले जैसा रखा जाए ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहेगी। वहीं साड़ी के कपड़े अथवा अन्य विकल्पों का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं कार्यकर्ता और सहायिकाएं कर सकेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभा ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जिलों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों और अभियानों को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं आज ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बैठक भी हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर

सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी है। विभाग ने धान के स्थान पर दलहन और तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दलहन और तिलहन फसलें कम लागत में बेहतर उत्पादन के साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कम पानी वाले क्षेत्रों में धान के बदले दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत समर्थन मूल्य पर की जाती है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि सप्ताह भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जागरूकता, सहभागिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही लोगों को सहकारी योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रायपुर के तिलक नगर स्थित शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्रा महिमा राजपूत का चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। महिमा 23 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 8 दिवसीय शक्ति सेट कार्यशाला में भाग लेंगी। इस मिशन में विभिन्न देशों की 108 चयनित छात्राएं भाग लेंगी। इस कार्यशाला में छात्राएं मिलकर शक्ति सेट उपग्रह का निर्माण करेंगी। इनमें से एक सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा चंद्रमा की सतह पर उतरने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण इसरो द्वारा अक्टूबर में श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। महिमा की इस उपलब्धि पर रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अंबिकापुर जिले के बिशुनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बीती शाम 11 अपचारी बालक फरार हो गए। इनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उनकी तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि फरार अपचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज हैं। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के मारवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक 4-पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक, पक्षी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में हॉर्नबिल का अवलोकन कर सकेंगे। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना पीएम MKSSY के तहत कल 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडरब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। दुर्ग जिले के धमदा तहसील के ग्राम बसनी में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर भूमाफियाओं को सख्त संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जशपुर जिले में खनिज विभाग ने शंख नदी के तट पर 200 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की है। इस मामले में विभाग ने 1,46,000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही VBG रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी। और महिला और बाल विकास विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को

0: साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहले सुनिए इश्क तेरा, इस फिल्म का गीत आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

बर्फी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ थी। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी प्रीतम ने। और इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम रुक्मणी,
1: राम राम मोनिका। संगे संग हमर कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगी मल्ला हमर दोनों के राम राम।
0: रुक्मणी, आज हरे बुधवार और आज के दिन हमर कार्यक्रम में क्रम होते चिट्ठी मिली। तबई देरी नहीं करन और श्रोता संगवारी मन के माया दुलार आशीर्वाद संग कार्यक्रम खातिर उखर मन के विचार सब बोला पढ़थन। तो भाई हमार पहली चिट्ठी में संगवारी मन लिखे हैं कि 18 जून संझा किसानवाड़ी में हल्दी और अदरक के वैज्ञानिक खेती ये विषय में डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी ले जानकारी सुने। आप मन हम बड़ विस्तार ले सरी बात ला बताइन। हल्दी और अदरक हमार भोजन खातिर बहुते जरूरी होते। ये स्वाद संग स्वास्थ्य दोनों बर लाभ के होते। इखर खातिर जिन खेती के बात है वो हमार आर्थिक लाभ बर घलोक है। भाई ऐसे में ये जानकारी हमार खातिर बड़ फायदा के रही। ऐसन सुघर जानकारी की प्रस्तुति खातिर चौपाल प्रभागला बधाई। बधाई भेजैया संगवारी है मदनपुर का वर्धाले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुसानी, खुमेंद्र मसिया मना।
1: सबले पहले तो जम्मू संगी मनला बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम ला सुन के समीक्षा ईमेल के माध्यम ले भेजे खातिर। संगवारी हो आप मनला 18 जून के कार्यक्रम जेमा हल्दी अदरक विषय में जानकारी देगे दिवाएगे रही से अच्छा लागिस। संगी हो हल्दी और अदरक महत्वपूर्ण मसाला फसल आए। एकर खेती ले हमन अच्छा लाभ पा सकते हैं। हमार छत्तीसगढ़ के माटी ये फसल बर उपयुक्त है। फिर ये सब बात के भी ध्यान देवन कि खेत में अच्छा जल निकासी वाले बलुई दोमट माटी अच्छा माने जाते। रोग और कीट ले बचाव खातिर खेत के नियमित रूप ले निगरानी करन, संतुलित मात्रा में उर्वरक के उपयोग करेगले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ते। यही सबों के जानकारी दिन हमार विशेषज्ञ जी जौन जानकारी संगवारी हो आप मनला महत्ता के लागिस। ई मेल के माध्यम ले बधाई भेजे खातिर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दूसरिया मेल माँ हमारे संगवारी मन लिखे हैं कि 19 जून के दिन चौपाल माँ हेलो चौपाल क्रम सुने। फोन के माध्यम ले संगवारी मन विशेषज्ञ ले लाख के विषय में जानकारी लेवत रही है और डॉक्टर ईश्वरी साहू जी हा बड़ सुघर तरीका ले बतावत रही। लाख के चुरी माई लोगन मन के हाथ में पहरे देखन तो पता नहीं रही कि एकर दिगर उपयोग घलोक होते और एला ऐसे लगाए जाते।

0: मतलब जिन खेती है किसी कर थी वहाँ इतना मेहनत लगती है, और इतना मेहनत के बाद लाख के रंग रंग की चूड़ी, और अब तो ये का सिंगार में जिन हमार सौंदर्य प्रसाधन होते वहाँ घलोक उपयोग होते और दूसरा जिनिस घलोक बनते। जानकारी है बहुते लाभ के रही, सुघर रही प्रस्तुति खातिर चौपाल प्रभागला बधाई बधाई भेजैया संगवारी मन ही नागर कोहरा जिला राजनांदगांव लिही बबलू साहू जामुन देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू आर्यनगर घोघा भिलाई लिही उत्तम सिंह जंघेल मोरज जंघेल अनिल अजीत आयुष और नंदनी जंघेल धमदा ग्राम सुखरी कला लिही अमित जंघेल सकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य अंजनी जंघेल मन।
1: मोनिका संगी मन लिखे हैं कि हेलो किसान वाणी में हमर जोन जानकारी के विषय रही से गांव के लाख के खेती ये विषय ले जुड़े जम्मू समस्या के समाधान हमर विशेषज्ञ जी द्वारा करेंगे जेखर ले संगवारी मन ला लाख की खेती करे में मदद मिली। हमर भारत में लाख की खेती एक महत्वपूर्ण ग्रामीण और वन आधारित व्यवसाय है। लाख की खेती हमर आय बढ़ाए के एक अच्छा साधन है। उचित देखभाल और वैज्ञानिक विधि अपना के लाख उत्पादन ले हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। संगी हो आप मन ला हर विषय ले जुड़े जानकारी देवाए जाते जेखर उपयोग करके आप मन अपन आमदनी बढ़ा सकते हो। ईमेल के माध्यम ले बधाई भेजे खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: 20 जून के कार्यक्रम खातिर संगवारी मन लिखे हैं कि ये दिन आज के किसान क्रम में श्रीराम साहू जिले ओखर खेती किसानी के अनुभव संग पशुपालन के अनुभव घलोक सुनेला मिले। सिरतोन मा पशुपालन हमार मतलब देखी जाए भाई तो पशु मन तो हमर बलबहिया होते। आज खेत मा हल की जगह मा भले ट्रैक्टर आ गए फिर खेत खातिर खाद गोबर खाद और हमर खातिर दूध जेखर उपयोग ले हमर बिहनिया शुरू होते और दूध ले बने दीगर उत्पाद जेखर उपयोग हमर स्वास्थ्य खातिर लाभ के होते। श्रीराम साहू संग पूरा चौपाल प्रभागला ऐसा सुघर प्रस्तुति खातिर गाढ़ा गाढ़ा बधाई और ये बधाई भेजैया संगवारी मन ही बठेना पाटन जिला दुर्ग ले हैं बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा मुरली और नीरा वर्मा लोरमी चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी मना।
1: मोनिका देख हमार यहाँ के अधिकतर लोगन खेती किसानी संग में पशुपालन करते और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते। जहाँ हमारा पशुपालन से गोबर मिलते जो हमारे खेत पर उपयोगी होते खाद के रूप में उपयोग करते हैं वही से फसल ले भी भूसा मिलते हमार पशुधन पर उपयोगी होते। खेती संग में पशुपालन करके हमार किसान भाई मन उपरहा आमदनी कमा सकते। हमन अनाज के उत्पादन करते हैं बने फसल उत्पादन मिलते तो अच्छा ले अच्छा लगते फिर सिर्फ खेती ऊपर निर्भर कतकोन घाव नुकसान के हो सकते। एक सीधी पशुपालन एक बहुत अच्छा बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा व्यवसाय तको है। खेती किसानी संग पशुपालन किसान भाई मन पर समृद्धि और खुशहाली के आधार है। संगे खेती में हमन का होते कि करथन त फिर पशुपालन ला तको बढ़ावा देवन काबर पशुधन हमर रिकिम हर रिकिम ले काम आते हमर बर उपयोगी हो उपयोगी होते। तो संगवारी हो ये दिन के जानकारी आप मन ला अच्छा लागिस उपयोगी लागिस ईमेल के माध्यम ले बधाई भेजे खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: संगवारी हो एक बाद हमन औ पाती मन ला शामिल करवो फिर ओकर पहले सुनथन ये संदेश।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

रुक्मणी, सोमवार 22 जून के चौपाल मा जानकारी सुनेन क्रम आज की सलाह मा विषय रही फल और सब्जी मा पादप हार्मोन। डॉक्टर राजपूत जी हा बड़ फरिया फरिया के हमारे प्रश्न के जवाब देन। सिरतुन मा नवा तकनीक नवा विधि हमारे फसल

0: खातिर ओखर उत्पादन अउ गुणवत्ता ल बढ़ाए म बहुते लाभ के होथे।
1: ऐसे
0: म ये जानकारी बड़ उपयोगी लागिस। ऐसन उपयोगी जानकारी खातिर चौपाल प्रभाग संघ डॉक्टर साहब ल बधाई। और ये बधाई भेजे मैं संगवारी मन ह जुनवानी दुर्गले हैं सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, हितेंद्र, नीलकंठ, सुनीता, ऋषिवन, चंद्रहास, संजीव, त्रिलोक साहू और मास्टर रंजीत सिंह साहू। भिलौरी 52 लाख बेमित्राले हैं श्रीमती रोहिणी डागेश्वरी साहू, श्रीमती खुलासा देवी साहू, मास्टर देवव्रत राघवेंद्र, बेबी विधि दीपिका साहू, बेबी रिद्धि सिद्धि साहू और मास्टर हेमंत कुमार साहू मना।
1: मोनिका देख, फसल हो गए, साग भाजी हो गए, सबों के अच्छा उत्पादन पाए बर हमन ला वैज्ञानिक विधि तकनीक के उपयोग करना चाहिए। बात करें पादप हार्मोन के, तो ये एक रिकिम के प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ है जेखर उपयोग फल और सब्जी के बढ़वार, फल फूल लगाए और उपज बढ़ाए बर उपयोग करे जाते। पादप हार्मोन के सही उपयोग करे ले फसल के गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ते। ये जम्मो विषय में हमारे विशेषज्ञ द्वारा देगे जानकारी संगवारी हो आप मन ला महत्ता के लागिस, उपयोगी लागिस और हमारे कार्यक्रम ला पसंद करो आप मन। और ईमेल के माध्यम ले बधाई भेजे खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसने 23 जून मंगलवार के क्रम हलो किसानवाड़ी मां मछली पालन ले जुड़े बर उपयोगी विषय मां जानकारी सुने ला मिली। संगवारी मां लिखते है कि फोन के माध्यम ले संगवारी मन के प्रश्न और डॉक्टर साहब ले सुघर जवाब सुन के बड़ नीक लागी। ये दिन फोन इन कार्यक्रम के विषय रही स्त्री मछली मत्स्य पालन खातिर किसम के चयन। हाँ
1: हाँ।
0: और विशेषज्ञ रही श्री राजन कुजूर जी। जानकारी फायदा की रही। मछली पालन करिया कतकोन संगी मन सही जानकारी नहीं हो ले नुकसान झेल थे। ऐसे माँ ये जानकारी लाभ के रही। ऐसा उपयोगी और लाभ के जानकारी खातिर बधाई। और ये बधाई भेजैया संगवारी मन है रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई ले हैं सुशीला जैन, श्रीमती कल्पना जैन, सौरभ शुभम जैन, श्रेया और सौरी जैन। अडार नानघाट ले हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया ले हैं शिवाय यादव, राज यादव, चिंटू, तरुण यादव, चुवा कन्हैया और निर्मला यादव मन।
1: मोनिका ये दिन के हेलो किसान वाणी में जानकारी के विषय रहे 3 स्तरीय मछली पालन जेमा हमर संगवारी मन के समस्या के समाधान विशेषज्ञ जी हाँ फरिया के करे जो नंबर संगी मन ला अच्छा लगे। संगी हो 3 स्तरीय मछली पालन में ऐसा मछली मन के चयन करे जाते जैन मन तालाब के अलग अलग स्तर में रह के भोजन ग्रहण करते। एखर ले तालाब के पूरा भोजन संसाधन के उपयोग होते और उत्पादन बढ़ते। संगी हो आप मनला ये दिन के प्रस्तुति अच्छा लागिस। ईमेल के माध्यम ले बधाई भेजे खातिर आप मनला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रुक्मणी तुलना ये बैठे बैठे अगर मैं मिर्चा की अचार खवा दूं कैसे लागी?
1: बहुत अच्छा लगे, फिर कैसे खवावे भाई?
0: देख भाई हमारा इतना सारा जिन संगवारी मन की महिला है ना।
1: हाँ।
0: तो इमा एक दिन शिकायती पत्र है। मैंने अच्छा। थारी में सरी स्वाद संग चुरपुर चुरपुर मिर्ची के अतान
1: जो कि बहुत जरूरी है
0: जेकर स्वाद घुलक बट निक लागते।
1: हाँ।
0: तो हमारी ये संगवारी मन अपन चिट्ठी में लिखे है कि फोन इन कार्यक्रम में कतकोन बेर फोन लगातन घंटी जाते फिर हमारे फोन ला उठाई नहीं जाए।
1: अच्छा
0: ऐसे काबर? हम त चौपाल कार्यक्रम के नियमित श्रोता है। हमन इखर हर क्रम बड़ सुन्थन बड़ सुखर घलोक लागते और गीत संगीत घलोक निक लागते। फोन इन क्रम में हमार असन समस्या दूसर संगी मन के घलोक होते तो हमार समस्या के निदान तो मिल जाते फिर हमार फोन नहीं उठा पाओ बस यही समझ में नहीं आए।
1: अच्छा।
0: हमरो फोन उठा लेकर तो ये हमार संगवारी मन है चरडोंगरी पिपरिया ले हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू और माया साहू मना। कोई ग्राम भंगी टोला ले हैं ननका राम ध्रुवे, जामुनबाई, फिरत राम और मालती ध्रुवे मना।
1: मोनिका जैसे कि अभी हमन गोट बात करत रहे हैं कि अच्छा के साथ थोड़के जहाँ वो मिर्ची मिलते वो अच्छे लगते तो मोनिका बधाई संदेश के संग में शिकायती संदेश पढ़ के अच्छा लगे। संगवारी हो आप मन के शिकायत है कि हमन आप मन के फोन नहीं उठावन तो संगी हो ऐसने बात नहीं है। हमार पूरा कोशिश रहते हर फोन उठाए के काबर आप मन ले ही हमार कार्यक्रम सच थे। फिर कबू कबू का होते कि ऐसे होते कि जवाब देत बेरा फोन आते और जवाब पूरा होए के बाद हम दूसर फोन उठा सकते हैं। ऐसे में आप मन के फोन नहीं उठा पावन हमन तो संगी हो हमन वो जब भी ऐसा हो ही तो इखर हमन ला खेद है कि हमन आपन के फोन नहीं उठा सकन। फिर पूरा पूरी कोशिश करथन और करबो कि आपन के कोनो प्रकार के शिकायत नहीं होवे और हमारे कार्यक्रम के जोन भी जानकारी है उकर आप मन पूरा पूरा लाभ ले सको। तो संगवारी हो से ये शिकायती पत्र भेजे खातिर तको आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
0: फिर मुला इसे लागते कि ओकर मन के जब ये पत्र शामिल हो गए तो थोड़ा बहुत शिकायत तो दूर हो गई हो।

0: मोनिका मोला ऐसे काबर लगथे कि जब मैं फोन इन करे रहो तो ये कोई भंगर टोला के जोन हमार श्रोता है एकर मन के फोन उठाए रहो तो संगवारी हो ऐसे शिकायत नहीं होना चाहिए।
1: ऐसे है ना रुक्मणी की तही अकेला नहीं करे से कार्यक्रम ला हमार बड़कन संगवारी मन जन साथी साथी मन यो मन करथे तो हो सकथे ते 4 महीना पहले करे होबे। चलिए तो हुई हमारे चिट्ठी मिले इस क्रम फिर अब बता भाई हमारे क्रम आगू का कहे तेला
0: अब देख बधाई हो गए शिकायत हो गई है नी तब सुन लेते हैं एक सुघर गीत तो संगवारियों सुनते हैं सुघर गीत जला गाए हैं मोती दास मानिकपुरी और साथी मन।
1: हाँ

0: संगवारी हो ये सुघर सुघर गीत सुनेन और आपो मल्ला सुनाइन जिला गावत रहीन मोतीदास मानिकपुरी हा
1: औ मुनिका अब रह गए आज के सलाहक्रम के तो संगवारी हो सुन ले थन आज के सलाहक्रम ये विषय आज के सलाहक्रम में हम जानकारी सुनथन बरसात में पशुधन के देख रेख विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष दुबे वैज्ञानिक पशुपालन यांत्रिकीकरण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और इखर लिगोट बात कर रहे हैं हमार मुनिका
0: संगवारी हो बदलत मौसम में हम मनखे मन तो अपन बर तैयारी कर लेते हैं कि भाई बरसात अवैया है तो घर भर हमन ला जैसे खपरेल ठीक करवाना है घर के व्यवस्था देखना है कि पानी ज्यादा दिक्कत झन करे भाई इसने हमार पशुधन मन की बात करन तो ओखरो मन के रहे की या खान पान की व्यवस्था हमन ला देखे पड़ते और बरसात मा पशुधन मन के देखरेख देखभाल कौन ढंग ले करन ये विषय मा आज मन गुड बात करबो हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष दुबे जी ले दुबे जी हा वैज्ञानिक है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर मा आप मन हा पशुपालन के यांत्रिकरण अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ले जुड़े हावे डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है मर क्रम मा
2: धन्यवाद मैडम नमस्कार
0: डॉक्टर साहब सबले पहले तो ये बताते हो कि अभी जैसे बरसात के मौसम है तो पशु मन की देख रेख की जरूरत तो पड़बे करते पशुपालक जन हमारे संगवारी मन है ये मन ला कौन कौन समस्या आ सकते
2: देखिए मैडम बहुत अच्छा सवाल है आपका बरसात आने की वजह से जहाँ हरियाली और भरपूर चारा का उत्पादन तो होता है पशुओं के लिए पर वहाँ पे बहुत सारी अन्य समस्याएं भी आती है कुछ जो प्रमुख समस्या जो किसान भाई लोग को झेलनी पड़ती है उनमें से एक तो है जो जल भराव की समस्या खासकर जो ढलान वाली जगह में जिनका गौ पालन या पशु पालन करते हैं तो ऐसी जगह में बरसात होने की वजह से जल भराव की समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है परजीवी के संक्रमण की क्या नमी की बढ़ने की वजह से जितने भी परजीवी होते हैं वहाँ पर जैसे मच्छर हो गया मक्खियाँ हो गई तो ये मच्छर और मक्खियाँ जो हैं बहुत सारे रोग के कारक भी बनते हैं अपने साथ बहुत सारे रोग भी लाते हैं तो वो उनके संक्रमण की समस्या बनती है और ये परजीवी अपने साथ साथ बहुत सारे जीवाणु और विषाणु को भी लेकर के आते हैं। इसके अलावा दूषित पानी की समस्या पानी के दूषित होने की वजह से रोग होते हैं। इसके अलावा जो आप देखेंगे जो खुर वाले पशु हैं उनमें जनरली डिजिटल डर्मेटाइटिस या फुट रॉट होता है जैसे ज़्यादा पानी की वजह से पाँव में जो छाले पड़ना होता है ये समस्या का पशुपालकों को बरसात में सबसे ज़्यादा समस्याएं होती है।
0: जी अच्छा ये तो आप मन ने बड़ सुघर तरीका ले बताए कि हमारे जिन पशुपालक संगवारी मन ही मतलब का दिक्कत आ सकते फिर बात हमारे पशुधन मन के रहे की जगह के करण तो इमां का समस्या आ सकते खर निदान को ढंग ले करे जा सकते
2: देखिए पशुपालकों को कुछ आसान तरीके से वे अपने जैसे पशुओं का आवास की जगह है जहाँ रखे हैं पशुओं को वहाँ पे थोड़े बहुत प्रबंधन करके बरसात से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है
0: जी।
2: जैसे पहले हो गया जो ढलान वाली जगह में जहाँ पशुओं को रखे हैं तो अब आवास बदल नहीं सकते तो वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था कर दें अच्छी नाली बना दें वहाँ पर ताकि जैसे ही पानी जमा हो तुरंत वो नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए तो जिस वजह से पानी वहाँ पर जमा नहीं होगा। यदि फर्श पे रखा गया है पशुओं को तो उसमें थोड़े थोड़े दाने होना चाहिए जो फर्श है एकदम चिकना नहीं होना चाहिए चिकना होने से फिर फिसलने की समस्या होती है और अन्य चोट लगने की समस्याएं होती है। छत जो है छत ऐसी रहे जिसमें पानी का लीकेज ना हो यदि पानी का लीकेज होगा तो निश्चित ही जो पशुओं का आवास है वहाँ पर पानी जमा होगा फिर बहुत सारी समस्याएँ उससे उत्पन्न होगी। वेंटिलेशन जो है मतलब खिड़की वगैरह पर्याप्त होना चाहिए वेंटिलेटर पर्याप्त होना चाहिए जिससे कि पर्याप्त ताजी हवा आती रहे और नमी का लेवल जो है पशु आवास में वो ज़्यादा ना हो। इसके अलावा जो एक सबसे आसान उपाय है बरसात में पशुओं को संक्रमण से बचाने का वो होता है फुटबाथ। फुटबाथ एक छोटा सा हिस्सा है जो कि पशुओं के आवास के बाहर लगाया जाता है सामान्यतः गाय वगैरह के जहाँ रखते हैं तो 10 से 12 फीट लंबा 1.5 से 2 फीट चौड़ा और लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर

0: गहरा ऐसा एक गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट को डाल के पानी के साथ घोल दिया जाता है। तो जब भी पशु घर से बाहर से कहीं चर के जैसे ही अंदर आते हैं तो उनका पांव जो है उस डिसइंफेक्टेंट पानी में पड़ता है फुटबाथ में। इसकी वजह से कोई भी संक्रमण जो है घर के बाहर से घर के अंदर तक नहीं आ पाता है। तो ये सब कुछ आसान तरीके हैं जिसको पशुपालक आराम से अपना सकते हैं।
1: जी, आपन बड़ सुघर तरीका ले बताया कि कौन प्रकार के पशुधन मन की आवास व्यवस्था होना चाहिए। अब आवास व्यवस्था तो हवे, फिर अब बरसात के बेरा में सबसे ज्यादा समस्या आती है ओखर मन के आहार व्यवस्था में। तो ये विषय में हमारे संगवारी मल्ला बताती हूँ कि मल्ला कौन बात के ध्यान रखना चाहिए।
0: बड़े महत्वपूर्ण सवाल है ये कि आहार जो होता है वो शरीर में ताकत, उत्पादन की क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो इसीलिए बरसात के मौसम में संतुलित आहार का विशेष महत्व है। सामान्यतः पशुओं में, खासकर जो खुर वाले पशु हैं जैसे गाय गरुआ हो गया, बकरी हो गई, तो इनमें हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण और खनिज मिश्रण ये पर्याप्त संतुलित मात्रा में होना चाहिए। खासकर जो हरा चारा के लिए जब पशु बाहर चरने जाते हैं तो ध्यान रखना है कि चरते समय वो ऐसी जगह में ना चरे जहाँ कुछ खरपतवार हो। तो बहुत सारे ऐसे बरसात के मौसम में विषैले खरपतवार को पशु चरते चरते खा लेते हैं
1: जी।
0: जिसकी वजह से गैस की समस्या और अन्य बीमारियाँ होती है। तो इसीलिए जो भी चारा दे रहे हैं वो संतुलित मात्रा में दें, थोड़ा सा उसमें सूखा चारा जरूर मिलाएं क्योंकि उनके पाचन शक्ति उससे बढ़ती है, और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए और खनिज की मात्रा देने के लिए आपको उसका अलग से दाना मिश्रण और खनिज मिश्रण देते रहना चाहिए जिससे उनकी ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। इसके अलावा बरसात के मौसम में विशेष ध्यान दें कि जो भी चारा उनको दे रहे हैं उसमें फफूंद का संक्रमण तो नहीं है, क्योंकि बरसात में फफूंद बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना है। और हमेशा साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए उनके लिए। इसके अलावा मिनरल वगैरह की कमी ना हो, इसलिए यूरिया मोलेसेस मिनरल के ब्लॉक्स आते हैं उसको चटवाते रहना चाहिए। तो ये सब तरीके से उनके आहार का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: अभी आप मन स्वास्थ्य के बात घलोक करे हो कि भाई पशु मन अगर बाहर जाते हैं कुछ गलत चीज खा लेते हैं तो ओखर मन के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। तो आप मन यही बताते हो कि अभी बरसात के बेरा में हमें काका बात के ध्यान रखना चाहिए कि ओखर मन के स्वास्थ्य बने रहा है।
0: स्वास्थ्य के बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली चीज, जैसे ही बरसात आने वाली होती है उससे पहले पशुपालन विभाग पूरे जी जान से टीकाकरण अभियान चलाता है, और वो भी जो बरसात में जो सबसे मुख्य जो बीमारियां होती है वो होती है एक तो HS, जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या फिर देसी भाषा में गलघोटू बोलते हैं, और दूसरा होता है ब्लैक क्वार्टर या फिर एक टंगिया रोग या लंगड़ी रोग कहा जाता है। बरसात में सबसे ज़्यादा यही दो बीमारियां मिलती है, और बरसात शुरू होने से पहले इन दोनों का टीका लगवाया जाता है। पशुपालक बंधु सबसे पहले ये टीका लगवाएं अपने पशुओं को ताकि इन खतरनाक जानलेवा बीमारियों से बचा सकें। इसके अलावा कृमिनाशक की गोलियां जो है वो निश्चित ही तौर पे पशुओं को देना चाहिए। इसके अलावा बाहरी परजीवी जैसे हैं, लीक हो गई, जू हो गई, माइट्स हो गई, इनसे बचाव के लिए बरसात से पहले अच्छी तरह से पुताई वगैरह कर दें, और जितने भी मकड़ी के जाले वगैरह ये सब हैं इनको साफ कर दें ताकि ये इन परजीवियों के संक्रमण से बचा जा सके। ये सब कुछ आसान उपाय करके पशुपालक बंधु अपने पशुओं को अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं।
1: ये तो हुई इस गाय मन की बात, पशुधन मन की बात करते हैं, तो नवजात बछड़ा मन की बात करें तो बारिश के मौसम में ओखर मन की कौन प्रकार ले ध्यान रखना चाहिए।
0: देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो जिस अवस्था में बीमारी का चांसेस होता है वो है बाल अवस्था में। नवजात बछड़े हो या मेमने हो, सबसे ज़्यादा संक्रमण का जो डर रहता है वो इसी अवस्था में रहता है। इसलिए इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ये ध्यान दें कि जहाँ भी बछड़े को रखा गया हो या मेमने को रखा गया हो तो वो सूखी जगह रहे। उनको नियमित अंतराल में थोड़े थोड़े समय में दूध पिलाएं और कृमिनाशक दें। इसके अलावा जो दूध की मात्रा दे रहे हैं, खासकर 10% जो भी शरीर का

0: वजन हो बछड़े का या मेमने का, उसका 10% मात्रा में ही उनको दूध दिया जाना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि ज़रा भी ज़्यादा दूध पिलाया जाता है तो खासकर वर्षा ऋतु में इनको दस्त होने की संभावना रहती है, जिससे इनकी बीमारी और मृत्यु दर बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रख के नवजात बछड़े और मेमने को बचाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, आप मन आए हमारे संगवारी मल्ला बड़ सुगर सुगर जानकारी देव। आप मन बताए कि बरसात के बेरा में हमारे पशु मन की देखभाल कौन प्रकार ले करन, उखर मन की आहार व्यवस्था, रहे की जगह की व्यवस्था कौन ढंग ले होना चाहिए, बीमारी ले बचाए खातिर हमन काका उदीम कर सकथन, ये सारी जानकारी खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
2: आज के सलाहक्रम में अभी सुनें बरसात में पशुधन के देखरेख, ये विषय में जानकारी देवत रहे डॉक्टर आशुतोष दुबे, वैज्ञानिक पशुपालन यांत्रिकीकरण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, और इखर मल्ले गोड बात करते रहे मोनिका जैन।
1: रुक्मणी, हमार करना हेलो किसान वाणी जिन फोन इन कार्य हेलो चौपाल,
2: हाँ
1: इखल ले जुड़े जिन सूचना है तेन है तेला संगवारी मल्ला बता देता है। संगवारी हो अवैया शुक्रवार 26 जून 2026 के प्रसारित होया हेलो चौपाल कार्यक्रम में इधर के विषय हुई बरसात में लगने वाले फूल और लैंडस्केपिंग, आप मन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर तोरण लाल साहू, सहायक प्राध्यापक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकता हो। हमारा फोन नंबर है, पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरे यह फोन नंबर है 4003483, और तीसरा यह फोन नंबर है 4003484। रायपुर के स्टडी कोड है 07701। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 26 जून 2026 के बिहनिया 11:30 ले 12 बजे तक होगी। संगवारी हो ये कार्यक्रम के प्रसारण उही दिन माने शुक्रवार के ही संध्या 7:30 में होगी। तो भाई आप मन के फोन कॉल के अगुरा रही और सूचना नीचे सिरावत है।
2: असंगवारी हो ज्यादा ले ज्यादा आप मन फोन करो और जोन भी समस्या है ओकर आप मन समाधान पाओ। और एक बताओ संगवारी हो, मन ज्यादा ले ज्यादा आप मन के फोन उठाबो।
1: कोशिश तो यही रहते फिर जैसे कि ते बताएस ना कि कतकुन बखत ऐसे होते कि भाई अब वो जवाब देवा थे हमार विशेषज्ञ हा, तो वो बखत तो एकदम से ओकर बात ला काट के हम दूसर के फोन नहीं उठा सके ना, तो वो एक दिन बात होते।
2: और मुनिका अब बेरा हो गए आज के प्रश्न पूछे के, तो संगवारी मल्ला बता दे थन आज के प्रश्न। संगवारी हो लिख ले रहो आज के प्रश्न। प्रश्न है फुट बाथ का होते, प्रश्न एक घों सुन ले रहो फुट बाथ का होते।
1: और सही जवाब पर मेल आईडी मैं बता देता हूँ संगवारी हो, मेल आईडी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com।
2: और मोनिका बता देते पाछू हफ्ता पूछे प्रश्न होकर सही जवाब।
1: देखो एक चीज मैं पहले बता दो संगवारी हो, पाछू हफ्ता की नहीं, ये ना पाछू हफ्ता के प्रश्न सही जवाब है। कबर की पाछू हफ्ता अमन को कारण ले आप मन ले प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं भाई, अब उखर पहली जन प्रश्न रही सोकरो तो जवाब देना जरूरी है, तो यही पाए के पाछू के पाछू अब तक के पिछला प्रश्न उखर जवाब बतावत।
2: तो हमन प्रश्न पूछे रहे पशुधन ला खरीदे के पहली का बात के ध्यान रखन, और एकर सही जवाब है पशुधन हमेशा विश्वस्त और विश्वस्त जगह ले और टीकाकृत पशुधन ला बिसावन।
1: और सही जवाब है जही हमारे संगवारी मन के नाम ला बता देथन, आप मन ही भड़गा कोदवा गोडाल ले हैं श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी और राहुल मरावी, पिपरिया ले हैं कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता, समडिल नवा पारा ले हैं दीपक गुप्ता श्रीमती अंकु और राघव गुप्ता, ग्राम सहा मालगी ले हैं सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी आकाश प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, अमलेश्वर ले हैं डुमन ठाकुर सुमन ठाकुर गुड़िया और रियांश ठाकुर, गरापार बांधा बाजार ले हैं गंगाराम साहू मानविंद्र राकेश साहू, और दहान बांधा बाजार ले हैं रेवाराम साहू। तो भाई सही जवाब लिखे पर हमारे जम्मू संगवारी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
2: मोनिका आप सुन लेते हैं और एक ठन गीत, तो सुनते हैं गीत चला गाए हैं केदार यादव और भीखम धर्माकर।
1: हाँ

0: संगवारी हो अभी ये गीत सुनें और आप मल्ला सुनाए जिला गावतहीन केदार यादव भीखम धर्माकर उकर संगवारी मना
1: मोनिका अब जाए के बेरा हो गए जा रहे पहली संगे मल्ला बता देथन काली की कार्यक्रम काली संजा बेरा आज के बाद के संग आज के सलाहक्रम में जानकारी की विषय हो ही वर्षा के पहली पशुधन के आवास चारा के प्रबंधन रोक राई और टीकाकरण
0: और गीत संगीत के मधुरता तब गर्वे करी तदेवा विदा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला मोनिका
1: और रुकमणी के राम राम।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए ब्लैक मेल इस फिल्म का गीत, राजेंद्र किशन के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन

ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक घर द्वार बारी बखरी के गोठ स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र किशन का लिखा गीत संगीत कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अभिमान। इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, एसडी बर्मन का संगीत और गीतकार हैं मजरूर।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अभिमान, इस फिल्म का गीत आवाज़ किशोर कुमार की, एसडी बर्मन का संगीत और गीतकार हैं मजरूर।

रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं जमील अहमद।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं जमील अहमद। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जुबैर रिजवी की ये गज़ल।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे जमील अहमद। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल शाम 4 बजे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा कल शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 बजे से 7:30 तक, रात 8 बजे से 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से, अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। FIH प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। हॉकी इंडिया ने ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी, 16 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से, जहां हर दिन फीफा विश्व कप में रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर, बोस्निया, हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल दूसरे हाफ में डेनियल मुनोज ने किया। मुनोज ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल दागकर कांगो के मजबूत डिफेंस को भेदा। कांगो की मजबूत डिफेंस को देखकर एक समय लग रहा था कि ये मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन मैच के 76वें मिनट में आखिरकार मुनोज को सफलता मिली और उन्होंने कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। कोलंबिया ने अपनी लीड को अंत तक बनाए रखा। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने ग्रुप में 2 मुकाबले जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। ग्रुप एल के मुकाबले में क्रोएशिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पनामा को 1-0 से हरा दिया। क्रोएशिया के खिलाफ मिली हार के साथ ही पनामा के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीद समाप्त हो गई है। क्रोएशिया ने ये अहम जीत टीम के स्टार खिलाड़ी लुका मोड्रिक के 200वें मैच में हासिल की। पहले हाफ में पनामा ने क्रोएशिया के मुकाबले ज्यादा बेहतर खेल दिखाया। 23वें मिनट में पनामा को गोल करने का एक शानदार मौका मिला था, जब जोस लुइस रोड्रिगेज ने जोरदार हेड लगाया। हालांकि क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लेवाकोविच ने शानदार बचाव करते हुए गोल बचा लिया। मुकाबले के 54वें मिनट में क्रोएशिया 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रहा। जोसेफ स्टेनिसिक के दाईं ओर से आए शानदार लो क्रॉस को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंटे बुदमिर ने गोल में तब्दील कर दिया। इस जीत के साथ ही क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। ग्रुप एल का एक और मुकाबला इंग्लैंड और घाना के बीच गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लैंड ने मैच में पहला बड़ा मौका 13वें मिनट में बनाया, जब डेक्लान राइस की लंबी दूरी की फ्री किक गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। पहले हाफ में जूड बेलिंगहैम का एक शॉट घाना के 2 डिफेंडर ने ब्लॉक किया। वहीं राइस ने नोनी मडुके के क्रॉस पर हेडर लगाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मैच के अंतिम मिनटों में इंग्लैंड ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में दोनों टीम को 1-1 अंक से ही संतोष करना पड़ा। ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। ह्यूस्टन स्टेडियम में मिली पुर्तगाल की जीत के नायक स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे। उन्होंने मुकाबले में 2 गोल किए। पुर्तगाल ने इस जीत के साथ ही राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। टीम के 2 मुकाबलों के बाद अब 4 अंक हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी 1-1 गोल दागा। पुर्तगाल ने शुरुआत से ही मुकाबले का शानदार आगाज किया। मैच के 6वें मिनट में ही रोनाल्डो ने अपने

0: अपनी क्लास दिखाई और टीम के लिए पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। वो 6 विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: Five in red in the middle, Ronaldo! The first player ever to score in 6 different World Cups.
0: पुर्तगाल की बढ़त को मैच के 17वें मिनट में ही नूनो मेंडेस ने दोगुना कर दिया। नूनो ने फ्री किक का भरपूर फायदा उठाया और मैच का दूसरा और अपना पहला गोल दागा। मैच के 29वें मिनट में उज्बेकिस्तान के लिए अजीजनोज गनीव ने एक शानदार गोल किया, लेकिन फाउल होने के कारण इसे अमान्य करार दे दिया गया। इसके बाद मैच के 39वें मिनट में रोनाल्डो ने अपना दूसरा और मैच का तीसरा गोल दागा। रोनाल्डो के इस गोल के दम पर पुर्तगाल ने पहले हाफ का अंत 3-0 की बढ़त के साथ किया। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर नेमातोव गलती से अपना ही गोल कर बैठे, जिसके चलते पुर्तगाल की बढ़त 4-0 हो गई। मैच के 87वें मिनट में राफा लियाओ ने 5वां गोल दागा और पुर्तगाल की धमाकेदार जीत पर मोहर लगा दी।
1: It's Portugal on the surge with Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. He's done it again, from setback to statement. Portugal 5, Uzbekistan 0.
0: Mukesh Kumar, Sportscan.
2: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को मात दी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने टूर्नामेंट में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। चोट से उबरकर वापसी कर रही त्रिशा ने अपनी जोड़ीदार गायत्री के साथ मिलकर स्पेन की जोड़ी को 21-12, 14-21, 21-13 से 51 मिनट तक चले पहले दौर के मुकाबले में पराजित किया। भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमीरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। त्रिशा और गायत्री ने मैच की शुरुआत मजबूत की और पहले गेम में 8-3 की बढ़त बना ली। स्पेन की जोड़ी ने वापसी की कोशिश करते हुए लगातार 4 अंक हासिल करते हुए अंतर को कम करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने फिर से दबदबा बनाते हुए 17-11 की बढ़त बनाई और गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में पाउला और लुसिया ने बेहतर खेल दिखाया और 11-7 की बढ़त बना ली। भारतीय जोड़ी ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन स्पेन की जोड़ी का मुकाबला बराबरी पर रखने में सफल रही। निर्णायक तीसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने फिर से 11-6 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इस जोड़ी ने इसके बाद अपनी लय बनाए रखी और बिना ज्यादा परेशानी के मैच अपने नाम कर लिया। पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर में रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। उन्होंने पहले फ्रांस के एनोगार्ट रॉय को 21-19, 21-16 से हराया, फिर चीनी ताइपे के कुओ कुआन लिन को 13-21, 21-14, 21-10 से मात देकर आगे बढ़े। चौहान के सामने अब शुरुआती दौर में हमवतन एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम की चुनौती होगी। 5वीं वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अपने ही देश के सनीत दयानंद से भिड़ेंगे। भारत की ओर से महिला सिंगल्स में भी मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी। इसमें रक्षिता श्री संतोष रामराज, श्रियांशी वली शेट्टी, अनमोल खरब, देविका सिहाग, तानिया हेमंत, आकर्षि कश्यप व तन्वी शर्मा हिस्सा लेंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2: और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
4: युवा भारतीय टीम की अगुवाई कप्तान खैदेम शिलेमा चानू करेंगी। निधि और एंगिल हर्षारानी मिन्स टीम की गोलकीपर होंगी। डिफेंसिव यूनिट में पूजा शाहू, सुप्रिया मधु, एफ लालवी, अक्सियामी लालने ईपुई और पार्वती टोपनो शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान चानू, तनुजा टोपो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, विनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद और तनुश्री दिनेश कुडू को शामिल किया गया है। फॉरवर्ड लाइन में सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिन पुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल सानिका, चंद्रकांत माने और कृष्णा शर्मा को जगह दी गई है। 9 दिन का ये एक्सपोजर टूर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड सीनियर महिला टीम के खिलाफ 2 मैचों से शुरू होगा। इसके बाद लीले शॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और बेल्जियम की साथी जूनियर टीमों के खिलाफ मैच होंगे। यह दौरा जूनियर एशिया कप और अन्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारियों का अहम हिस्सा है। इस दौरान खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके खेल और आत्मविश्वास में

0: सुधार होगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर FIH प्रो लीग के लंदन लेग के अपने पहले मैच में भारत ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी। सुनते हैं इस मैच का हाल।
2: भारत के लिए अभिषेक ने 21वें, नीलाकांता शर्मा ने 24वें, सुखजीत सिंह ने 34वें और राजेंद्र सिंह ने 52वें मिनट में गोल किए। वहीं पाकिस्तान के तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले के 8वें मिनट में नदीम अहमद ने गोल करके पाकिस्तान को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की भारतीय टीम ने दूसरी क्वार्टर में जबरदस्त वापसी की। उन्होंने 2 गोल किए और फिर तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक एक गोल करके मजबूत बढ़त बना ली। क्रेग फुल्टन की टीम ने मैच के अंतिम 10 मिनट में कुछ गलतियां की, जिससे पाकिस्तान को 2 गोल करने का मौका मिला। इसी के साथ जीत का अंतर तो कम हुआ, लेकिन मुकाबले ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया। खेल के हर पहलू में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। मैन इन ब्लू ने 30 बार सर्कल में प्रवेश किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केवल 9 बार ही ऐसा कर पाए। उन्हें 11 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि पाकिस्तान को 8 मिले। हालांकि वे केवल 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाए, जबकि पाकिस्तान ने 3 गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग के आखिरी 2 राउंड के लिए यूरोप के मौजूदा दौरे पर अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। रॉटरडैम में हुए पिछले लेग में उन्होंने अहम मैचों में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और मेजबान नीदरलैंड्स को हराया था। प्रो लीग के 13 मैचों में भारत की यह तीसरी सीधी जीत है। अब इस टीम के 13 अंक हो गए हैं। हरमनप्रीत सिंह की टीम ने एक मैच शूटआउट में जीता है, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं और 7 मैच हारे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अब तक अपने सभी 13 मैच गवाए हैं। इस जीत के साथ भारत वर्ष 2016 के बाद से सीनियर और जूनियर स्तर पर पाकिस्तान से नहीं हारा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात धैर्य और एकाग्रता वाले खेल निशानेबाजी पर। जर्मनी के सोहल में भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जूनियर इवेंट में रजत पदक जीता। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत टीम और मिक्स टीम स्पर्धाओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम पहले स्थान पर बरकरार है। वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। शिवा नरवाल ने कल 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में रजत पदक और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में एक और रजत पदक जीता, जिसमें शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर फिनिश किया। भारत के अभियान को तब और मजबूती मिली जब प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे देश को चैंपियनशिप का 5वां स्वर्ण पदक मिला। 25 मीटर पिस्टल महिला जूनियर टीम स्पर्धा में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला की तिकड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत 5 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स को भारत ने 95 रन से मात दी। ICC ने एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स ने झारखंड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब बात एथलेटिक्स पर। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी 100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी ने आज राष्ट्रीय अंतरराज एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन मानक हासिल कर शानदार वापसी कर ली है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं

0: प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our

0: constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।

0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज सुमन कल्याणपुर की। भरत व्यास के बोल, सतीश भाटिया का संगीत।

बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सीमा का गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की है। शंकर जयकिशन का संगीत है और गीतकार हैं शैलेंद्र।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को है। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से

0: अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरा पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
1: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
0: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या-क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
1: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस, जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
0: जी,
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं,

0: एआई से रिलेटेड और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में, 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
1: जी
0: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे। और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in,
1: जी
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है, 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है। तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम

0: आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
0: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
0: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम को बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6 से लेकर 12 तक
0: जी।
2: फिर
0: जी।
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी

0: ऐसे में शाहपुर जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ, ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी। तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीज़ों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टूडे
1: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस
2: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड इवन टूडे आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इन साइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया।

0: और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको भी, हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ ही कैन डू वेल, ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने उसे काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि उसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी नई स्किल्स टुडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मैं चला देता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
1: जी
0: है। हम आपसे और जानना
1: जी
0: चाहेंगे
1: जी
0: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में, कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूज़िक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो सीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
0: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में, मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ, तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है,
0: बिल्कुल
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ, मेरा
0: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को, उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत में पढ़ाई।

0: समस्या के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत
1: जी
0: का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है
5: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनिए फिल्म रोजा का गीत। पीके मिश्रा के बोल हैं AR रहमान का संगीत। और इस गीत के लिए आवाजें चित्रा और SP बालसुब्रमण्यम की।

1942 लव स्टोरीज फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और ए हरिहरन की आवाज़ों में मसरूर सुल्तानपुरी की बोल जतिन ललित का संगीत फिल्म का नाम है खामोशी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुमार पंडित का तबला वादन। इनसे सुनिए 3 ताल में कायदा, रेला, मध्यलय, परण और फरमाइश चकरदार लगी। सरंगी पर लहरा दिया है शफीक हुसैन ने।

धीरे धीरे का कायदा है उस्ताद अमेजान थिरका खान साहब का, धा तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक था तेरे किट तक तेरे तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा तेरे किट तक धा किट तक धीरे धीरे धीरे किट तक धीरे धीरे किट तक धा धा तेरे किट तक धीरे धीरे धीरे धीरे किट तक धा तेरे ता किट तक तेरे तेरे किट तक तेरे तेरे किट तक ता तेरे किट तक धा किट तक धीरे धीरे धीरे किट

धागिन टाकत धाती के घेतक देव धा धागिन धागे देना धाती के घेतक देव घेना नाती धागिन धागे देना धाती के घेतक तिर धा धागिन धागे तने गिन नाना गिन नाती के घेतक घेतक देड़ देना गिन धा धागिन धागे धाती के घेतक देव धा धागिन धागे तने गिन नाना गिन नाना नाती

नगन नगन तकट तकट धातु क देख कतगन नगन नगन नगन नगन नगन नगन धातु क देख कतक देखन ना नगन तकट तकट धातु क तकट कतक नगन नगन नगन नगन नगन नगन धातु क देख कतक देखन नगन नगन तक

छोटा सा टुकड़ा है।

धाकृदान देता कृदान त्रिदृघिंतना आनंदाजिदा धनदा दाइदा धनदा दाइदा धनदा कदिंदा कदिंदा गगिंदा धात्रिघिंतना आनंदा कदिट कदिट कदकात्रिघिंतना दादी कदिट कदिट कदकात्रिघिंतना दादी कदिट कदिट कदकात्र तीन बार।

एक रचना है, इसका इसका जो सन है रूपक ताल में आएगा। पहले झपताल, फिर एक ताल, फिर रूपक ताल। धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म धर्म

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुमार पंडित का तबले पर बजाया तीन ताल में गायदा रेला मध्य लय परन और फरमाइश चक्करदार लकी। सारंगी पर आपकी संगत कर रहे थे शफीक हुसैन। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और

0: दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।